सुप्रभात। मीडी वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के ठीक 5:48 और 35 सेकंड हो रहे हैं। हम हाजिर हैं आपकी सेवा में पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ।

0: संचालित होते ही रहते हैं। आत्मनिरीक्षण के किन्हीं गहरे क्षणों में हमें कभी कभार इसकी एक झलक भी अवश्य ही दिखाई दे जाती है, पर एक बात तो तय है, इसे अच्छा तो बिल्कुल ही नहीं माना जाता। रही बात बुद्धि की, तो यह मनुष्य को प्राप्त निर्णय करने वाली वह शक्ति है जो उसकी संवेदनाओं को व्यवस्थित कर प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करती है। वैसे तो हर एक प्राणी कुशिक मूलभूत जैविक प्रवृत्तियों से संचालित होता रहता है। भूख प्यास जैसे मनुष्य को लगती है वैसे ही पशुओं को भी, किंतु सही गलत उचित अनुचित अच्छे बुरे का ज्ञान पशुओं को नहीं होता, क्योंकि उनके पास वह निर्णय शक्ति नहीं होती जो मनुष्य को स्वाभाविक तौर पर मिली होती है। कल्पना की शक्ति, तर्क करने की क्षमता, बुद्धि पर आश्रित ये सारी शक्तियां मनुष्य को ही प्राप्त है। अहंकार और बुद्धि के बीच के संबंध की बात करें तो यह आम धारणा है कि अहंकार बुद्धि का दुश्मन है। अहंकार की स्थिति में व्यक्ति खुद को बड़ा और महान और दूसरों को छोटा समझने लगता है। वह दूसरे के गुणों को देखा करता है और अपने दोष उसे नजर नहीं आते। जाहिर है इस स्थिति में उसकी बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है और वह सही गलत सोचने की स्थिति में नहीं रह जाता। अहंकार से ही क्रोध पैदा होता है जो विवेक को जड़ से उखाड़ फेंकता है और मनुष्य का सर्वनाश कर डालता है। जैसा कि गीता में कहा गया है, क्रोध से मोह अथवा अविवेक उत्पन्न होता है। अविवेक से स्मृति भ्रमित हो जाती है जिसकी ज्ञान शक्ति का नाश होता है। ज्ञान शक्ति के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति अपने श्रेय साधन से च्युत हो जाता है। यहाँ इस बात का जिक्र किया जाना जरूरी है कि लोक व्यवहार में अहंकार शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर अभिमान के अर्थ में किया जाता है। यह गर्व करने जैसी भावना से बिल्कुल अलग है। गर्व करने की उचित और ठोस वजह हुआ करते हैं। हम अपने देश और महापुरुषों पर गर्व करते हैं, न कि अभिमान अथवा घमंड। अभिमान अथवा घमंड तो हमेशा अनावश्यक और कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर की जाने वाली हानिकारक वृत्ति के रूप में देखा जाता है। दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि अभिमान का कोई ना कोई विषय अवश्य होता है, चाहे वह पैसे का अभिमान हो, पद का अथवा प्रतिष्ठा का, शक्ति का हो, विद्यता का हो अथवा सौंदर्य का। वही आध्यात्मिक संदर्भों में प्रयुक्त होने वाले अहंकार की धारणा और भी गहराई तक जाती है। अहंकार बहुत बुरी चीज होती है जिसमें अहम आ गया वो इंसान कुछ कर नहीं सकता, वह उसी में डूबता उतरता रह जाता है और कुछ कर नहीं पाता। भारतीय दर्शन और अध्यात्म परंपरा में व्यक्ति को जहां अपने कर्मों का कर्ता खुद न समझने का उपदेश दिया जाता है और ऐसा सार्थक ढंग से जीवन यापन के लिए जरूरी माना जाता है, वहीं पश्चिम की अस्तित्ववादी दर्शन परंपरा इससे बिल्कुल विपरीत यह मानती है कि जब तक व्यक्ति अपने किए कर्मों का कर्ता खुद को नहीं समझेगा, उसकी जिम्मेदारी खुद न लेकर उसे किसी और के मत्थे मढ़ता रहेगा, तब तक वह सार्थक और प्रामाणिक जीवन जी पाने में सक्षम नहीं होगा और इस तरह से खुद से ही झूठ बोलते हुए जीवन भर आत्म प्रवंचना की स्थिति में भटकता रहेगा। स्पष्ट है कि ये धारणा भारतीय परंपरा के नियतिवाद की जगह स्वतंत्रता को प्रश्रय देती है जो अपनी कर्मों की जिम्मेदारी खुद ही लेने पर संभव है। भारतीय परंपरा में तो व्यक्ति सब कुछ के लिए ईश्वर अथवा भाग्य को जिम्मेदार ठहराकर बड़ी आसानी से अपना पल्ला झाड़ लेता है।
1: ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कृषि सूचनाएं।
2: किसान भाइयों,

0: नमस्कार। पपीता का औषधीय महत्व बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण आजकल पपीता की बाज़ार में मांग बढ़ी है और पपीता का उत्पादन भी बढ़ा है। पपीता के पेड़ के ऊपर अनेक तरह के रोग लगते हैं, खास करके वे पेड़ जो घरों के अगल बगल आप लगाते हैं वहाँ पर ज़्यादा रोगजनकों की उपस्थिति होने के कारण उसमें रोग ज़्यादा लगते हैं। यदि आप गमले में पपीता की खेती कर रहे हैं तो वहाँ भी विशेष ध्यान देना होता है, या पॉलीबैग में यदि आप पपीता की खेती करते हैं तो वहाँ भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और यदि आप बड़े पैमाने पर बाग लगाते हैं तो उस समय मिट्टी से लेकर के वायुमंडल तक, आपको वातावरण तक शुद्ध रखना होता है, क्योंकि मिट्टी जनित कुछ रोग होते हैं जो कि पपीते के पौधे को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। सबसे ज़्यादा जो रोग लगता है वो तना विगलन रोग जो है पपीता में प्रमुख है। इसमें आप देखते हैं कि तने के निचले भाग की छाल जलीय हो जाती है और उस पर चकत्ते बनते हैं, तने के चारों ओर मेखला बनाते हैं, पौधे के ऊपर की पत्तियाँ मुरझा जाती है, पत्तियों का रंग पीला पड़कर सूखने लगता है और समय से पहले ही गिर जाता है। तने के आधार के उत्तक जो हैं वो विघटन होने के कारण सूख जाते हैं, गिरने लगते हैं, और ख़ास करके वहाँ पर जहाँ पर कि जल जमाव होता है वहाँ पर यह समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो पपीता का जो ये रोग होता है, इसे पौधे को बचाने के लिए दवा का कुछ प्रयोग करना चाहिए। तनों पर आप कॉपर सल्फेट का गाढ़ा घोल जो है लगा दें। कॉपर सल्फेट के घोल लगाने से जो है काफ़ी लाभ होता है। कार्बेंडाजिम 25 ग्राम दवा जो है उसका भी 1 लीटर आप पानी में घोल बना करके छिड़काव करते हैं तो उससे भी लाभ होता है। फल विगलन भी रोग पपीता में पाया जाता है। इसमें फलों पर छोटे गोल जलीय धब्बे दिखाई देते हैं। धब्बे बड़े होने के कारण उत्तकों का विघटन करने लगते हैं, जिसके कारण फल सड़ जाता है, विगलित हो जाता है। तो इसके लिए, ये फफूंद जनित रोग है, इसके लिए माइकोजेब दवा का प्रयोग करना चाहिए। 2.5 ग्राम दवा जो है आप 1 लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव करें और उसी के अनुसार आप काम करें तो इसमें काफ़ी लाभ मिलता है। एक और जो स्थिति पपीते में बनती है, जिसे लोग कहते हैं कि इसमें फल नहीं बनता है, ये फूल पपीता हो गया, जिसमें कि ट्यूब में फूल जो हैं वे लटके हुए मिलते हैं और उसमें फल नहीं लगते हैं, उन लोग उसके लिए अनेक तरह के उपाय करते हैं। लेकिन उसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप जो मादा फूल वाले पेड़ हैं उन्हीं को बाग में रखें, बाकी जो नर फूल वाले पेड़ होते हैं उनको बाग से हटा दें, क्योंकि ये नर फूल वाले जो वो पौधे होते हैं वो फल नहीं देते हैं, वो ऐसे ही खेत में पड़े रहते हैं। और जब आप पपीता के बाग लगावें तो उभयलिंगी कुछ किस्म होते हैं या मादा फूल देने वाले किस्म होते हैं, उनका ही आप प्रयोग करें, उनकी ही बुआई करें, तो उसमें जो है फल अच्छे बनते हैं और रोग भी कम लगने की संभावना होती है। विशेष बात यह है कि जब भी आप कोई बाग लगावें तो ज़मीन की जांच कर लें कि ज़मीन में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है और कौन कौन से पैथोजन यानी कि रोगजनक पहले से उपलब्ध हैं, उनके लिए हम किस तरह के उपाय करें कि हमारे खेत में वे रोगजनक नहीं रहें, वहाँ से हटें। और बाहर से जो रोगजनक आते हैं हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, उनको भी खेत में आने से आप निषेधित करें, यानी कि उनको आने से रोकें। तो इस तरह से जो है आप अपने बाग को, अपने फल वृक्षों को या फसलों को रोगों से बचा सकते हैं।
1: पपीते के रोग एवं रोकथाम, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे श्रीनिवास सहाय। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है और ये समय है हिंदी में समाचार का। इसे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मनोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए रामचरितमानस से पाठ। मुख्य स्वर है सुरेश वाडेकर का।

जनकपुर में सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिवजी के धनुष भंग का संदेश सुनकर अयोध्या में हर्ष और आनंद की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ पुत्रों के विवाह के लिए बारात सजाने की तैयारियों में लगे हैं। राम लक्ष्मण तो जनकपुर में हैं, अतः भरत को हाथी घोड़े तथा रथ सजाने का आदेश हुआ। शौर्य का बाना धारण कर रणधीर वीर नगर के बाहर एकत्रित हुए। सभी चुने हुए छैल छबीले वीर चतुर नवयुवक हैं। भेरी और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर इनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं। सारथियों ने ध्वज पताकाओं तथा रत्नाभूषणों से रथ सजाए हैं। अगणित श्यामवर्णी घोड़े ऐसे हैं जो जल पर भी स्थल जैसी द्रुत गति से दौड़ते हैं, ऐसे वेग से कि उनकी टापें पानी में नहीं डूबती। रथों पर चढ़ी बारात नगर के बाहर आ जुटी है। घंटों से सुसज्जित मतवाले हाथी इस प्रकार झूमते चले जैसे सावन के श्यामवर्णी बादलों के झुंड गरजते हुए चलते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस से पाठ। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य सूचनाएं। विषय है दांतों में कैविटी के लक्षण। इस विषय पर डॉक्टर ज्योति प्रकाश से बातचीत कर रहे हैं चंद्रमणि कुमार सिन्हा।
1: स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है दांतों में कैविटी के लक्षण। आज हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश। आप पटना के प्रसिद्ध दंत रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही मुख के कैंसर के भी विशेषज्ञ हैं। मैडम

0: आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने विषय ही रखा है, दांतों में कैविटी यानी जो गुहा उत्पन्न होते हैं, जिसे आम भाषा में खोदड़ भी बोलते हैं, उसके क्या क्या लक्षण हैं, कैसे हम पहचाने कि हाँ अब ये जो कैविटी है ये होने वाला है या बड़ा होने वाला है या इतना खतरनाक रूप लेने वाला है, क्या क्या लक्षण है बताएंगे हमारे श्रोताओं को।
1: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखिए, कैविटी के लक्षण एक दिन में नहीं आते। ये कैविटी इटसेल्फ इज एकदम, आपने ऐसे ने आपने बोला ना कि गुहा, ये एक छोटा छिद्र हो सकता है, ऐसा कोई जगह जहाँ कुछ अटकता हो, ऐसी कोई जगह रुखरापन जहाँ कुछ चिपकता हो, तो ये आमंत्रित करता है प्लाक फॉर्मेशन को। प्लाक क्या है? तो आपके मुंह में जो सलाइवा है उसमें चिपचिपा होता है, कुछ बैक्टीरिया, कुछ एंजाइम्स, और जो खाने की जो गंदगी है वो चिपकना शुरू होती है, और धीरे धीरे वो अपना एक इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम तैयार करना शुरू करते हैं। और उस इकोसिस्टम को अगर आप सफाई के द्वारा ब्रेक नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली वहाँ के एटमॉस्फेयर को वो अपने अनुरूप करते हैं, और वहाँ एसिड उत्पन्न होता है। एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है फाइट करने की, बैक्टीरिया को मारने के लिए आप एसिडिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, और वो एसिड जो है आपके दांत की जो संरचना है उस पे अटैक करता है। हालांकि उसकी टेंडेंसी है उस कीटाणु को मारने की, बट उस क्रम में आपके दांत भी डैमेज हो जाते हैं, और उसके लक्षण जो आपको समझ में आएंगे वो शुरू शुरू में आपको सिलसिलाहट, ठंडा पानी लगना, मीठा से लगना, ये सारी लक्षण आपको समझ में आएंगे। कभी कभी अचानक से आपको फीलिंग होगी, सेंसेशन की हवा भी आपको फील होगा, और इसके बाद फिर थोड़ी देर में नॉर्मल। ये मैं आपको जिक्र कर रही हूँ शुरुआती लक्षणों की। आपने ध्यान दिया तो बहुत अच्छा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता गया तो ये क्षेत्र बढ़ते जाएगा, वो स्पेस बढ़ते जाएगा, और धीरे धीरे बैक्टीरियल एक्टिविटी इन्हांस होते जाएगी, और वैसे ही एसिड सिक्रीशन भी इन्हांस होते जाएगा, और अल्टीमेटली एक लेयर दांत का आपका जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है बहुत तेज झंझनाहट, वो डैमेज हो जाएगा, और उसके डैमेज होने के बाद आपको ठंडा गर्म सभी कुछ लगना शुरू हो जाएगा, आपको बहुत तेज दांतों में दर्द शुरू हो जाएगा, और ये एक प्राइम सिम्टम हो जाता है जिसमें इमिडिएटली आपको किसी न किसी दंत चिकित्सक को दिखाना ही पड़ेगा या कोई ना कोई रेमेडी उसकी लेनी पड़ेगी।
0: तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब आपके दांत में गुहा उत्पन्न हुए, कैविटी उत्पन्न हुए, और उसको आपने भरवाया डॉक्टर साहब के पास जाकर, तो फिर भरवाने के कुछ दिनों पश्चात, कुछ महीनों पश्चात, फिर से वहाँ पर धीरे धीरे कैविटी होना प्रारंभ हो जाता है।
1: नहीं, एग्जैक्टली उस जगह कैविटी नहीं होगा, ये एक कंफ्यूजन का स्टेट है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, कई बार क्या होता है ना, पेशेंट देर कर देते हैं, डॉक्टर भी असमंजस में होता है, मैं रिस्क लूं क्योंकि मेरा एक ऑप्टिमम लेवल है, उस लेवल पे हम कैविटी को वन डे सिटिंग में फिल कर सकते हैं, अदरवाइज हमें ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ेगा, विच इज़ नोन एज रूट कनाल ट्रीटमेंट। अगर वो विद इन दैट लिमिट अगर वो क्रॉस हो गया कैविटी, तो बियॉन्ड दैट लिमिट हमें दूसरे टेक्निक से उसको भरना पड़ेगा, उसमें दो तीन सिटिंग देना चाहिए, जिसको हम RCT यानी रूट कनाल ट्रीटमेंट, दांतों के जड़ में जाके सफाई करना, उसके नसों को हटाना और उसके ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करना, और अपने अनुरूप उसमें मेडिसिन डाल के बंद किया जाता है। देखिए होता क्या है, आप अचानक से गए, आप इस चीज़ को नहीं पकड़ पाए, आप भी जल्दी में हैं और आपने डॉक्टर को भी प्रेशराइज किया कि आपको शॉर्टकट तरीका अपनाइए, तो वो एक रिस्क लेता है, वो कुछ मेडिकेटेड फीलिंग्स होती हैं उनको वो डालता है। अब वो फीलिंग जब तक न्यूट्रलाइज करके रखेगा तब तक आपके पास पेन नहीं है, बट वो ऑलरेडी एक डैमेज स्ट्रक्चर था जिसपे ओवरलोडिंग हो चुकी, कुछ दिन के बाद वो जवाब देगा, फिर आप उसे ऐसे कोरिलेट करेंगे कि मैंने भरवाया और ये डैमेज हो गया, वो डैमेज शुरू से था, उसकी सही टेक्निक से शुरू से ही इलाज होनी चाहिए थी।
0: जी, तो कुल मिलाकर आपने बताया मैडम कि जो कैविटी है उनके लक्षण दांतों में
1: सही
0: सनसनाहट,
1: समय पे
0: झंझनाहट।
1: पकड़ना
0: जी
1: लक्षण को, अब पेशेंट को अवगत कराना, और पेशेंट को भी ये चाहिए कि सही समय पे सही टेक्निक डॉक्टर की बात मानते हुए उस कैविटी को फिल कराना, या तो वो सिंपल कैविटी फिलिंग हो या रूट कनाल ट्रीटमेंट हो या एक्सट्रैक्शन हो, आप उसको एक सही टेक्निक से भरवाइए या उसको इलाज कराइए, आप सुरक्षित रहेंगे।
0: जी डॉक्टर ज्योति प्रकाश, आप हमारे स्टूडियो आए और दांतों में कैविटी के लक्षणों के बारे में इतने अच्छे तरीके से बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: दांतों में कैविटी के लक्षण, इस विषय पर डॉक्टर ज्योति प्रकाश से बातचीत कर रहे थे चंद्रमणि कुमार सिन्हा। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं, आपको बता दें, आकाशवाणी पटना से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा।

इस सभा में यानी सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे सूचनाओं और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हालचाल। 7:15 पर प्रस्तुत करेंगे बज्जी का लोकगीत, कलाकार होंगे शैलेंद्र सिंह राकेश। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय गायन पंडित भीमसेन जोशी से, इनसे हम सुनेंगे राग रामकली सुबह 7:25 पर। सुबह 9:10 पर पेश करेंगे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। सुबह 10 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस मंजरी, और सुबह 10:30 पर इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सुनेंगे गुदरी कलाकार प्रियंका कुमारी से धर्मेंद्र राठौर की बातचीत। दोपहर 12 का समय है कार्यक्रम बिहार के लोक संगीत का। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे कुछ मगही लोकगीत चंद्रभूषण सिंह और रंजीत कुमार से। महिलाओं के लिए कार्यक्रम नारी जगत का प्रसारण होगा दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:05 पर प्रस्तुत करेंगे अक्षयवट कार्यक्रम में बुजुर्गों में एलर्जी और अस्थमा की समस्या और उपचार, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर संजय कुमार।

सांध्यकालीन सभा में शाम 4:30 पर प्रस्तुत करेंगे युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी। मगही कार्यक्रम मागधी का प्रसारण होगा शाम 5:30 पर। ग्रामीण महिलाओं के लिए, ग्रामीण भाइयों और बहनों के लिए कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण होगा शाम 6:30 पर। और खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाई कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं शाम 7:00। रात्रि 8:00 का समय है फिल्म संगीत का और 8:30 पर रात्रि आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में मोहम्मद असलम से कुछ गजल। रात्रि 10:00 प्रस्तुत करेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे बिहार। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे निर्गुण गीतों पर आधारित कार्यक्रम और रात्रि 10:30 पर आप आनंद उठा सकते हैं पुनः एक बार फिर से फिल्म संगीत का। तुष्टाओं ये थे आकाशवाणी पटना से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, इसे दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ओस्लो नगरे भारत नॉर्वे व्यापार अनुसन्धान शिखर सम्मेलने भागम् अगृह्णात्। शिखरसम्मेलने युवराजः हकोन, नॉर्वेदेशस्य प्रधानमन्त्री जोनास गहर स्टोरे इत्येतावपि भागम् अगृह्णताम्। शिखरसम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी TEPA इत्युक्ते टेपा व्यापार आर्थिक सहभागित्व समवाये प्रवेशम् इति विषये द्विपाक्षिक व्यापारस्य निवेशस्य च वृद्धेः

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनस गहरस्तुर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।

0: नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण के अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बनेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। ये कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश और सीबीआई की जांच के बाद की गई है। संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज में खरीद से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी धन शोधन के पहलुओं की जांच कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए गंभीर वार्ता हो रही है, जिसके कारण सैन्य हमलों को स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जल्द ही ऐसा समझौता हो सकता है जो अमेरिका और पश्चिम एशिया के देशों को स्वीकार्य होगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है सूचनाओं और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हाल चाल। श्रोता हालचाल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 मई और इतिहास के पन्नों में दर्ज है आज की ये तारीख कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए। इस दिन कई महान हस्तियों का जन्म हुआ तो कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने दुनिया को इस दिन अलविदा भी कहा। तो सबसे पहले इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो 1743 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जियां पियरे क्रिस्टीन ने सेंटीग्रेड तापमान पैमाना विकसित किया, जिससे कि तापमान मापने के तरीके में एक बड़ी क्रांति

1936 में आज ही के दिन ब्रिटेन के वैज्ञानिक रॉबर्ट वाटसन वॉट ने राडार प्रणाली का पेटेंट कराया, जिसका इस्तेमाल सबसे पहले ब्रिटेन के हवाई अड्डे पर किया गया। वहीं 1950 में आज के दिन मिस्र ने स्वेज नहर को इजरायली जहाजों के लिए बंद करने की घोषणा की। 1961 में गोवा में पुर्तगाली शासन के खिलाफ आज ही के दिन संयुक्त मोर्चा आंदोलन बहुत तेज हो गया था। वहीं 1971 में भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी अड्डा INS वीर बाहु विशाखापट्टनम में शुरू किया गया था। बात करें 19 मई को जन्मे कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों की, तो उनमें 1824 में आज के दिन प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख शिल्पकार और स्वतंत्रता सेनानी नाना साहब का जन्म हुआ था 1824 में। 19 मई 1913 में भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी का जन्म हुआ था, जो निर्विरोध चुने जाने वाले देश के पहले राष्ट्रपति थे। 1904 में आज ही के दिन भारत के महान उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी नूसरवान जी टाटा का निधन जर्मनी में हुआ था। 1979 में हिंदी साहित्य के शीर्ष निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन हुआ था। श्रोताओं, ये तो थी इतिहास की कुछ बातें। बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल सुनते हैं ये एक प्यारा सा गीत मन्ना डे की आवाज़ में।

0: कभी तो हंसाए।
1: श्रोताओं, बाहर का तापमान तो आप देख ही रहे हैं, भीषण गर्मी हो रखी है और ऐसे में खुद को सुरक्षित रखना सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। इस मौसम में थोड़ी सी भी लापरवाही डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रोक का कारण बन सकती है, तो गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए आप खान पान, पहनना, कपड़े और कुछ बातों का ध्यान अगर रखेंगे तो आप अपनी सेहत को ठीक से रख पाएंगे। सबसे पहले बात करें खान पान की, तो इस मौसम में प्यास न लगने पर भी थोड़ी थोड़ी देर में आप पानी पीते रहें, इससे आप डिहाइड्रेशन से बचेंगे। देसी पेय पदार्थ जैसे कि नींबू पानी, छाछ, लस्सी, नारियल पानी, आम पन्ना और सत्तू का शरबत पीजिए, जिससे कि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बना रहता है। हल्का और सुपाच्य भोजन करें। घर से बाहर निकलते समय आप अपने साथ पानी की बोतल रखें। धूप से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल करें और अपने सर को सूती कपड़ों से ढकें। अब आंखों को बचाने के लिए धूप का चश्मा पहने और अपने स्किन पर सनस्क्रीन लोशन लगाएं। कपड़े भी आप गर्मियों में हमेशा हल्के रंग के, ढीले ढाले और सूती कपड़े ही पहने। इन बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो गर्मी के प्रकोप से निश्चित तौर पर अपने आप को बचा पाएंगे। और लीजिए, सुनिए एक और प्यारा सा गीत कार्यक्रम में आगे।

श्रोताओं, इस गाने के साथ ही हालचाल का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए बज्जिका लोकगीत। कलाकार हैं शैलेंद्र सिंह राकेश।

अभी आप सुन रहे थे शैलेंद्र सिंह राकेश से बज्जी का लोकगीत। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में। सुनेंगे पंडित भीम सेन जोशी से शास्त्रीय गायन राग रामकली।

तबले पर इनका साथ दे रहे हैं नाना मूले और हारमोनियम पर हैं पुरुषोत्तम वालवालकर। तो लीजिए, प्रस्तुत है

0: हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए, और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042, हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत पंडित भीमसेन जोशी से राग रामकली। तबले पर इनका साथ दे रहे थे नाना मूले। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अगला कार्यक्रम दिल्ली से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाजरानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
5: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित

0: फोंदी कस्बे से आते हैं जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
5: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को 1 महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमरीका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा

0: शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में CBI ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। CBI का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अमरीकी निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में RGKR मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर $100 billion इन्वेस्टमेंट एंड 1 million जॉब्स अंडर इंडिया EFTA एग्रीमेंट एट बिजनेस एंड रिसर्च समिट इन ओस्लो, नॉर्वे। Prime Minister Modi to meet leaders of all 5 Nordic nations at 3rd India-Nordic summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RGKR Medical College Sandeep Ghosh in financial irregularity case. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad secure playoff berth, beating Chennai Super Kings by 5 wickets. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway

0: तरक्की और कामयाबी की वजह से बैन अल-अक़वामी सतह पर भारत की बढ़ती हुई साख को उजागर किया। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के अपने हममनसबों और नुमाइंदों के साथ आला सतही बाहमी मीटिंगें कीं। ये मीटिंग कल जिनेवा में सेहत के 79वें आलमी इजलास के मौके पर हुई थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि मीटिंग में डिजिटल सेहत, दवासाजी, रेजिलियंट पब्लिक सेहत निज़ाम और जदीद यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में ताउन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो दी गई। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा आलमी सेहत के 79वें इजलास में शिरकत के लिए फिलहाल स्विट्ज़रलैंड में हैं। ये मीटिंग कल शुरू हुई थी जो इस माह की 23 तारीख तक जारी रहेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा से मुतालिक इल्जामात की जांच कर रही जजेज इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है। ये रिपोर्ट जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत कानूनी तकाजों के मुताबिक पेश की गई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: लोकसभा स्पीकर की जानिब से हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जामात की जांच के लिए ये कमेटी गुज़िश्ता साल 12 अगस्त को तश्कील दी गई थी। कमेटी की रिपोर्ट मुनासिब वक्त पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश की जाएगी। ये रिपोर्ट जजेस इंक्वायरी कमेटी के प्रेसाइडिंग अफसर और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट BV आचार्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पेश की। आनंद कुमार और प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जगदलपुर में आज सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे जो छत्तीसगढ़ में बस्तर का डिवीजनल हेडक्वार्टर है। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उजरायाला और सीनियर अहलकार शिरकत करेंगे। जनाब शाह ने बस्तर जिले में नेतनार गांव में पब्लिक सर्विस सेंटर का इफ्तिताह किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत गुज़िश्ता 6 दिहाइयों में नक्सलवाद की वजह से बस्तर के अवाम को बड़े पैमाने पर हुए समाजी, माशी और सकाफती नुकसान की अगले 5 साल में भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि बस्तर डिवीजन में कायम किए गए तकरीबन 200 सिक्योरिटी कैंपों में से 70 कैंपों को अगले 1.5 साल में अवामी खिदमत के मराकज़ में तब्दील कर दिया जाएगा और उन्हें कबायली फलाह बहबूद के हब में तब्दील किया जाएगा। जनाब शाह ने कहा कि ये मराकज मरकज और रियासती सरकारों के तमाम फलाही स्कीमों, बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड और हुनरमंदी की तरबियत से मुतालिक सहूलियात फराहम करेंगे। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: मगरबी बंगाल हुकूमत ने ED को RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की जानिब से जारी सरकारी हुक्मनामे ने मुबैना माली बेजाबतगियों और काले धन को जायज़ बनाने के मामले में घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की राह हमवार कर दी है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए साबिका TMC हुकूमत की जानिब से अपनाए गए तर्ज अमल पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि साबिका तृणमूल कांग्रेस हुकूमत ने बजोर ताकत गैर अखलाकी तरीके से तवील अरसे तक इस केस की जांच को रोके रखा। जनाब अधिकारी ने कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है और सच्चाई को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक मगरबी बंगाल के गवर्नर RN रवि मजाज अथॉरिटी के तौर पर FIR, केस रिकॉर्ड और हकाइक की जांच से मुतमईन हैं और इस बात के हक में हैं कि कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के उस वक्त के प्रिंसिपल संदीप घोष पर अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में वाटर मेट्रो खिदमात की शुरुआत से मुतालिक जायजा मीटिंग की सदारत की। मुल्क में इन खिदमात का तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा है। मरकजी वजीर ने कहा कि मरकज का मुल्क के 18 शहरों में वाटर मेट्रो खिदमात शुरू करने का मंसूबा है जिसमें गुवाहाटी को मरहला 1 के तहत नामजद किया गया है। इसके अलावा श्रीनगर, पटना, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे शहर भी मरहला 1 में शामिल हैं, जबकि आसाम के तेजपुर और डिब्रूगढ़ को प्रोजेक्ट के मरहला 2 में शामिल करने की तजवीज़ है। वजारत ने साथ ही साथ कौमी वाटर मेट्रो पॉलिसी 2026 का मसौदा बैन वजारती मशावरत के लिए तकसीम किया है, जिसमें शहरी

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडी वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294।

0: 4। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
0: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए आज प्रदेश की सभी पंचायतों में हो रहा है सहयोग शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सारण जिले की टुमड़ी बुजुर्ग पंचायत से करेंगे शिविर की शुरुआत। प्रदेश में राशन कार्डधारी परिवारों की जांच में संदिग्ध पाए गए 35,15,000 से अधिक परिवारों के नाम सूची से काटे जाएंगे। खगड़िया जिले के मांझी थाना क्षेत्र में NH 31 पर सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 6 अन्य घायल। और प्रदेश के विभिन्न भागों में तापमान 40 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर तथा बक्सर जिले में लू की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आज से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सारण जिले की टुमड़ी बुजुर्ग पंचायत में आयोजित कार्यक्रम से शिविर का उद्घाटन करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी पटना के नौबतपुर की चिरौड़ा पंचायत में आयोजित शिविर में शामिल होंगे। सभी प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव भी संबंधित जिलों में आयोजित होने वाले शिविर में भाग लेंगे। इन्हें कम से कम 3 प्रखंडों के सहयोग शिविरों में उपस्थित रहने को कहा गया है। इधर हमारी संवाददाता ने बताया कि 7 निश्चय 3 के सबका सम्मान जीवन आसान विजन के तहत इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक तंत्र को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाना है। ये शिविर प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: सहयोग शिविरों में जिलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी खुद मौजूद रहकर स्थानीय स्तर पर मामलों का निपटारा करेंगे। इन शिविरों के माध्यम से राशन, पेंशन, आवास, मनरेगा, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि विवाद, दाखिल खारिज, सीमांकन, जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सरकार ने निर्देश दिया है कि शिविर में प्राप्त शिकायतों का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। ऐसा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से भी इन शिकायतों की सीधी निगरानी की जाएगी। जनता की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल भी क्रियाशील कर दिया गया है। समाचार कक्ष से मैं सविता पारीक।
0: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सहयोग शिविर के तहत प्राप्त आवेदनों का 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाना अनिवार्य है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी 31वें दिन स्वतः निलंबित हो जाएंगे।
2: आपको अटकाना और भटकाना नहीं है। 19 तारीख से यह जब शुरुआत होगा, अगले 20 जून को 31वां

0: दिन होगा साथियों, और जो पदाधिकारी 30 दिन में इसको ऑर्डर नहीं करेंगे, अंतरिम ऑर्डर भी नहीं करेंगे क्योंकि कई चीजें न्यायालय से जुड़े होंगे, तो 30 दिन में जो भी पदाधिकारी आदेश नहीं जारी करेगा वो 31वां दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा।
1: केंद्र सरकार ने प्रदेश में राशन कार्डधारी परिवारों की जांच में संदिग्ध पाए गए 35,15,000 से अधिक परिवारों का नाम सूची से काटने का निर्णय लिया है। इनमें 21,10,000 से अधिक परिवारों के नाम काट लिए गए हैं, जबकि 14,00,000 से अधिक और संदिग्धों के नाम काटे जाएंगे। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। सबसे अधिक 2,12,000 परिवारों के नाम पटना जिले में कटेंगे। प्रदेश में बैंकों का साख जमा अनुपात सीडी रेशियो पहली बार 60% से अधिक हो गया है। बिहार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहली बार 60.21% का सीडी रेशियो हासिल किया है। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में पटना में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकिंग समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। बैठक में सरकारी और निजी बैंकों के स्तर से ऋण वितरण तथा प्राथमिकता क्षेत्रों में वित्तीय प्रवाह की स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने तेल कंपनियों को पाइप नेचुरल गैस पीएनजी के लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटारे का निर्देश दिया है। वर्तमान में पीएनजी के लिए राज्य में 31,774 आवेदन लंबित हैं। मुख्य सचिव ने अतिरिक्त मानव बल और संवेदकों के माध्यम से इन आवेदनों को मिशन मोड में निपटाने का निर्देश दिया। आपदा प्रबंधन समूह की उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव ने पीएनजी कनेक्शन की प्रगति के साथ साथ घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति की स्थिति और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता की भी समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि पूरे राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी को लेकर किसी भी प्रकार की संकट की स्थिति नहीं है। भूमि विवाद के बढ़ते मामलों और लंबित वादों के त्वरित निपटारे के लिए राज्य सरकार ने बिहार भूमि न्यायाधिकरण में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 7 कर दी है। साथ ही न्यायाधिकरण में 5 नए न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति भी की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि फार्मर रजिस्ट्री के लिए चल रहे विशेष अभियान के तहत अब तक 74,434 किसानों का निबंधन हो चुका है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कृषि विभाग तथा भूमि और राजस्व विभाग के अधिकारी समन्वय बनाकर फार्मर रजिस्ट्री अभियान को गति दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि मंदिरों के स्वर्ण भंडार के बदले सरकार मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड जारी करेगी। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह दावा पूरी तरह फर्जी है। पीआईबी ने कहा कि सरकार की ओर से ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक एनके अग्रवाल अंगिका अकादमी और बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वे विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अकादमी के अध्यक्ष पद का दायित्व निभाएंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग के उपनिदेशक दिवेश कुमार चौधरी को अंगिका अकादमी और बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी के निदेशक के पद पर नामित किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। राज्य के अधिकतर

0: सो में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। इस अवधि में कयाची और बक्सर में लू की स्थिति बनी रही। इन स्थानों पर तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कयाची प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बक्सर का अधिकतम तापमान 44.4, डेहरी का 44 और कैमूर का अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं छपरा का 40.4, नालंदा का 40 और पटना का अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर और बक्सर जिले में लू चलने की आशंका को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
1: दिनांक 19 मई राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भभुआ, बक्सर एवं रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र में NH 31 पर हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 6 अन्य घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो रिक्शा के बीच हुई टक्कर के कारण ये हादसा हुआ। सभी मृतक ऑटो सवार यात्री थे। हादसे के बाद मौके से भागने के क्रम में ट्रक ने सामने से आ रहे दो अन्य वाहनों को भी टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुर्घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने सभी मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रूपये अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। इधर रोहतास जिले के धौड़ार थाना क्षेत्र में तिलोथू सासाराम मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जाती है। पटना स्थित नियोजन भवन में आज पूर्वाह्न 11 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। युवा, रोजगार और कौशल विकास विभाग के तत्वावधान में आयोजित मेले में 12वीं पास 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। गया जिले के कोठी थाना क्षेत्र के रानीपुर टेला में बालू माफिया पुलिस पर हमला कर 2 जब्त ट्रैक्टर छुड़ाकर भाग गए। इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। इन सभी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कटिहार जिले के बलरामपुर थाना क्षेत्र के फरसरा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक महिला समेत 2 तस्करों को मादक पदार्थ स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। IPL क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। गुजरात टाइटंस भी अंतिम 4 में पहुंच गई है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले ही प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। सीतामढ़ी के जानकी स्टेडियम में खेले जा रहे श्यामल सिन्हा अंडर 16 एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में गया ने बेगूसराय को 65 रनों से पराजित कर फाइनल में जगह बना ली है। बिहार फुटबॉल एसोसिएशन ने निर्देशों की अवहेलना और संगठनात्मक नियमों के उल्लंघन के आरोप में पश्चिम चंपारण, सीवान, अररिया, गया, बेगूसराय, वैशाली, सहरसा, सुपौल और नालंदा जिला फुटबॉल संघों के सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश को प्रमुखता देते हुए लिखा है, निर्माण कार्यों के प्राक्कलन की AI से जांच अनिवार्य। दैनिक जागरण ने लिखा है, पटना और सिवान में अपराधियों से मुठभेड़, दोनों के पैर में लगी गोली। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सम्राट बोले 20 दिन में 2 नोटिस, 30 दिन में काम नहीं हुआ तो सस्पेंड। प्रभात खबर ने राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल के हवाले से लिखा है, बिहार में 3 और सैटेलाइट टाउनशिप बनेगी। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं। सहयोग शिविर आज पंच

0: पंचायत में सुनी जाएगी फरियाद। आज अखबार लिखता है अब स्कूलों में रोज होगी बच्चों के बैग की जांच। बच्चे का स्कूल बैग उसके शरीर के वजन से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए आज प्रदेश की सभी पंचायतों में हो रहा है सहयोग शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सारण जिले की डुमरी बुजुर्ग पंचायत से करेंगे शिविर की शुरुआत। प्रदेश में राशन कार्ड धारी परिवारों की जांच में संदिग्ध पाए गए 35,15,000 से अधिक परिवारों के नाम सूची से काटे जाएंगे। खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र में NH 31 पर सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 6 अन्य घायल। और प्रदेश के विभिन्न भागों में तापमान 40 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर तथा बक्सर जिले में लू की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: उपभोक्ता आयोगों में शिकायतों की ई फाइलिंग करना हुआ और भी आसान।
2: घर बैठे ही ई जागृति पोर्टल www.e-jagriti.gov.in पर कहीं से भी खुद से रजिस्टर कर अपना केस दर्ज कर सकते हैं। 5,00,000 रुपए तक के मामलों पर कोई शुल्क नहीं।
1: ई जागृति पोर्टल उपभोक्ताओं का अपना डिजिटल मंच। शिकायत दर्ज करें और त्वरित समाधान पाएं।
3: जागो ग्राहक जागो।
2: खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में जारी।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: इधर आइए, इधर।
6: इधर?
5: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
7: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
6: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
7: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
6: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
8: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
7: शुभ वाणी,
8: लाभवाणी,
5: आकाशवाणी।

0: अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक प्रभु राम।
1: वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता।
0: सुनिए प्रतिदिन प्रातः 6:35 पर संत तुलसीदास कृत रामचरितमानस गान।
2: भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का पटना दरभंगा केंद्र है, पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

I mean, अगली गजल पेशे खिदमत है तलत महमूद की आवाज़ में।

आकाशवाणी के पटना दरभंगा केंद्र से अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है रसमंजरी।

श्रोताओं, रसमंजरी कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं पहला गाना अमित त्रिवेदी और मेरी नायर की आवाज़ में काय पूछे फिल्म से। स्वानंद किरकिरे के बोल पर इस गाने की धुन बनाई है अमित त्रिवेदी ने।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से,
4: फसा। अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
4: फसा। UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है और आप सुन रहे हैं रस मंजरी। चलिए कार्यक्रम में अगला गाना पेश करते हैं भारत फिल्म से, श्रेया घोषाल और नक्काश अजीज की आवाज में। गाने को लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत है विशाल शेखर का।

जब वी मेट, इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज़ में। और आइए सुनते हैं अगला गाना, श्रेया घोषाल और निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज़ में, बर्फी फिल्म से। इस गाने के बोल लिखा है लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: श्रुता हूँ इस गाने के साथ ही रसमंजरी का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं गुदड़ी कलाकार प्रियंका कुमारी से धर्मेंद्र राठौर की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम इनसे मिलिए में स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी लोक शिल्पकार जिन्होंने पुरानी जो पुराने कपड़े होते हैं, गुदरी होते हैं, जो प्रयोग में नहीं होते हैं, उन कपड़ों को नई जिंदगी दी। परंपरा, सृजनशीलता और प्रकृति मित्र सोच का एक सुंदर, जिसे आप कह सकते हैं उसका संगम, उसका उदाहरण गुड़िया के रूप में बनाकर पेश करती हैं। देश की संस्कृति और जो कारीगरी है उसको नई पहचान दिलाने वाली दक्ष देशज पुरस्कार से भी ये सम्मानित हैं। जी, आप हैं प्रियंका कुमारी,
2: जी
1: प्यार से लोग आपको मीठी भी कहते हैं। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में प्रियंका जी।
2: नमस्कार, मैं आकाशवाणी पटना को मैं नमस्कार करना चाहती हूँ। मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किए और इस कार्यक्रम सुन रहे हैं समस्त श्रोतागणों को मैं अभिनंदन करती हूँ।
1: प्रियंका जी, जिस तरह से हमने अभी देख भी रहे हैं कि आपने जो जो बेकार जो कपड़े अक्सर लोग बेकार छोड़ देते हैं, उन कपड़ों का कितना सदुपयोग किया है, इन पुराने कपड़ों से जो गुड़िया बनाती हैं, तो इस तरह का विचार, एक यूनिक विचार है अपने आप में। कैसे आपके मन में ये विचार आया कि इसका इस तरह से प्रयोग किया जाए?
2: मैं सरस सर से मिली
1: जी
2: तो
1: जी
2: मैं तो मधुबनी टिकली पेंटिंग के कोर्स किए थे,
1: अच्छा जी
2: उपेंद्र वाला थे से।
1: जी जी
2: तो 2013-14 में मैं सरस सर से मिली तो सरस सर बोले कि ये विलुप्त हो गया है, इस पे काम करो। तो मैं उस समय से मैं गुड़िया शिल्प पे काम करना शुरू कर दी।
1: जी जी तो इसमें जैसे कि आप ये पहले से इसकी क्या इतिहास रहा है गुड़िया शिल्प का कुछ?
2: ये पहले से ये इतिहास है क्योंकि उपेंद्र महारथी स्थान को गुड़िया सेंटर के नाम से जानते थे
1: अच्छा
2: लोग।
1: जी,
2: ये उपेंद्र महारथी जी जब नहीं रहे तो फिर वो सारा गुम हो गया।
1: धीरे धीरे समाप्त हो
2: हाँ,
1: गया वो।
2: समाप्त हो गया। उस सर को मतलब एक तलाश थी कि एक कुछ ऐसे, तो सिलाई फड़ाई मेरी माता श्री से हम सीखे, तो सर से हम मिले तो सर बोले कि मिट्टी तुम गुड़िया पे काम करो।
1: जी,
2: तो मैं गुड़िया पे काम करना शुरू किया।
1: अच्छा, तो पहले से आपका जो है सिलाई
2: जी
1: वगैरह में,
2: हाँ,
1: आप पहले से
2: मम अपनी माता श्री से मैं ये सब
1: जी,
2: सीखी थी।
1: तो एक तरह से बचपन में आपका इंटरेस्ट था, लेकिन जैसे ही आपको एक तरह से मार्गदर्शक के रूप में जब आपके सर मिले, तो इसमें आप जैसा कि बचपन में ऐसी कोई कला या कुछ ऐसे आपने बनाया, क्या देखा उन्होंने आप में कि आपको इस ओर प्रेरित किया
2: मेरी
1: उन्होंने?
2: नानी और मेरी माँ लोग करती थी,
1: जी,
2: तो वो सूजनी पे काम करती थी, ये मतलब डिजाइन सब, ब्लाउज सब, ये सब करती थी।
1: जी जी
2: तो हम सर से मिले

0: सर बोले कि इसी में तुम कर सकती हो, तो वही सर बोले कि डॉल पे काम करो, तो
1: तो
0: मैं
1: क्या इसके
0: कर
1: लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह उनकी तरफ
0: नहीं,
1: से दिया गया?
0: मैं ट्रेनिंग
1: खुद से
0: नहीं,
1: आपने
0: खुद
1: प्रयास
0: से
1: किया और उसको अपना
0: अप,
1: अपने तरफ से रूप देना देने की कोशिश की।
0: जी
1: तो इस तरह की जो गुड़िया बनाती है, बेकार जो कपड़े अनयूज रह जाते हैं, पुराने कपड़े फटे जो होते हैं, जिनको हम लोग गुदड़ी कहते हैं, बनाने में, ये गुड़िया बनाने में किस प्रकार कैसे उपयोग करती हैं? एक सरल भाषा में हम मैंने जानना चाहें कि उसका उपयोग लाने के लिए पहले क्या क्या फॉर्मेशन होता है उसका।
0: वे पहले तो रुई
1: जी,
0: रुई और धागा से पहले पूरा पूरा स्कल्पचर
1: एक
0: बनाते हैं। उसके
1: जी।
0: बाद पुराने कपड़े, धागे और ज्वेलरी सब भी मैं तैयार करती हूँ, वो भी पुराने कपड़े से,
1: अच्छा जी,
0: और मोती गोटा ये सब रंग कलरफुल धागा ये सब से पूरा तैयार करते हैं।
1: तो जिस तरह से हम देख भी रहे हैं आपके जो तैयार किए हुए जो गुड़िया हैं, रंग बिरंगे, कुछ भगवान के भी जो है, कुछ प्रतिमाओं को आपने बनाया है, तो इसको तैयार करने में काफ़ी एक तरह से बारीकियों का ख्याल रखा गया है। तो तैयार करने में लगभग कितना समय लग जाता होगा इसको?
0: बड़ा काम करने में तो 1 से 2 महीना लग जाती है
1: एक से
0: इसमें,
1: दो
0: लेकिन मेरे घर में मंदिर है तो मैं बचपन से ना ड्रेस, भगवान की ड्रेस बनाते थे,
1: जी।
0: वहाँ से मुझे लगा कि मैं हिंदू मैथोलॉजी पे क्यों नहीं काम करूँ, तो मैं भगवान पे ही सिर्फ काम करना, शिवा कृष्णा मैं उसी पे काम करना शुरू कर।
1: जी, तो जो ये गुड़िया हैं इसके बनाते हैं, इतने लंबा समय आपको देना पड़ता है इनके बनाने में, तो क्या कभी इसके लेकर सोच कर कि इतना मेहनत दे रहे हैं इस, तो इसकी कितनी आजकल अभी के समय में प्रसिद्धि आप अपने नज़र से देखती हैं कि कहाँ तक पहुँचा ये सफ़र आपका?
0: सफर थोड़ा परेशानी तो होती है,
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: परेशानी थोड़ा बहुत तो होती है, लेकिन घर वाले भी शुरू शुरू वो क्या कर लेगी इसमें, ये क्या होगा, लेकिन जब एक दो एग्जीबिशन हम दिए और पेपर में आने लगा तो वो लोग भी बहुत खुश हो गए इस काम से,
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: पहले सपोर्ट नहीं मिलता था मुझे घर से,
1: अच्छा, सपोर्ट इसको नहीं मिलता, लेकिन आपने
0: नहीं
1: फिर भी हिम्मत
0: फिर
1: नहीं
0: भी
1: हारी।
0: हिम्मत, फिर सर जो थे वो
1: जी
0: बोलते थे सर धागा नहीं है, तो सर सामान भी बहुत इकट्ठा कर देते थे, सिर्फ काम करो तुम कर सकती हो, तुम ही कर सकती हो।
1: सामान, जैसा कि आपने जिक्र
0: हाँ
1: किया, तो इसमें सामग्री चुनने की अगर हम बात करें, जैसे खासकर कपड़ा इसमें हम लोग देख रहे हैं, और रंग के अनुसार धागे का जैसा प्रयोग किया गया है सजावट के रूप में, तो इसमें आप किस किस बातों का ध्यान रखती हैं? मानक क्या होता है इसको बनाने के लिए, कुछ ऐसा डिसाइड करती होंगी?
0: जैसे पुराना कपड़ा गुदरी से मैं तैयार करती हूँ
1: जी
0: तो उसका फेस में थोड़ा सा मैं एकदम थोड़ा सा व्हाइट डालती हूँ, क्योंकि
1: जी
0: पुराना पे कलर मतलब कोई भी कलर डालेंगे तो दिखेगा नहीं,
1: बिल्कुल
0: थोड़ा सा मैं एकदम फेस में नया यूज करती हूँ, अब पूरा पुराना कपड़ा मैं और धागा से तैयार करती हूँ, वो पुराना कपड़ा मैं इस तरीका से ढक देती हूँ कि वो पता ना चले, धागा और ये चीज़ ज्वेलरी से ये पता ना चले कि ये पुराना गुदरी कपड़ा से बना हुआ है।
1: जी, बिल्कुल। हाँ, हम देख भी रहे हैं कि कई जगह आपने, जैसे कि ये जो आपने ये कलाकृति जो गुदड़ी की गुड़िया बनाया है, प्रदर्शनी के लिए आपने कहाँ कहाँ इसका अब तक आपने लगाया है?
0: मैं नेपाल पोखरा गई थी
1: जी,
0: 2019 में, फिर बिहार म्यूजियम में एक बार प्रदर्शनी की, और उन्मेषा ज्ञान
1: हाँ
0: भवन
1: जी
0: में
1: जी
0: मैं
1: जी
0: की है। मैं ज़्यादा एग्जीबिशन नहीं, क्योंकि काम करने में भी टाइम लगता है ना, मैं
1: जी जी
0: ज़्यादा एग्जीबिशन नहीं अभी कर पाई हूँ, क्योंकि जिस जगह पे मुझे रखता है कि मैं अपना काम को मैं रखूँ और मान सम्मान मेरे काम को मिले, मैं उसी जगह पे काम को रखती हूँ।
1: जी तो मान सम्मान की बात की, पहचान की बात की, निश्चित रूप से आपका ये काम अभी उतना लोगों के बीच में है नहीं, आप प्रयास कर रही हैं, तो इसे और पहचान दिलाने के लिए आप अपने स्तर पर क्या प्रयास करते
0: बस हमको अभी मेहनत करना और एग्जीबिशन की तैयारी करना है, और पहचान तो मेहनत करेंगे
1: हैं? मेहनत करेंगे तो
0: तो
1: निश्चित रूप से
0: पहचान
1: पहचान,
0: मिल
1: जी, मिलेगी।
0: जाएगी।
1: कला और पहचान तो है जो आपके काम से ही उसकी पहचान
0: जी
1: मिलती है।
0: जी
1: अगर खासकर इसके हम बात करें, एक तरह से कमर्शियलाइजेशन की बात करें, तो आपके आपने कभी जैसे बिक्री के लिए, बेचने के लिए, जैसे कुछ लोगों को पसंद आपकी गुड़िया आ रही है जैसा, तो क्या कीमत कुछ भी ऐसा है जो मार्केट में अभी ये बिकने के लिए बिकता है?
0: मार्केट में मेरे अच्छे प्राइस की डॉल मेरा मतलब
1: जी
0: निकला,
1: जी
0: 15 से 20 हज़ार के प्राइस में भी मैं ये एक ज्ञान भवन में सेल हुआ था,
1: अच्छा, एक
0: लेकिन
1: आइटम,
0: एक आइटम।
1: बहुत बढ़िया। हमने देखा भी कि जैसा कि आपने प्रदर्शनी लगाया हेमा मालिनी जी की, आपके जो ये कलाकृति जो आप बना रही है, उनके हाथ में भी देखा, तो उनसे आप कैसे वहाँ तक ये पहुँचा आपका ये सफ़र?
0: ये सर की वजह से
1: तो उनसे मिली तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहा आपकी, इतना सुंदर जो आपने बनाया है गुड़िया गुदड़ी से, एक
0: जी
1: विशेष कलाकृति, मतलब एक तरह से हम कह सकते
0: मैं
1: हैं।
0: उनसे अभी मिली नहीं हूँ,
1: जी,
0: क्योंकि वो मेरा काम को पसंद किए थे,
1: अच्छा,
0: पार्लियामेंट में काम जो हम किए हैं ना तो
1: जी,
0: वो काम के बारे में वो लिखे थे।
1: इस सफ़र में आप तक जिस तरह से आप काम कर रही हैं, या पार्लियामेंट में का भी जिक्र किया कि वहाँ पर आपके काम की सराहना की गई, कुछ ऐसे यादगार क्षण आपके इस सफ़र में ऐसा कुछ हो जो साझा करना चाहेंगी आप?
0: बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे इस काम के वजह से इंडिया और इंडिया के बाहर लोग भी जान रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है।

0: क्योंकि इंडिया से बाहर से भी हमें मौका मिली, लेकिन मैं अभी जा नहीं पाई क्योंकि घर वाले बोले इंडिया में ही काम करो।
1: जी,
0: मेरा सारा पासपोर्ट ये सब तैयार मेरा है जाने के लिए।
1: बिल्कुल। सरकार भी लगातार ऐसे युवा या फिर जो भी जो नए चीज़ों को इनिशिएट करते हैं, जैसे आजकल वेस्टेज जो हैं
0: जी
1: खासकर, बहुत उसका भी लोग सामान, सजावट के सामान या कई अन्य चीज़ों का उपयोग करते हैं, सरकार इसके लिए प्रोत्साहन भी करती है। तो इस कला को आगे बढ़ाने की अगर बात करें, तो चुनौती जो हुआ, जो आपको फील हुआ कि थोड़ी सी मुश्किल है, या फिर कुछ अपेक्षा सरकार से जो आपको
0: नहीं,
1: मिलनी
0: थोड़ा
1: चाहिए?
0: सपोर्ट मिल जाएगी ये सरकार से, तो मैं चाहूंगी कि मेरे जैसी कोई और लड़की हो, मैं उसको निकाल के मैं काम करूँ फिल्म में।
1: तो मतलब आप अभी फिलहाल जहाँ पर हैं, तो आप कितने लोग मिलकर काम करते हैं?
0: अभी तो गांव में है, मैं
1: जी
0: मेरा जो
1: जी
0: घर हुआ थमल गोला, वहां तो ये सब का कोई
1: स्कोप नहीं है।
0: नहीं है। अब वहां मैं किसी को समझा भी नहीं सकती हूँ। सोच रही हूँ कि कोई अच्छा जगह हो कि मैं खुल के काम करूँ।
1: तो इस कला के भविष्य के लिए आप लगातार, खैर इसमें आप कर रही हैं, आपके जो कलाकृतियां हैं हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के हैं और न जाने असंख्य मात्रा में हैं, जहां आपने प्रदर्शनियां लगाई, छोटे से लेकर बड़े तक, और विभिन्न देवी देवताओं के भी हैं। इसके लिए एक भविष्य की योजना की बात करें, इस कलाकृति को, इसको खासकर हम लोग गुदड़ी कला आप कह रही
0: जी
1: हैं, तो
0: जी
1: गुदड़ी कला का जो है, इसका भविष्य क्या है? कैसे कोई अगर इस क्षेत्र में आना चाहे तो क्या देखेगा, कैसे भविष्य वो अपना देखेगा इसमें?
0: तो जितना मेरा संघर्ष है मैं उसको बताऊंगी
1: जी,
0: और बोलूंगी कि भविष्य कितना कितना क्या भविष्य है कोई नहीं जानता है। सिर्फ काम करो, आर्टिस्ट का पहचान जाने के बाद ही होती
1: बिल्कुल। वो तो है ही कि
0: है।
1: जो आर्टिस्ट अपने दमखम पे, अपने जो उनका मुकाम है, वो जितनी उनकी मेहनत रहेगी उतनी ऊंचाई पर
0: बस
1: वो जाएंगे। नई पीढ़ियां जो इस क्षेत्र में आना चाहें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ें और नए नए तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जैसा कि आपका भी एक अनूठा एक तरह से प्रयास है। कुछ लोग चाहते हैं कि इस चीज़ को आपके फैले भी और इसमें आए,
0: मैं
1: तो
0: बिल्कुल सिखाना चाहूंगी। अभी तो मेरा बस थोड़ा सा सरकार से सपोर्ट मिल जाए तो मैं एक एग्जीबिशन करूंगी। मतलब 1-2 साल अभी और टाइम देना है उस पे,
1: जी,
0: और एग्जीबिशन करूंगी। उसके बाद फिर मैं सबके जोड़ के फिर काम करना चाहूंगी।
1: परिवार का सपोर्ट की बात आपने की पहले, लेकिन अब कैसा सपोर्ट है?
0: अब सब कोई अच्छे कहते हैं, बोले ये फील्ड अच्छा है, पापा लोग, मम्मी जो भी है, सब अच्छे बोल रहे
1: तो
0: हैं।
1: अब पूरी
0: गांव
1: तरह से आपको सपोर्ट मिलता
0: जी,
1: है।
0: अब सपोर्ट मिल रहा है।
1: तो इसको पहचान देने के लिए, मतलब कई बार होता था कि क्या बेकार जो है इस चीज़ को आप लेकर कर रही हैं, लेकिन अब लोगों में जब इसकी, और खासकर आपका जब पहचान दूर दूर तक जब होने लगा है,
0: जी
1: विदेशों में के आपने जिक्र किया, तो कहाँ कहाँ तक प्रदर्शनी का मौका मिला अभी तक, या फिर?
0: नहीं, विदेश जैसे सर फेसबुक पे डालते हैं ना,
1: जी
0: तो
1: जी
0: मैसेंजर पे आता है, स्पेन से आया था, फिर ये रंडल मॉरिस गैलरी है
1: जी
0: वहाँ, तो सर वो सब ये सोशल मीडिया पे मैंने फेसबुक भी नहीं चलाती, सिर्फ थोड़ा सा व्हाट्सएप में यूज करती हूँ। वो सर डालते हैं और सर दिखाते हैं कि देखो तुम्हारा ये आया, पासपोर्ट बनवा लो, कभी भी जाने का मौका
1: अच्छा, तभी तक
0: मिलेगा।
1: आपका पासपोर्ट नहीं बना है?
0: नहीं, पासपोर्ट बन गया है।
1: अच्छा, बन गया।
0: हाँ, ये
1: जी
0: सारा
1: जी बिल्कुल। तो आपका भविष्य का योजना है
0: जी
1: बिल्कुल, और सर भी आपके इस पीछे आपका सपोर्ट में है। फैमिली सपोर्ट होना निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी भी है। प्रियंका जी, हम लोग अपनी बातचीत को आगे जारी रखेंगे, उससे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने पसंद का गीत हम लोग भी सुने और श्रोताओं को भी सुनवाएं। तो कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
0: पहली फिल्म का कोई भी गीत।
1: लीजिए, हम सुनते हैं पहले पहली फिल्म का ये गीत।

0: काफ़ी प्यारा गीत था। इस गीत के बाद एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। प्रियंका जी, जैसा कि आप इस गुड़िया कला को आप देख रही हैं, तो हमारी जो संस्कृति है, खासकर शादी विवाहों में भी इसका हम लोग कई बार देखते हैं कि गुड़िया का लोग कुछ ही रूप में रखते हैं, तो क्या इसका और उससे क्या कनेक्शन है?
1: बेटी की शादी होती थी ना, तो यहाँ से डॉल मतलब गुड़िया जा पहले बहुत सदियों पुराना
0: जी।
1: ये माँ लोग देती थी। और जब शादी हो जाती थी लड़की लोग का, तो वो मायके या ससुराल से जहाँ भी पूछती थी वहाँ आता था। तो वो वट सावित्री में वो गुड्डा गुड्डी के अभी भी

0: अवस्थ वहाँ पे रख रखाता है और पूजा होता है। तो ये बहुत सदियों पुराना प्रथा है।
1: तो इसका परंपरा फिर से शुरू किया है, तो कितना आपको लगता है कि फिर से उस रूप में जो हमारी एक संस्कृति है, एक पहचान है, उस रूप में स्थापित होगा?
0: मैं कोशिश कर रही हूँ कि और लोगों को जोड़ के मैं काम करूँ इस पे।
1: पूजा कई बार से शादी विवाह के बाद वट सावित्री वगैरह का भी पूजा जो हमारे समाज में है, हमारी संस्कृति में है, हमारे धर्म में है, तो उसमें भी कई जगह ये इस प्रकार की चीजें देखी जाती हैं।
0: जी, वहाँ पे क्या होता है, गुड्डा गुड्डी को रख के पूजा किया जाता है
1: जी,
0: क्योंकि वो हिंदू मैथोलॉजी में उसमें जुड़ा हुआ है, इसीलिए वहाँ पे रखा जाता है। बहुत पूर्वज से ही लोग प्रथा ये चलाया रहा है।
1: बिहार में अगर हम बात करें, खासकर ये कला जो अब कहीं भी तो देखने को नहीं मिल रही है, फिलहाल कई जगह हमने जब देखा तो जो लेदरा, जो सुजनी कला का कई जगह में उदाहरण देखने को मिला है कि वो भी डेवलप हो रहा है। तो
0: जी
1: सुजनी कला और जो गुड़िया कला है, दोनों दोनों आपस में कितना भिन्न है, या फिर एक ही प्रथा का एक ही कला के पार्ट है
0: नहीं,
1: ये?
0: सुजनी भी बहुत पहले, सुजनी भी बेटी को साठ में दिया जाता था।
1: जी,
0: जब शादी होती थी ना बेटी को, तो नानी लोग भी दिए माँ को, अभी भी रखा हुआ है। तो
1: जी,
0: मम्मी भी सुजनी बनाती है।
1: तो सूजनी बनाना और ये दोनों कितना डिफरेंट है या एक ही प्रकार का
0: ये
1: है?
0: है सुजनी, सुजनी का है ना कि सुजनी आप बिछा सकते हैं,
1: जी,
0: और उतना ही तक उन लोग का था कि बस बेटी को देते थे और बिछाते थे। और अब क्या हो रहा है कि अब एग्जीबिशन काम करते उस तरीके से काम लोग कर रहे हैं, तो सुजनी को इंडिया से बाहर भी बहुत पेंटिंग के
1: तौर
0: पर्पस
1: पे
0: से वो
1: होते हैं।
0: यूज करते हैं।
1: जी,
0: तो ये सुजनी थोड़ा अलग हो गया।
1: म्यूजियम के साथ साथ लोग अपने घरों में सजावट के
0: जी,
1: रूप में उपयोग करना अगर
0: उपयोग
1: चाहें
0: करें
1: तो।
0: वो लोग।
1: जी, तो अगर आप मार्केट में इन चीज़ों को ले जाती हैं, तो एक आपके द्वारा बनाए हुए ये जो गुड़िया है, इसकी क्या कीमत हो सकती है मैक्सिमम और मिनिमम?
0: छोटा छोटा गुड़िया को तो मैं 3 से 4 हजार रुपया रखती हूँ,
1: जी
0: और
1: जी
0: बड़ा जो 10 से 15 हजार रुपया,
1: कॉस्ट जो है आपका, पूरा पूरा जो मेहनत उसमें लगता है, ये उसका
0: उस
1: कॉस्ट है,
0: हिसाब से कॉस्ट को मैं
1: उसके
0: रखती
1: हिसाब
0: हूँ।
1: का कॉस्ट है।
0: जी
1: वैसे सामग्री वाइज अगर हम बात करें, डिटेलिंग वाइज हम बात करें, तो लगभग कितना कॉस्ट इसमें पड़ जाता है?
0: अब छोटा सा डॉल में तो ज़्यादा कॉस्ट होता है, लेकिन हाँ बड़ा काम करते हैं तो उसमें रुई, पुराना कपड़ा और कलरफुल धागा, ये सब का कॉस्ट थोड़ा बैठता है उस पर।
1: और सबसे ज़्यादा इसमें आपकी मेहनत जो लगती
0: जी
1: है, पेशेंस
0: मेहनत।
1: जो लगता है,
0: जी
1: और जो बारीकियां हैं,
0: जी
1: तो बारीकियों को सीखने के लिए अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई इस में आना चाहता है, तो हमारे यहाँ तो बिहार में इस प्रकार का कोई संस्था या प्रशिक्षण संस्थान है, या फिर खुद से ही करना पड़ता है?
0: नहीं, अभी तो है उपेंद्र महारथी संस्थान है,
1: जी,
0: लेकिन वहाँ पे सिखाया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा कुछ से उससे अलग काम करना कोशिश की हूँ।
1: तो उसमें क्या मतलब, गुड़िया ही बनाया जाता है या फिर उसका कोई अलग उनका कॉन्सेप्ट है?
0: नहीं, गुड़िया ही है,
1: गुड़िया ही है,
0: गुड़िया ही
1: तो
0: है,
1: उनसे आपका गुड़िया किस प्रकार भिन्न है, जैसे कि वो
0: अलग है
1: तैयार
0: क्योंकि
1: कर?
0: मैं तो उसका ज्वेलरी मार्केट से खरीदा हुआ रहता है। मेरा ज्वेलरी मैं बनाती हूँ, वो ज्वेलरी भी मेरा हाथ से तैयार रहता
1: अच्छा, इसके सारे जो
0: है।
1: ज्वेलरी आप
0: हाँ,
1: इस गुड़िया
0: सारा
1: में
0: मैं
1: हम
0: हाथ
1: देख
0: से
1: रहे
0: तैयार,
1: हैं। जी,
0: पुराने कपड़े से ही तैयार करती हूँ
1: अच्छा, वो ज्वेलरी सारे
0: ज्वेलरी।
1: कपड़े के
0: हाँ
1: होते हैं,
0: जी, टोटल
1: तो उन्हें बनाने में कितना मेहनत लगता है और
0: उसमें
1: किस बात
0: ज्यादा
1: पर ध्यान
0: ज्वेलरी
1: लगता
0: बनाने में ही टाइम लगता है।
1: है? हमारी ऐसी शुभकामना है कि पूरे विश्व में आपका ये जो का प्रयास है वो पहुँचे, लेकिन जिस तरह से अंधविश्वास लोगों में है खासकर, तो वहाँ पर उस मोड़ पर आपकी चुनौतियों कैसे सामना करेंगी?
0: मैं तो उन लोगों का सोच तो नहीं बदल सकती हूँ, मैं मेहनत कर सकती हूँ, मैं खुद आगे बढ़ सकती हूँ, उन लोगों का सोच तो मैं बदल नहीं सकती हूँ। हाँ
1: लेकिन
0: जी
1: लगातार आपके प्रयास को जिस तरह से
0: जी
1: सराहा जा रहा है, सरकार द्वारा भी आपको इसके लिए पुरस्कार या फिर कोई सम्मान मिला अब तक?
0: नहीं, 10 ऐसा शिल्प सम्मान मिला।
1: शिल्प दक्ष सम्मान,
0: जी
1: और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के लिए अपने प्रदर्शनी के माध्यम से अब
0: जी
1: तक का सफर में अन्य कोई और पुरस्कार इसके अलावा?
0: नहीं, बिहार म्यूजियम में एग्जीबिशन किए थे
1: जी,
0: तो बहुत सारा सब ने सराहा। फिर बहुत काम, जहाँ हम रखते हैं ना तो सेल भी बहुत होता है, लेकिन मैं अभी रख नहीं पाती हूँ क्योंकि एक एक काम करने में मेरा बहुत टाइम लगता
1: टाइम
0: है।
1: टेकिंग
0: तो
1: है।
0: मैं सेल कर दूंगी तो मैं एग्जीबिशन कैसे कर पाऊंगी।
1: खासकर जैसे आप गुड़िया बनाती हैं, तो हमेशा कोई ना कोई नए नए, चूंकि एक ही डिजाइन और स्टाइल को तो बनाती नहीं है,
0: जी
1: तो इसके लिए हमेशा इसमें कुछ इनोवेशन हो, इसके लिए भी क्या कुछ प्रयास करती हैं उसके?
0: मैं प्रयास करती हूँ, जैसे धान का जो पुआर, जैसे गांव घर में जिसको पुआरा बोलते हैं,
1: जी,
0: मैं उससे भी तैयार करती हूँ, और ग्रास एंड रिश पे भी काम कर रही हूँ।
1: मतलब हरी घास
0: हाँ,
1: का कोई?
0: मतलब हरी घास जो पका हुआ जो रहता है
1: जी,
0: उसको बांध के मैं उससे भी बहुत चीज़ तैयार कर रही हूँ।
1: तो गुड़िया के अलावा तो उसका प्रयोग आप इसी में करती हैं या फिर वो अलग
0: नहीं
1: सेपरेट
0: नहीं
1: कला है?
0: मैं इसी में करती हूँ, डॉल में ही कर रही हूँ अभी। इधर इधर 6 महीना से कुछ नया करने की कोशिश कर रही हूँ।
1: तो रचनात्मकता की दृष्टि से लगातार इसमें आप इनोवेशन करती हैं,
0: जी
1: तो उन जो आप धान और ग्रास का जो प्रयोग करती हैं, तो उसका इसमें किस पार्ट में इसका उपयोग होता है, खासकर जिस प्रकार आप

0: हाथ पाँव या फिर कौन से
1: नहीं पूरा
0: पार्ट,
1: बॉडी
0: पूरा बॉडी का स्कल्पचर उसका बनाने के
1: पर
0: लिए पहले उसका
1: हाँ मैं
0: प्रयोग करती
1: करती
0: हैं
1: हूँ, उसके बाद
0: रुई के साथ साथ।
1: उसके रुई के साथ उसके बाद ऊपर से रुई डालती हूँ, फिर पुराना कपड़ा से उसको मतलब पूरा अच्छे से लपेटना है कि वो दिखे नहीं, और उसके बाद फिर ज्वेलरी से पूरा तैयार करती हूँ।
0: तो ये जो पूरी प्रक्रिया आप गुड़िया शिल्प है, इस
1: जी
0: प्रक्रिया को अगर हम श्रोताओं को सरल भाषा में बताना चाहें कि ये बेसिकली है क्या और किस प्रकार आप इसको तैयार करती हैं, सरल भाषा में हमारे श्रोताओं को बताएं कि जो ये आप जो कर रही हैं
1: जी
0: वो बेसिकली है क्या।
1: ये बिहार की मतलब बिहार की बहुत पुरानी सदियों पुरानी एक कला है, मैं उसको जिंदा करने की कोशिश कर रही।
0: जो पहले की कला चली
1: जी
0: आती थी, हालांकि उसका रूप आपने कुछ बदला या पे जो
1: नहीं
0: पहले
1: नहीं
0: चला
1: कुछ
0: आ रहा
1: थोड़ा
0: था
1: उससे थोड़ा कुछ
0: थोड़ा
1: अलग किए,
0: एडवांस आप
1: अलग किए है
0: जी
1: क्योंकि वहां बनाए 10 10 फीट का,
0: 10 फीट का सिर्फ केवल
1: दस
0: इसी
1: ये
0: पुराने
1: पुराने कपड़े में।
0: कपड़े का
1: जी
0: इस प्रकार का मत कलेक्ट कर रही हैं प्रदर्शनी के लिए।
1: जी
0: प्रियंका जी, जिस तरह की आपने क्षेत्र को बढ़ा रही हैं और मीठी के नाम से आप फेमस हैं, इसके लिए आपको कई प्रकार के, जैसा कि आपने कहा, प्रोत्साहन भी मिला, प्रदर्शनी भी आपने दी, दक्ष देशज का पुरस्कार भी मिला। ये किस आपको ये पुरस्कार मिला, ये कितना अहम है आपके लिए और किस प्रकार आपको प्रोत्साहित करता है?
1: बहुत अच्छा लगता है, मैं पुरस्कार के और ये काम से मुझे लोग जानते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लगता है कि मैं इस फील्ड को अब कभी ना छोड़ूंगी।
0: प्रियंका जी, आप समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए और हमसे बात की। चलते चलते हम चाहेंगे कि जो ये कला है आपका, निश्चित रूप से काफ़ी उत्कृष्ट है, जिस प्रकार से हमने अभी देख भी यहाँ पर देखा भी, आपकी दो तीन जो आपने हमें प्रदर्शित किया दिखाया, जिस प्रकार से इसमें बारीकियों का ख्याल रखा गया है, जो भी युवा इसमें जुड़ना चाहते हैं, एक संदेश के रूप में आप उन्हें क्या कहना
1: मैं
0: चाहेंगे?
1: बिल्कुल जुड़ना चाहूंगी, और जैसे मुझे निकाला गया गांव से, छोटा सा गांव से, मैं उस सबको निकाल के काम करूंगी।
0: तरह से स्वरोजगार की जो कॉन्सेप्ट
1: जी
0: है भारत सरकार की,
1: हम
0: लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना, इस माध्यम से आपकी ये कोशिश है, बहुत अच्छा
1: जी
0: प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे श्रोताओं के लिए इतनी प्रेरक बातें साझा की, अपनी कला जो न केवल एक कला है बल्कि पर्यावरण मित्र हम कह सकते हैं, हमारी लोक परंपरा, जैसा बिहार की लोक परंपरा की बात आपने की, उसको पुनर्जीवित कर रही हैं, रचनात्मक रूप देकर वैश्विक पटल पर उसको स्थान दिलाने की आपकी आपका यह प्रयास है। इस माध्यम से हम कामना करते हैं कि ये आपकी जो सुंदर कला है, आपकी ये जो प्रयास है, नए ऊंचाइयों को छुए और जो भी हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए आप प्रेरणा बने। आपको बहुत बहुत शुभकामना और यहाँ आने के लिए धन्यवाद।
2: इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गुदरी कलाकार प्रियंका कुमारी से धर्मेंद्र राठौर की बातचीत।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: इधर आइए, इधर
5: इधर।
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभवाणी,
4: आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्स पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बज रहे हैं। एक अंतराल के बाद सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
5: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत और कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं आपको पहला गाना अलका याग्निक की आवाज़ में, स्वदेश फिल्म से। इस गाने को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत से संवारा है ए आर रहमान ने।

जहर फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल की आवाज़ में, सईद कादरी के बोल और संगीत अनु मलिक का था। लीजिए सुनते हैं अगला गाना, उदित नारायण की आवाज़ में मन फिल्म से।

आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा। है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोता सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम, एक अंतराल के बाद सुनेंगे अगला कार्यक्रम।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, दिन के 12:01 हुए हैं। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको कुछ मगही भाषा के लोकगीत सुनवा रहे हैं। लीजिए सुनिए चंद्रभूषण सिंह के गाए कुछ लोकगीत।

0: बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आपने चंद्रभूषण सिंह के गाए लोकगीतों का आनंद लिया। कार्यक्रम में एक अंतराल लेंगे, सुनवाएंगे कुछ और लोकगीत।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: कम प्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
5: अनजान ऐप से बचें।
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
5: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: रंजीत कुमार के गाए मगही लोक गीतों का आनंद आपने लिया। इसी के साथ बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। एक अंतराल के बाद सुनेंगे अगला कार्यक्रम।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। हर घर की वाणी आकाशवाणी।

0: हर दिल की वाणी आकाशवाणी और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर नया भारत नया आकाशवाणी
1: इधर आइए इधर
2: इधर
1: हाँ विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा ऐसी बात है तो फिर इधर उधर क्यों भटकना अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा
4: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के 12:30 हो रहे हैं। आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत।
5: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
6: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
7: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
8: नारी जगत कार्यक्रम सुनने वालों को नमस्कार। बहनों निष्पक्ष खेल भावना को अपनाना एक सुंदर व्यक्तित्व की पहचान है। हर साल 19 मई को विश्व फेयर प्ले दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य खेलों में हार जीत से ऊपर उठकर निष्पक्षता ईमानदारी सम्मान तथा समावेशिता के मूल्यों को बढ़ावा देना है। बहनों ये दिन हमें सिखाता है कि जीवन में नैतिक और सकारात्मक तरीके से जब हम जीवन जीते हैं तो हम एक श्रेष्ठ तरीके को अपनाते हैं। अगर हमारे जीवन में सद्भाव और शांति है तो हम मानसिक रूप से भी आनंदित रहते हैं।

बहनों, हम सभी चाहते हैं कि घर में आने वाले इनकम से थोड़ी सी बचत कर लें। यह बचत भविष्य में शौक पूरा करने, ज़रूरी काम निपटाने और किसी आपदा में मदद करने के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन हमारे लिए बेहतर रहेगा कि हम घर में पैसे न जमा करके बैंक के माध्यम से बचत करें। सामान्य बैंक खाते के अतिरिक्त सभी बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, मासिक आवर्ती योजना, प्रोविडेंट फंड इत्यादि का विकल्प आपको देते हैं, जिनमें महिलाओं के लिए विशेष ब्याज दर वाली योजनाएं भी शामिल हैं। सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर विशेष बचत खाते और वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजनाएं बैंक बनाते रहती है। आप अपनी पहचान का प्रमाण पत्र, अपना पता और फोटो के साथ आवेदन करें। बैंक जाकर जानकारी लें कि कौन सी बचत योजना आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगी और आवेदन करके बैंक से बचत का लाभ उठाएं। बैंक के बचत से हम महिलाएं वाहन भी अपने नाम से खरीद सकती हैं। वाहन खरीदने की आवश्यकता आज के समय में इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब लड़कियां पढ़ने और नौकरी करने के लिए दूर दूर जा रही हैं। अपना वाहन रहने से हमें सुविधा और सुरक्षा का बोध होता है। अपनी आवश्यकता के अनुसार आप साइकिल खरीदें या कार, कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। अगर आप वाहन खरीदने के लिए बैंक लोन ले रही हैं तो उसको सही से प्रोसेस करवाएं। विश्वसनीय सही बिल और गारंटी के कागज देने वाले प्रतिष्ठान से ही वाहन खरीदें। स्कूटी हो या कार, मोटरसाइकिल हो या आपके पास कोई वैन खरीदने की योजना हो, इन सब के पहले आप अपना एक ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवा लें। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के बाद ही वाहन लेना सही रहता है। अगर सेकंड हैंड वाहन लेने चाहती हैं तो सबसे पहले ज़रूरी कागजात देख लें और वाहन की स्थिति और उपयोगिता देखकर ही सेकंड हैंड वाहन लें। तो चलिए, सोच समझ कर वाहन खरीदें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अब आपको सुनाते हैं एक भेंट वार्ता। डॉक्टर संजय कुमार से ये भेंट वार्ता ली गई है और इसका विषय है मिर्गी

0: कारण, लक्षण और उपचार।
1: हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार, जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट, जो कि फिलहाल पीएमसीएच में न्यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, और आज इनसे हम बात करेंगे मिर्गी के बारे में। डॉक्टर संजय कुमार, वैसे तो हर बीमारी मानसिक और शारीरिक कष्ट देती है, लेकिन मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जिसका एक सामाजिक पक्ष भी है, जिसके कारण सामाजिक कष्ट भी होता है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मिर्गी क्यों होता है और इसके लक्षण क्या है, कैसे पता चले कि कोई मिर्गी का शिकार हो गया है।
2: सबसे पहले हमको इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए धन्यवाद। जहाँ तक मिर्गी का सवाल है, इसके बहुत सारे नाम हैं, अपने हर एक भाषा में इसका एक अलग नाम है, लेकिन बोलचाल की भाषा में अपने यहाँ मिर्गी बोला जाता है। अगर आप जाएंगे तो ये प्राचीनतम बीमारियों में एक बीमारी है। इसके बारे में लोगों की जानकारी बहुत पुरानी है, हजारों साल पहले। तो उस समय का जो सोच था वो आज भी चला आ रहा है समाज में कि ये एक दैविक प्रक्रिया से होने वाली बीमारी है। और एक बड़ा सा चंक है, जिन्होंने अपना विज्ञान विषय नहीं लिया है या फिर उसमें रुचि नहीं रखते, तो उनकी भी यही सोच है कि ये बीमारी कहीं ना कहीं से किसी दैविक प्रक्रिया से होती है। अब दूसरी बात है कि अब सही जानकारी क्या है, तो ये एक ब्रेन से, यानी कि अपने मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। आप इसको ऐसे लें कि ब्रेन किसी भी सिस्टम को काम करने के लिए उसको सुचारू रूप से, सिस्टमेटिक ढंग से चलना चाहिए। अगर उस सिस्टम में कोई गड़बड़ी आती है और वो बिना किसी सुचारूपन से, बिना किसी ऑर्डरली एक्टिविटी से डिसऑर्डर्ड हो जाए, यानी कि कोई ऑर्डर नहीं है, वो अपने मन से काम करने लगे, तो वहां एक अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे अपना ब्रेन है, तो हर एक ब्रेन के हर एक भाग का अपना अपना काम है। अगले भाग का अलग काम है, बीच वाले भाग का अलग काम है, पीछे वाले भाग का अलग काम है, नीचे वाले भाग का अलग काम है। तो ये मिर्गी की उत्पत्ति किसी भी भाग से हो सकती है या सारे भाग में एक साथ हो सकती है। तो इस पर डिपेंड करता है कि मिर्गी का लक्षण क्या होगा, और उस दौरान इस ब्रेन की एक्टिविटी स्टार्ट होती है और कुछ मिनटों के बाद ये अपने आप फिर बंद हो जाती है। और इस दौरान ब्रेन के जिस भाग से ये उत्पन्न होती है, हमको उसी तरह का लक्षण दिखाई देता है। तो मिर्गी का इस तरह से अनेक प्रकार है। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि ब्रेन का पिछला हिस्सा देखने का काम करता है, जिसको ऑक्सीपिटल लोब बोलते हैं। अगर माने कि मिर्गी वहां से उत्पन्न होती है, तो आदमी बिना किसी चीज के भी उसको तरह तरह की चीजें दिखाई देंगी। कभी वो आकार देखेगा, कभी मनुष्य देखेगा, कभी लाइट देखेगा, कभी कुछ देखेगा, और वो थोड़ा देर तक रहेगा और फिर वो ठीक हो जाएगा। ये बार बार जाता है। तो पुराने जमाने में इसको बोलता था कि भाई इसको फलाने चीज का दर्शन हो गया, चिलाने चीज का दर्शन हो गया। तो ये तो हुआ कि एक जगह से उत्पन्न होने वाली चीज अगर पूरे ब्रेन में एक साथ हो जाए, तो वो आदमी जमीन पे गिर जाता है, उसको फरका की तरह एक्टिविटी होता है, उसके शरीर से पेशाब, मलमूत्र त्याग अपने आप हो सकता है और फिर कुछ देर के बाद शांत होता है, जिसको जनरलाइज सीजर्स बोलते हैं। तो मोटा मोटी मिर्गी मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। ये अपने से आती है और अपने से चली जाती है, और इसमें जिस एरिया से उत्पन्न होगा उस तरह का लक्षण होगा, या पूरे एरिया में हुआ तो आदमी गिर के, जिसको जनरलाइज सीजर है, ये भी हो सकता है।
1: जी, अगर किसी को इस तरह के दौरे पड़ते हैं, तो कभी माना जाता है कि उसके ऊपर कोई दैवीय प्रकोप है या कोई साया चढ़ गया है, और फिर उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, ये कहीं से भी सही नहीं है। आपके पास कई मरीज आते होंगे, आप एक चिकित्सक हैं, आप इस मामले में जनता के भ्रम को कैसे दूर करना चाहेंगे?
2: मैंने आपको पहले ही कहा कि ये चीज हजारों साल से चली आ रही है, और जो चीज मनुष्य के मस्तिष्क में घुसा पड़ा है जनरेशन ऑन जनरेशन में, तो उसको निकालने के लिए एक ही रास्ता है, शिक्षा और जागरूकता। सपोज करें कि किसी को सफेद दाग हो जाती है, अगर हमको सिर्फ ये मालूम हो ये एक चमड़े की आम बीमारी की तरह ये भी एक बीमारी है, तो मेरा परेशानी वहीं दूर हो जाता है। लेकिन अगर हम ये मानना शुरू करें कि भैया ये फलाने ने फलाना कर्म किया था, इसके वजह से इसको ये हो गया, तो बहुत सारी दिग्भ्रांतियां दूर हुई हैं। उस तरह से मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसके ऊपर भी दिग्भ्रांतियां दूर हो रही हैं और हो भी जाएंगी। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं, आपने कुष्ठ रोग का नाम सुना होगा। ये आज भी अगर आप बोलें तो अपने बोलचाल की भाषा में आपको पता चलेगा कि ये बहुत लोग आज भी सोचते हैं कि ये किसी बुरे कर्म के वजह से होता है, लेकिन जब पता चला कि नहीं, ये एक बैक्टीरिया के वजह से होता है और इसका इलाज संभव, तो धीरे धीरे धीरे ये दिग्भ्रांति जाती रही। उसी तरह से हम अपने इस मिर्गी के बारे में बात करें, तो इसका सच पूछिए तो दो तरह का लक्षण था। लोग क्यों डरे होते हैं? क्योंकि ये मिर्गी दो तरह का होता है। एक जो जेनेटिकली चलता है, जेनेटिकली मतलब कि पिता यानी परिवार में माता की तरफ से या पिता की तरफ से आ गया, वो कुछ समय तक आपके शरीर में रहेगा और कुछ दिनों के बाद चला जाएगा। और दूसरा है कि जन्म के बाद आपके ब्रेन में कुछ ऐसी दिक्कत, जैसे

0: मेनिनजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, आपको कहीं चोट लग गया या किसी कीड़े का इन्फेक्शन हो गया जिसको न्यूरोसिस्टिसरकोसिस कहते हैं, जो आजकल बाहर रेस्टोरों में या गंदे जगह खाने में बहुत कॉमनली मिलता है, या ब्रेन की टीबी, यानी बहुत सारी, या ब्रेन का ट्यूमर, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जन्म के बाद आपके ब्रेन में आएंगी और उसके बाद आपके मृगी का लक्षण देंगे। ये जाँच पड़ताल के माध्यम से पता किया जा सकता है और इसका पूर्ण इलाज संभव है। पहली बात, सबसे पहली बात है, इसका पूर्ण इलाज संभव। दूसरी बात यह है कि इसको एक आम रोग की तरह देखें तो सर्वसाधारण हो जाता है। बहुत सारे लोगों को जिन्होंने अपने जिंदगी में सब चीज अचीव किया, तो इस मिर्गी से किसी आदमी को किसी वजह से घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए कुछ उचित मापदंड हैं, डॉक्टरी सलाह है, कुछ दवा है जिसके साथ चलना चाहिए, और किसी भी दृष्टिकोण से ऐसे आदमी से किसी भी तरह का द्वेष पालना, ये कि इस आदमी के संगत में हम रहेंगे या इसके टच से हमको कुछ हो जाएगा, या ऐसी कोई लड़की जिसको ये बीमारी है तो उसके सारे गुणों को एक इस चीज के वजह से हम सारे गुणों को नजरअंदाज कर देंगे, ये बेहद ही गलत बात है।
1: जी, तो जैसा कि आपने कहा, सामाजिक जागरूकता और शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जिसके माध्यम से हम इस बीमारी के साथ जुड़े हुए मिथ को दूर कर सकते हैं। इसका इलाज क्या हो सकता है? अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़े घर में या हमारे आसपास, तो क्या करना चाहिए? क्या इसके लिए घर में जो आसपास लोग मौजूद हैं वो कुछ कर सकते हैं, या तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए?
0: हाँ, अगर मान लीजिए कि किसी आदमी को मालूम नहीं है कि हमको बीमारी था, एकाएक परिवार पे, रोड पे कहीं भी आप खड़ी हैं या एक जनरल आदमी खड़ा है, उस समय उसको ये लगा ये आदमी गिर गया है और इसको मिर्गी का दौरा आ रहा है, पहले हम ये बताएं कि यूजुअली लोग करते क्या हैं और ये बताएं कि इसमें कौन सा गलत है और क्या करना चाहिए, दोनों बात बताते हैं। यूजुअली आप देखेंगे कि जब भी आदमी गिरा तो कोई आदमी उसका नाक दाब दे देता है, कोई आदमी कुछ उसके मुंह में घुसाने की कोशिश करता है कि जीभ से दांत ना कटे, कोई आदमी उस पर पानी छींटने लगता है, कोई आदमी उसको चप्पल जूता सुंघाने की कोशिश करता है। ये सारी चीज मिथ है जो चली आ रही है। करना क्या चाहिए? इसमें से कोई काम नहीं करना चाहिए। आदमी कभी भी भूल से उसके मुंह में उंगली ना डालें या किसी तरह की चीजों को ना डालें। दूसरी बात है कि कभी उसका नाक ना दाबें, कभी भीड़ से घेर के ना रखें। करना क्या है कि उनको बाएं करवट लिटवा देना चाहिए और उसके चारों तरफ हवा आने देना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि वो चीज, मैंने जैसे आपको कहा, ये खुद आएगा और खुद चला जाएगा, और जब उसका दौरा खत्म हो जाए तो उसको तुरंत लेके आप डॉक्टर के पास लेके जाएं। एक दूसरा, अगर आपको ये लगता है कि उसका दौरा 1 मिनट या 1.5 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा चल रहा है, तो उस परिस्थिति में ही उसको नजदीकी हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। मिर्गी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो लंबे समय तक चले, 5 मिनट से ज्यादा चलने वाला मिर्गी आपके ब्रेन को डैमेज भी कर सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको नजदीकी डॉक्टर या नजदीकी हॉस्पिटल से सलाह करनी चाहिए। उसके बाद तो उसको इमरजेंसी की दवा मिल जाती है और उस बहुत सारी ऐसी इमरजेंसी की दवा है, सूंघने वाली दवा आ गई है। अगर लोगों को मालूम है, जिन परिवारों को मालूम होता है कि मेरे घर में एक मिर्गी के रोगी हैं, वो सब लोग इमरजेंसी की दवा को रखते हैं, और अगर आदमी रेगुलर दवा सेवन करे तो ऐसी नौबत नहीं आती है। फिर भी मनुष्य है, कभी भूल गया और इस तरह का दौरा आया, तो उसके लिए कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, ना नाक दाबने की जरूरत है, ना मुंह दाबने की जरूरत है। उसको एक बाएं करवट करवा के लिटवा दीजिए, हवा आने दीजिए, थोड़ी देर में वो चीज दूर हो जाएगी।
1: क्या मिर्गी के इलाज के बाद व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है?
0: आप ऐसे समझें कि किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, जिंदगी भर दवा खाता है। कभी आपने कभी देखा किसी को द्वेष करते हुए, हाइपरटेंशन के मरीजों को, डायबिटीज के पेशेंट्स? मिर्गी भी एक इसी तरह की बीमारी है और कम से कम इस बीमारी में 50 से 60% मरीज की दवा पूर्णतः बंद हो सकती है। तो अगर हमको रेट करने के लिए बोलिएगा तो इन दोनों बीमारियों से कहीं बहुत कम स्तर की सीवरिटी की बीमारी है मिर्गी। इसको किसी दृष्टिकोण से ना ही इसको सामाजिक एक बदनुमा नाम मिलना चाहिए और ना ही किसी तरह का कोई इसके लिए डर होना चाहिए। सिर्फ एक चीज की जरूरत है, उसके लिए जागरूकता की जरूरत है।
1: जी, अगर विशेषकर हम महिलाओं की बात करें, तो ये भ्रांति का जो लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा है, और अगर पता चलता है कि घर में किसी लड़की को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है या मिर्गी हो गई है, तो आसपास के लोग डर जाते हैं कि आगे ज़िंदगी में क्या कर पाएगी। आप हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देना
0: ये एक
1: चाहेंगे?
0: ऐसा सवाल है जो मेरे मन के बहुत करीब है, क्योंकि रोज, आज कल इस तरह की चीजें आती रहती हैं जिसमें एक माँ अपने बेटी के साथ आती है और उसकी शादी की उम्र या 2 साल बाद या 4 साल बाद या तुरंत करने वाली होती है, क्योंकि एक माँ के लिए अपने समाज में उसकी बेटी की अच्छी शादी एक मायने रखती है, उसके लिए शिक्षा का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो इस बात से हमेशा डरी रहती है, या वो बच्ची भी डरी होती है कि अब मैं इस चीज के लिए, वो भले ही कितनी ही सुंदर हो, कितनी ही गुणवान क्यों ना हो, लेकिन इस वजह से उसके अंदर का डर उसके चेहरे पे नजर आता है हमको। और हमको

0: समय बड़ी तकलीफ होती है इन बातों को समझाने के लिए कि भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लाख कहने के बावजूद भी उनके पास इतनी हिम्मत नहीं होती है कि जहां वो शादी तय कर रहे हैं और इस बात की चर्चा करें उनको, जो कि वास्तविक रूप से बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे खुद के प्रयास से मैंने ऐसा देखा, अगर मैंने 10 लोगों को समझाया हो तो 2 लोग 20% ही सफलता है खुशी खुशी इस चीजों को एक्सेप्ट किए हैं और बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, उनके पास बच्चे हैं, वो खुशी खुश रह रहे हैं। तो मैं उन सारे सुनने वालों को एक बात तो जरूर बताना चाहूंगा कि एक आम रोग की तरह इसको भी एक रोग समझें। रोग से ज्यादा किसी तरह का कोई भी इसको अनड्यू इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है और ना ही इससे डरने की जरूरत है। वो एक बीमारी है या जो भी सामने में है, अगर वो पुरुष वर्ग से आने वाले लोग हैं तो वो जरूर समझें कि यही बच्ची अगर मेरे घर की सदस्य रहती तो हम क्या करते, पहला बात। दूसरी बात कि जो अपने बेटी को लेके परेशान है उसको बीमारी के लिए नहीं, उसके उचित शिक्षा के लिए देने, वो बाहर नहीं भेजते हैं डर से कि कहीं बाहर कुछ हो गया तो क्या होगा। इलाज पे उनका ध्यान भले ही कम हो लेकिन उसकी सुरक्षा का ध्यान 24 घंटा उन पे लगा रहता है। वो अगर 3 महीना में मैंने बुलाया है तो 6 महीना में पहुंचेंगी मेरे पास, लेकिन उसका डर लगातार अब मेरी बेटी क्या करे। ये इतना एक बुरा चीज है बेटी के माँ बाप से भी या फिर दोनों तरफ से कि अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे। तो वो एक आम इंसान है हमारी तरह आपकी तरह, और वो सब चीज कर सकती है जिंदगी में जो आप और हम कर सकते हैं, शायद हमसे ज्यादा कर सकती है, शायद आपसे ज्यादा कर सकती है। तो समाज के इस चीज को, और ये बीमारी कम नहीं है, मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 2% से 5% लोगों को ये इसका अटैक कभी भी इस पॉपुलेशन में कहीं भी आ सकता है। अभी 2.5% है, तकरीबन 20 मिलियन रोगी हैं इसके, सोच के देखिए ये कम नहीं है। और किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी को हो सकता है ये चीज। इसलिए समाज में जरूरत है इसके अगेंस्ट और इस चीज से होने वाले उत्पन्न चीजों को दूर करने की, बनिस्पत इस चीजों को ढोने की। हम लोग ढो रहे हैं, इन दिग्भ्रांतियों को ढो रहे हैं, और इसमें जितने भी बच्चे या बच्चियां या माता सुन रही हैं, कभी भी इस बीमारी से घबराने की जरूरत, और प्रयास छोटा ही ऐसे ही लेकिन इसका फल हो रहा है। और कभी कभी तो मैंने देखा है कि भाई विवाह के मंडप से लोग उठा के क्लिनिक में ले आ गए हैं, डॉक्टर साहब क्यों, कारण क्या है भाई। तो मुझे एक खबर मिली है कि आपके यहाँ इनकी इलाज चल रही है। किस बीमारी की इलाज चल रही है? जब मैंने कहा कि ये इलाज इपिलेप्सी की चल रही है तो मैंने समझ गया, हम अच्छी तरह समझे कि एक दुल्हन जो मेरे सामने बैठी है और ये इसके इन लॉज सामने में खड़े हैं और शादी के मंडप से उठा के लेके आए हैं उनको, तो अंदर के गुस्सा, क्योंकि डॉक्टर तो सबसे पहले तो डॉक्टर तो डॉक्टर ही करता है बेचारा, चीज से ज्ञान रखता है जरूर है लेकिन सब वो एक इंसान ही होता है। तो मैंने उन बुजुर्ग महोदय को जो उनके होने वाले ससुर थे उनको समझाया, पहले तो समझाया मैंने उनको अच्छी तरह से, वो अच्छे से समझ भी गए, उसमें कहीं कोई दोमत की बात नहीं। लेकिन आज के डेट में वो परिवार, बच्ची अच्छा काम भी कर रही है, उसने मैनेजमेंट कर लिया है और सब लोग बहुत खुश हैं। और उस चीज को देख के हमको लगता है कि मेरे जिंदगी का एक दो स्टेप्स जो एक्सीपमेंट का रहता है उन बच्चियों के उसकी मुस्कुराहट के रूप में हम देखते रहते हैं। ये एक मरीज नहीं है, पूरी की पूरी जो वो सब लोगों को इसकी मुस्कुराहट चाहिए, इससे डरने की जरूरत नहीं है। मेरा तो समाज में काम यही है, लेकिन जो चीज है जिसके बारे में ज्ञान लोगों को नहीं है, और ज्ञान नहीं होने के बावजूद भी ये लोग के पास एक अंधविश्वास का चादर है, अगर आप उसको नहीं हटाएंगे तो सदी तक चलेगा। ये चीज आप सोच के देखेंगे तो ये दर्द कहां से जाएगा, ये दर्द शिक्षा से जाएगा, सोच से जाएगा, और सोच बदलने की जरूरत है आज के डेट में।
1: जी, एक बहुत मार्मिक कहानी के साथ बहुत शानदार संदेश आपने दिया है कि हम बीमारी को बीमारी ही समझें। और आजकल चिकित्सा जगत ने इतनी उन्नति कर ली है कि हर बीमारी का इलाज है, तो मिर्गी भी एक बीमारी है, उसका इलाज कराएं और उस अंधविश्वास को ना ढोएं जो उस बीमारी के साथ लगी हुई है। और विशेषकर महिलाओं को ये संदेश आपने बहुत अच्छा दिया कि अपने आत्मविश्वास में कमी नहीं रखें, मन को बुलंद रखें। इस रोग की अगर आप शिकार हो या अगर आपके आसपास भी कोई इसका रोगी हो तो भी आपको मन दुखी करने की आवश्यकता नहीं है। मिर्गी के रोगी इलाज के बाद बिल्कुल अच्छे से अपना जीवन बिता सकते हैं। डॉक्टर संजय, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उत्साहवर्धक और अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों, कोई भी खुशी का अवसर हो या जीवन में ऐसे भी मीठा खाना तो हम पसंद ही करते हैं, और जब हम मीठे की बात करते हैं तो निश्चित रूप से शहद भी हमारे मन में आता है। आपको पता है मधुमक्खियों के योगदान और शहद के स्वास्थ्य लाभों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 20 मई को मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। शहद एक प्राकृतिक मीठा पदार्थ है जिसे हम मधुमक्खी के माध्यम से प्राप्त करते हैं। आपको पता है मधुमक्खी अपना छत्ता जिस पेड़ पर लगाती है।

जिस बगीचे में लगाती है उसके भी गुण मधु में सम्मिलित हो जाते हैं। मधु या तो नीम के पेड़ के आसपास का हो, जामुन, लीची, आम, सरसों के खेत, कहीं से भी मधु प्राप्त हुआ हो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। हमें चाहिए कि हम सीमित मात्रा में इसका सेवन करें और अपने स्वास्थ्य को और रोग प्रतिरोधक क्षमता को आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही मधुमक्खी पालन एक लघु उद्योग भी है और अगर आप इसको अपनाएंगी तो ये आर्थिक लाभ भी पहुंचाता है। स्वास्थ्य के लिए तो शहद फायदेमंद है ही, इसके साथ ही गुड़ भी काफ़ी फायदेमंद है। मधु की तरह गुड़ भी एक प्राकृतिक मीठा पदार्थ है। गुड़ गन्ने के रस से बनता है और कम प्रोसेस होता है, इसलिए इसमें आयरन, मैग्नीशियम जैसे प्राकृतिक खनिज सुरक्षित रहते हैं। शहद और गुड़ दोनों चीनी से बेहतर और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प हैं। जब भी आप कुछ मीठा खाना चाहें या मीठा बनाना चाहें तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही शहद और गुड़ में चीनी की अपेक्षा पोषण भी ज़्यादा है। तो आइए मीठा बोलें और शहद गुड़ का इस्तेमाल करें।

0: कार्यक्रम संपन्न होता है। बहनों, हम चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम को सुनें और इसके विषय में अपने सुझाव हमें देते रहें। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि नारी जगत कार्यक्रम नारी जीवन के सभी पहलुओं को छुए और आप तक हम अपनी बात पहुंचाते रहें और कुछ आपकी सुनते रहें। अब दीजिए अलका को विदा। नमस्कार।
1: महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत श्रोता अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1 बजने को हैं। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
2: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
4: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यावसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
2: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय की पाबंदी तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव

अधिकारी डॉक्टर लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के समय 1:05 हुए हैं। कार्यक्रम अक्षय वट के अंतर्गत सुनिए भेंट वार्ता। बुजुर्गों में एलर्जी और अस्थमा की समस्या और उपचार, इस विषय पर डॉक्टर संजय कुमार से बातचीत कर रही हैं अलका प्रियदर्शनी।
1: अक्षय वट कार्यक्रम सुनने वालों को नमस्कार। हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर संजय कुमार को, जाने माने छाती रोग विशेषज्ञ, और इनसे हम बात करेंगे बुजुर्गों में एलर्जी और अस्थमा के विषय में। डॉक्टर संजय कुमार, स्वागत है आपका आकाशवाणी पटना के स्टूडियो में।
2: नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, बढ़ती उम्र में कुछ तो शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो यूं भी कम हो जाती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब भी मौसम में बदलाव होता है, बुजुर्गों में खांसने की, छींकने की या एलर्जी का किसी और रूप की भी बात करें, वो ज्यादा दिखने लगता है। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या बढ़ती उम्र से एलर्जी और अस्थमा का कोई संबंध है या इसका संबंध मौसम और वायरस बैक्टीरिया से है?
2: बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें सांस की नली में सिकुड़न आ जाती है और मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि हवा का प्रभाव उस सांस की नली से सही ढंग से नहीं होता है। ये बीमारी बहुत से कारणों से होता है, जिसमें एलर्जी भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है, और इसमें बहुत से ट्रिगर फैक्टर होते हैं। ट्रिगर फैक्टर का अर्थ ये हुआ कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है, और उसके बाद वहां जो है उसका एक रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन कहते हैं। और उस इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन के तहत बहुत से पदार्थ सिक्रीट होते हैं, जिससे कि सांस की नली में सिकुड़न होता है। ये ट्रिगर फैक्टर से जैसे सभी लोग ग्रसित हों ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भिन्न लोगों के लिए भिन्न ट्रिगर फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे मिस्टर एक्स, सपोज कीजिए कि उन्हें डस्ट से हो सकता है, जबकि मिस्टर वाई जो हैं उन्हें डस्ट से ना होके फूल के पराग से हो सकता है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ट्रिगर फैक्टर होता है, और बदलते मौसम में ये ट्रिगर फैक्टर्स ज्यादा हो जाते हैं। खासकर जैसे ह्यूमिड वातावरण हो या हवा ज्यादा चल रही हो, तो वातावरण में पराग की मात्रा ज्यादा हो जाती है, डस्ट कण की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो ये कण जो हैं वैसे व्यक्तियों को, जो व्यक्ति इनसे सेंसिटिव हैं और हाइपर सेंसिटिव हैं, उनको अफेक्ट करता है और उनमें दमा का प्रारूप तुरंत उत्पन्न हो जाता है या बढ़ जाता है, जिससे कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। उम्र के साथ साथ ये प्रॉब्लम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उम्र के साथ, जैसा कि आपने कहा, कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे बहुत से जो बॉडी जिसको जिसको अपने प्रतिरोधक क्षमता के चलते जिसे निगेट कर सकता था वो निगेट नहीं कर पाता है, और इन्फेक्शन वगैरह ज्यादा हो जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन ज्यादा हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा हो सकते हैं, जिससे कि ये ट्रिगर फैक्टर्स और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ये एज का एक प्रभाव होता है। इसलिए दोनों बात है, एज बढ़ने से चांसेस है कि इन्फेक्शन ज्यादा हो, ज्यादा इन्फेक्शन हो तो ज्यादा ट्रिगर फैक्टर आपको इफेक्ट करे, और ऐसे भी ना भी इन्फेक्शन हो तो ट्रिगर फैक्टर्स बदलते मौसम में ज्यादा हो जाने से दमा का प्रभाव बढ़ सकता है।
1: जैसा कि आपने कहा, ट्रिगर फैक्टर्स मौसम बदलने से भी प्रभावित कर सकते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जिनको पहले से एलर्जी है या अस्थमा है, उनको अगर ये जानकारी है, तो बदलते मौसम में वो क्या करें? और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लोगों को पता नहीं चलता है कि मुझे ये खांसी का दौर जो काफी लंबा चल रहा है वो क्यों हो रहा है। दोनों स्थितियों में आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
2: हाँ, ये भी सही है कि कुछ मरीज तो ऐसे हैं जिन्हें मालूम है कि उन्हें अस्थमा है या एलर्जी की शिकायत है, और वो

0: अपने कुछ एक्सपीरियंस के आधार पर या उनके डॉक्टर कुछ टेस्ट करा के ये बताए रहते हैं कि आपको फलाना फलाना चीजों से बचना है। लेकिन बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनको कि ये पता नहीं है कि उन्हें ये इस तरह की एलर्जी या दमा की शिकायत है, वो सीजनल खांसी समझते हैं या नॉर्मल खांसी जो बदलते मौसम में ऐसे भी हो जाता है उसको समझते हैं, और वो परेशान रहते हैं, तरह तरह के कफ सिरप पीते रहते हैं, दवाइयां लेते रहते हैं, एंटीबायोटिक्स भी खा लेते हैं, लेकिन उनका दमा के रहने के चलते ये खांसी ठीक नहीं होती है। तो सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिले कि मेरी खांसी लंबी चल रही है, इसका सही डायग्नोसिस होना जरूर है कि ये नॉर्मल खांसी है या ये दमा का प्रारूप है। अगर दमा का प्रारूप है तो अपने डॉक्टर से जरूर इस विषय में सलाह करें कि ये दमा को किस किस चीजों से प्रभावित हो रहा है। हो सकता है कि सारे चीजें ना पता चल सके, और वो बाई वर्चू ऑफ आपके एक्सपीरियंस से भी बहुत सारी चीज आपको समझना होगा। जैसे कि कोई पर्टिकुलर काम, जैसे कि जब जब हम घर की सफाई करते हैं या पुराना कागज पत्तर इधर उधर करते हैं तब तब हमकी खांसी बढ़ जाती है। इसका अर्थ है कि डस्ट से और मोल्ड से आपको एलर्जी है और वो ट्रिगर फैक्टर के तरह काम कर रहा है, और इससे आपको आगे भी बचना है। एक ब्लैंकेट रूल नहीं बता सकते हैं कि सारे दमा के मरीज फलाना फलाना चीज से बचे ही, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। इसलिए आप सजग रहें कि आप पर्टिकुलर काम या पर्टिकुलर चीज से जब भी एक्सपोज होते हैं, किसी ठंडी हवा से या एसी की हवा से किसी को होता है, तो आपको उन चीजों से बचना होगा। दूसरा चीज, कुछ जनरल उपाय हैं, जैसे कि वातावरण में प्रदूषण की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ये जग जाहिर है, तो वो तो सबों को इफेक्ट कर रहा है, तो उससे बचने का उपाय करना है। अगर आप दमा के मरीज हैं या ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं तो बेहतर है कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले, जिससे कि धूल कण आपको कम से कम प्रभावित कर सके। दूसरे, किसी ऐसे भीड़ भाड़ जगह वाले जगह पर भी जा रहे हैं तो आप मास्क लगाएं, या कोशिश करें कि वैसे लोगों से थोड़ा दूर रहें जिन्हें खांसी है या किसी तरह का और बीमारी है, क्योंकि वो इन्फेक्शन स्प्रेड करके आप में ट्रिगर फैक्टर के तरह काम कर सकता है। इसलिए इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है।
1: जी, अगर किसी को एलर्जी के कारण दम फूल रहा हो, लगातार खांसी हो रही हो या वो अस्थमा का शिकार हो, किस तरह की जीवन शैली भी रखी जाए?
0: इसमें दो तीन फैक्टर है। नंबर वन, कि इस बीमारी के प्रारूप को कैसे किया जाए। तो दमा का जो बीमारी है वो हाइपर एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम से चलते हो जाता है, उसके बाद वो इन्फ्लामेशन का प्रारूप लेता है। तो आपको एक तो बीमारी का इलाज करना है और दूसरा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट लेना है। ये दो एस्पेक्ट है। तो बीमारी के इलाज के लिए तो आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, वो जो भी दवा आपको इनहेलर बताते हैं वो रेगुलर लें, अपने मन से छोड़े नहीं, जरूर दवा को लेते रहें, नंबर एक बात। दूसरी बात कि प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सजग रहें कि आप किन किन चीजों से प्रभावित होते हैं, उन चीजों से, जिन जिन चीजों से आप प्रभावित या जिस जिस एक्टिविटीज है, जैसे बहुत से लोग दौड़ने से, करने का मतलब एक्सरसाइज करने से भी दम फूलने लगता है, तो दमा का अटैक आ जाता है, तो उसको वो सब चीजें नहीं करनी है या इस स्तर तक नहीं करना है जिससे कि वो दम फूलने लगे। तो आपको इन सब चीजों के प्रति सजग होना है, तो बीमारी का इलाज करना है डॉक्टर के साथ, और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट डॉक्टर से समझ के आपको खुद करना है।
1: जी, बुजुर्गों में अगर बहुत ज्यादा खांसी हो, दम फूले या हफनी हो या स्किन पे चकत्ते हो जाए एलर्जी के कारण, तो वो ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कोई ऐसा उपाय है कि इसको प्रथम दौर में ही रोका जा सके या प्रथम चरण में ही इसके प्रति लोग जागरूक हो जाए?
0: ये एकदम बेसिक बात है कि एलर्जी का पहला ट्रीटमेंट होता है अवॉइड द एलर्जन, मतलब उन चीजों को अवॉइड कीजिए जिससे वो एलर्जी हो रहा है। दूसरा एस्पेक्ट है कि जब एलर्जी हो गया, जैसे आपने कहा कि चकत्ता बन गया, अब चकत्ता बन गया तब तो आपको एंटी एलर्जिक दवा लेनी होगी क्योंकि एलर्जी का इफेक्ट हो चुका है। अब आपको उसको काटने का उपाय करना है, वो अपने डॉक्टर से समझ के आप जाने रहिए कि आपको कौन सा एंटी एलर्जिक लेना है, किस समय लेना है, नंबर एक। दूसरा बात कि अगर उससे भी ज्यादा है तो उससे ऊपर की दवाइयां भी लेना पड़ सकता है। बुजुर्गों में क्या लिमिटेशन है कि बुजुर्ग लोग को कुछ और बीमारियां भी साथ साथ हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज हो सकता है, हार्ट की बीमारी हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, तो कुछ दवाएं जो एंटी एलर्जिक के रूप में जैसे कॉर्टिसोन को हम लोग देते हैं, तो वो इन बीमारियों को बढ़ा भी सकता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहना है दवा लेने के पहले कि आपको कोमॉर्बिड कंडीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, कि वो तो नहीं है। अगर है तो अपने डॉक्टर से हमेशा समझ लीजिए कि अगर ऐसी स्थिति आए तो हमको ये दवा लेना चाहिए या नहीं लेना। लेना चाहिए और अगर लेना है तो किस डोज में?

0: लेना है। संभवतः कुछ डोज कम करके हम लोग बढ़े हुए केसेस में इस तरह की दवाएं देते हैं, लेकिन हाँ, इसका साइड इफेक्ट्स उनके बीमारी को बढ़ाने के रूप में हो सकता है, इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। इनहेलर दवाई जो होती है वो दमा के लिए सबसे अच्छी दवा है। इनहेलर बेसिकली ड्रग देने का तरीका है। उसमें क्या होता है कि दवाई को एरोसोल के फॉर्म में, मतलब ऐसे कण के रूप में हम लोग देते हैं जिसको मरीज सांस के द्वारा अपने लंग्स में लेता है। इनहेलर बहुत ही अच्छा सिस्टम है और WHO भी यही रिकमेंड करता है कि दमा के मरीजों के लिए सबसे सही दवा इनहेलर के रूप में ही दी जानी चाहिए। इनहेलर लेने के बहुत से फायदे हैं। इसको ऐसे समझिए कि जैसे आंख में कोई बीमारी होता है तो हम ड्रॉप डालते हैं, स्किन में कुछ लीजन होता है तो हम मलहम लगाते हैं, उसी तरह इनहेलर जो है लंग्स का मलहम है। सीधे आपके सिस्टम में जाता है जहां उसको काम करना है और दूसरी जगह नहीं जाता है, जिसे साइड इफेक्ट बहुत नहीं होने का संभावना है, नंबर एक। दूसरा, डायरेक्ट एक्शन है उसका उस ऑर्गन पर, जैसे लंग पर, इसलिए ड्रग की मात्रा भी बहुत कम रहती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, अगर सालबुटामोल जो टैबलेट होता है उसकी सबसे कम पावर होता है 4 मिलीग्राम, इसका अर्थ हुआ 4000 माइक्रोग्राम, लेकिन सालबुटामोल का जो इनहेलर होता है उसका एक पफ में 100 माइक्रोग्राम होता है, मतलब उसका 40 पफ एक टैबलेट के बराबर होता है। इसलिए मरीजों को यह समझाना बहुत जरूरी होता है कि इनहेलर लीजिए, दवा का डोज भी कम जाएगा, साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और आप अच्छे भी रहेंगे। लेकिन कुछ भ्रांति है, जैसे लोगों को लगता है कि इनहेलर लेंगे तो आदत बन जाएगी। यस, अगर आपको बीमारी है तो आपको दवा लेना है तो आपको तो आदत बनना चाहिए। दवा नहीं लीजिएगा तब तो आप परेशान रहिएगा। जैसे डायबिटीज के मरीज को डायबिटीज की दवा लेनी है, हार्ट के मरीज को हार्ट की दवा लेनी है, उसी तरह दमा के मरीज को दमा की दवा लेनी है। और इनहेलर के रूप में ले तो ज्यादा अच्छा है, उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि मरीज इनहेलर को खींचने की स्थिति में नहीं होते, इतना दम फूलते रहता है कि वो खींचने की स्थिति में नहीं रहते हैं। वैसे कंडीशंस में एक और वे है दवा देने का, जिसको हम लोग निबुलाइजर बोलते हैं। निबुलाइजर में क्या होता है कि दवाओं को प्रेशराइज्ड एयर से छोटे छोटे कण में टूट जाता है मशीन के द्वारा, और वो भाप के रूप में मरीज को प्राप्त होता है, जिसको वो नॉर्मल सांस के साथ अंदर ले लेते हैं और वो लंग्स में चला जाता है जहां की वो एक्शन करता है। तो निबुलाइजर भी इमरजेंसी में बहुत काम करता है, या वैसे मरीज जो इतने बुजुर्ग हैं जो कि खींचने की स्थिति में नहीं है, या बेहोश हैं, या ऐसे कंडीशंस में हैं कि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए निबुलाइजर भी एक ऑप्शन है और बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें भी दवा की मात्रा बहुत कम होती है और साइड इफेक्ट्स नगण्य होता है। सो ये दोनों बहुत अच्छा मेथड है
1: जी। यानी जिन बुजुर्गों को एलर्जी हो किसी चीज से, या जो अस्थमा के मरीज हो, उनको बदलते मौसम में सतर्क भी रहना है और अपने इलाज की जानकारी भी लेनी है और डॉक्टर से सलाह लेकर सही उपचार भी करना। चलते चलते आप ऐसे बुजुर्गों को जो एलर्जी या अस्थमा के मरीज हैं, कुछ आप सलाह देना चाहेंगे जीवन शैली के विषय में?
0: जीवन शैली में जैसे खान पीन, समय पर साफ सफाई रखना, ये बहुत ही जरूरी है। उससे क्या है कि ट्रिगर फैक्टर्स आप कम से कम कर सकते हैं, जिससे कि अटैक कम होगा। और एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा कि आज के दिन में एडल्ट इम्यूनाइजेशन का बहुत रोल आ गया है। जो दमा के मरीज हैं या 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं और उनको सांस फूलता है, खांसी होती है या छाती की और कोई बीमारी है, तो उनको कुछ इम्यूनाइजेशन टीका लेना चाहिए, जिसमें दो टीका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक निमोनिया का, एक इन्फ्लुएंजा का। निमोनिया का टीका लाइफ में एक ही बार लेने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होता है। इन्फ्लुएंजा, जिसको कि आम भाषा में फ्लू बोलते हैं, वो तो हर साल लोगों को होते रहता है और उसका जो वायरस का एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है वो हर साल चेंज करते रहता है, इसलिए हर साल नया टीका लेना पड़ता है। तो इन्फ्लुएंजा का टीका हर साल लेना है और निमोनिया का टीका कम से कम एक बार जरूर ले लेना है आप ऐसे मरीजों को। उससे आप निमोनिया से बच जाइएगा और इन्फ्लुएंजा से भी बहुत हद तक बच जाइएगा, क्योंकि हर अटैक ऑफ फ्लू या निमोनिया आपके लंग फंक्शन को और खराब करता है और दमा और बढ़ सकता है, तो उससे एक बचाव भी ये होता है। बुजुर्ग मरीज एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन उनको अपने एक्सरसाइज को लिमिट करना होगा कि ताकि उनका दम ना फूले।
1: जी डॉक्टर संजय कुमार, आपने बहुत ही उपयोगी और विस्तृत जानकारी दी। आकाशवाणी पटना के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने बुजुर्गों में एलर्जी और अस्थमा की समस्या और उपचार विषय पर डॉक्टर संजय कुमार से अलका प्रियदर्शनी की बातचीत सुनी, कार्यक्रम अक्षयवट के अंतर्गत। हमारा ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।

0: एक अंतराल और उसके बाद सुनेंगे देशभक्ति गीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.

ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: हर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे

0: बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
0: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
0: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के 1:31 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कभी कभी ऐसे फिल्म में सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। साहिर के बोल हैं, खयाम का संगीत।

फिल्म दर्द में भी आपने लता मंगेशकर को सुना नक्श लैलपुरी के बोल, खयाम का संगीत। खयाम के संगीत में अगला गीत हमने लिया है जिसे लिखा है गुलजार ने, आवाज दी है अनवर और सुलक्षणा पंडित ने फिल्म थोड़ी सी बेवफाई के लिए।

0: फिल्म खानदान में भी आपने लता मंगेशकर को सुना, नक्श लैलपुरी के बोल, खयाम का संगीत। एक अंतराल लेंगे, सुनवाएंगे कुछ और गीत।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: अभी आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को सुना। इस गीत को हमने लिया था फिल्म चंबल की कसम से। साहिर के बोल, खयाम का संगीत, और इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। एक अंतराल के बाद सुनेंगे अगला कार्यक्रम।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल

0: किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
0: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आज से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर का आयोजन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वयं सारण जिले के डुमरी बुजुर्ग पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होकर राज्यव्यापी अभियान का उद्घाटन किया। श्री चौधरी ने कहा कि शिविर में प्राप्त शिकायतों का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी 31वें दिन स्वतः निलंबित हो जाएंगे। सहयोग शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की प्रगति की मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से सीधी निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि जनता की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल भी क्रियाशील कर दिया गया है। सहयोग शिविर का आयोजन प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना के दानापुर अनुमंडल के सरारी पंचायत में सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन SM समेत अन्य वरीय अधिकारी मौजूद रहे। बेगूसराय जिले के प्रभारी मंत्री सह सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने बरौनी प्रखंड अंतर्गत भरत उच्च विद्यालय पिपरा देवस में सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर तेघरा के विधायक रजनीश कुमार, जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री, पुलिस अधीक्षक मनीष समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इधर दरभंगा जिले में 24 स्थानों पर सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री सह पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कटिहार में आयोजित सहयोग शिविर के माध्यम से 2975 शिकायतों का निष्पादन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री सह कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने सदर प्रखंड के भवाड़ा पंचायत में सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। वहीं अरवल जिले के करपी प्रखंड के परियारी पंचायत में जिले के प्रभारी मंत्री सह पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने शिविर का उद्घाटन किया। अन्य जिलों में भी विभिन्न पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। राजधानी पटना में अब पेट्रोल का मूल्य 110.02 रुपये प्रति लीटर और डीजल का मूल्य 94.97 रुपये प्रति लीटर हो गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 25 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के पूर्व कुलपति डॉ. गोपालजी त्रिवेदी समेत बिहार के 3 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान प्रदान करेंगी। भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती को कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री दिया जाएगा, जबकि डोमकच्छ नृत्य को मुख्य धारा में लाने वाले लोकप्रिय कलाकार विश्व बंधु को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। राज्य के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। इस अवधि में गया जी और बक्सर में लू की स्थिति बनी रही। इन स्थानों पर तापमान सामान्य से

4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार गया जी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर और बक्सर जिले में लू चलने की आशंका को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड अंतर्गत प्रसार गांव में एक तालाब में बोरे में बंद दो किशोरों का शव बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दरभंगा जिले के पतौर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदन पट्टी गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में चारों की मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हादसे में चारों की मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
4: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। बिहार लोक सेवा आयोग 72वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए 1230 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 37 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट जाएं, पता नोट करें www.bpsc.bihar.gov.in। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC अधिनायक अनुदेशक यानी हवलदार इंस्ट्रक्टर के 122 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि 1 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता नोट करें www.bpssc.bihar.gov.in। इंडियन आर्मी CSBO ग्रेड 2 के 190 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 31 मई 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.indianramy.nic.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में दोपहर समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉसडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारे संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
2: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
1: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण

0: क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान

0: उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों की हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुँच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
2: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसीजन इंफॉर्मेशन कंट्रोल।
3: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
2: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
0: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.19 रुपए

0: 49 पैसे और डीजल की 96 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरों मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
1: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहाँ हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।

0: तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
3: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
3: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
3: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
3: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
1: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
3: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया। परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
3: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
1: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि यह कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
3: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
1: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
3: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहां वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
1: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहां साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
3: जी,
1: और जहां हर समय नमी पाई जाती है और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
3: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहां वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षा वन तो ऐसे भी हैं जहां साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
1: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
3: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
1: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
3: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं
1: जी,
3: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
1: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है, जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
3: जी।
1: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
3: लेकिन श्रोताओं जरूरी नहीं है कि सभी वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास ही हों, इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
1: तो श्रोताओं एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों

0: के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है।
1: जी
0: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए।
1: जी यही कारण है अजीत जी कि चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है,
0: जी
1: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
0: जी विमृषि श्रोताओं, एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते।
1: जी
0: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमलेश जी से।
1: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओं, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो,
1: जी
0: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
1: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
1: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
0: 8800-44-0559 यानी हमारे IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
3: बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
2: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
3: सूरज, सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो पीला हूं।
3: कौवे, कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
5: नहीं, नहीं, मैं तो काला हूं।

0: अरे गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, मैं तो लाल हूं। घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं,
1: नहीं, मैं तो हरी हूं।
0: बेचारा जोजो। किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
2: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जो जो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोता और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
3: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।

0: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको, अरे मैं,
1: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
0: हाँ?
1: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
0: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
1: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
2: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
1: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
0: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
4: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
5: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
6: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
5: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
7: लेकिन मेरा आदमी तो भी काम ही पे नहीं जाता।
5: आप तो काम करती है ना?
7: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
5: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है, चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गाँव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
4: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगों का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
3: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
8: नहीं करने देंगे।
9: बिल्कुल नहीं करने देंगे।
4: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के

0: लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
1: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
0: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
2: गौरमा,
3: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
2: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
3: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
2: गौरमा,
3: हाँ?
2: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
3: क्या?
2: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
3: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
4: हाँ गौरमा,
5: हाँ गौरमा,
3: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
6: बिल्कुल,
3: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
4: हाँ,
5: हाँ,
4: हम सब तैयार हैं।
5: किसी
4: भी हाल में जंगल कटने
5: नहीं कटने देंगे।
2: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
1: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
3: ये है जंगल के उपकार,
4: मिट्टी पानी और बया,
3: मिट्टी पानी और बया,
4: जिंदा रहने के आधार।
0: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
3: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
7: आगे बढ़ो।
5: अरे कहां से?
7: मिनट की बातों में बताओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। बोलो शुरू।
5: पेड़ों से छिपक जाएंगे, छिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे।
3: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
2: नहीं लगाने देंगे।
3: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
4: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
7: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
1: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
0: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
7: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
1: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल

0: बहुगुणा कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
1: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
0: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
1: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
2: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
0: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: इधर आइए। इधर
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभवाणी,
2: आकाशवाणी।
5: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अपराह्न के 3 बज रहे हैं, संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। हमारी अगली सभा शाम 4:30 पर आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।

आपके साथ 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, यानी आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो पटना। आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है और इस वक्त जो मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो है 39 डिग्री सेल्सियस और सुबह का जो टेम्परेचर था वो था 29 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और इसमें गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन अगर आप घर में बैठे हैं, अपनी गाड़ियों में बैठे हैं, तो एफएम रेनबो को खुद को ट्यून किए रखें हमारे साथ और सुनते रहें एफएम रेनबो के प्रोग्राम। चलिए और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करना चाहेंगे प्रोग्राम पटना अपडेट्स से, लेकिन पटना अपडेट्स के बाद हम एक डालते हैं नजर आज के प्रोग्राम हाइलाइट्स पर भी, क्योंकि पटना अपडेट्स के बाद हम आपको सुनवाएंगे हाई वोल्टेज हंगामा, धमाकेदार बॉलीवुड ट्रैक्स इस प्रोग्राम।

0: सखी सहेली
1: सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और सोनाली आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
2: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली बिल्कुल अच्छे हैं और देखो जो बाहर ये जो गर्मी से हमारी जो दो दो हाथ हम लोगों के हो रहे हैं उससे संभल के बच के चल रहे हैं और आशा करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाले बल्कि सभी लोग अपना बहुत अच्छे से खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे।
2: हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि भाई मुंबई में बहुत गर्मी है तो सखियों अपना ध्यान रखिए।
1: अरे धन्यवाद। और हम सच में बहुत अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं
2: और जब कोई ऐसे हमारे लिए कोई पूछता है तो कितना अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल
2: है ना।
1: और इसलिए तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता एक बार अगर सुन भी लेना कि आप सब कैसे हैं तो कहीं तो ऐसा लगता है कि हम कोई तो है हमारा जो हमसे पूछ रहा है हमें जान रहा है
2: ख्याल रखने वाला
1: जी।
2: है ना। विषय बता दे।
1: चलिए
2: बातें हल्की फुल्की। इसमें एक विषय है कि परीक्षा परिणाम यानी कभी पड़ी मार तो कभी मिले उपहार। तो दीपा आपसे ये सवाल है कि आपको कभी उपहार मिले हैं या मार पड़ी है या दोनों ही हुआ है?
1: मार नहीं पड़ी। मार हाँ एक बार क्लास में पड़ी थी वो बाद में हम बताएंगे जब हम इस सेगमेंट को लेंगे। हाँ। वो क्यों पड़ी थी वो भी बताएंगे। लेकिन कभी ऐसे परीक्षा के परिणाम के लिए मार नहीं पड़ी। लेकिन हमारे पिताजी की आंखें ही बस ऐसी हुआ करती थी ना वो हमें नहीं डांटते थे वो मम्मी के नाम को लेके मम्मी को बोलते थे क्या हो रहा है ये। बस इतना ही काफी था हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए।
2: यानी वो जमाना ऐसा था कि बच्चे सिर्फ मम्मी पापा के आंखों से डर जाते थे, है ना?
1: आंखों से डर जाते थे।
2: और वैसे मुहावरों की दुनिया में आंखों का तारा होना तो जैसे बहुत सारे बच्चे अपनी मम्मी के आंखों के तारे होते हैं और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि विविध भारती जो है वो हमारी आंखों का तारा है।
1: क्या बात है। और ऐसे ही तो हमारे सारे श्रोता इस कार्यक्रम के तारे हैं, है ना?
2: सचमुच
1: जगमगाते हुए
2: जी। और उद्यमी महिला इस सेगमेंट के अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे कल्पना सरोज के बारे में
1: जी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने परीक्षा में कुछ गलतियां की हो या कोई और भी अनुभव, सिर्फ परीक्षा की बात नहीं है, जीवन में कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी आदत नहीं है या हमारा स्वभाव नहीं है लेकिन हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाद में हमें दिल में बहुत पछतावा देता है
2: और
1: हम
2: उसको कचोटते रहता है
1: और ऐसा लगता है हाय मैंने ऐसा क्यों किया, मैं तो ऐसी हूं नहीं या मैं तो ऐसा था नहीं, ऐसा मैंने क्यों कर लिया। ये अपराध बोध जो है ना ये दिल को बहुत घर कर जाता है और कहीं ना कहीं वो हमें सताता रहता है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके, कहीं हम वो अटक के न रह जाए। इसके बारे में हम बात करेंगे और हमारे श्रोताओं ने लिख के भी भेजा है लेकिन आप हमें अब कोई घटना भी बताइए अगर आप चाहते हैं तो,
2: अगर कि बताना चाहते हैं
1: कि कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी ऐसा अनुभव जहां आपको लगता है कि मैंने ऐसा कर दिया और उसका मुझे बड़ा पछतावा है, तो कहीं चाहते हैं कि दिल खोल कर कहिए और बात अगर आपको सही लगती है तो बताइए। तब तक ये गीत सुनिए।

जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता।

0: और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: तो भाई हम तो अपने श्रोताओं से कहेंगे सृजन भारती के इस जो अंक में जो प्रोग्राम होने वाला है, अगर आपकी कोई रिश्तेदार या आप कोई खुद भी हैं तो ज़रूर पहुंचे इस कार्यक्रम में। सभी का आमंत्रण है।
2: बिल्कुल, स्वागत है सभी का। और आज हम जैसे उद्यमी महिला के बारे में जानकारी देते, तो आज हमने चुना है कल्पना सरोज
1: जी।
2: तो कल्पना सरोज भारत की एक प्रसिद्ध उद्योगपति, समाजसेवी और प्रेरणादायी महिला उद्यमी है। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उन्हें संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास की मिसाल भी माना जाता है।
1: कमानी ट्यूब नामक एक कंपनी है जो बंद होने के कगार पर थी सोनाली, उस समय उस कंपनी को फिर से सफल बनाने का पूरा श्रेय जो है वो कल्पना सरोज को जाता है। कल्पना सरोज का जन्म साल 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले में गांव है रोपरखेड़ा, वहाँ हुआ था। उनके पिता पुलिस विभाग में काम करते थे और जैसा कि होता चला आ रहा है अक्सर कि बहुत कम उम्र में उनका विवाह हो गया था। और वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां उन्हें आ रही थी और उन सब कठिनाइयों का वो डट कर मुकाबला कर रही थी।
2: और फिर जैसे होता है ना कि दीपा की बहुत सारी बाधाएं आई, उसके बाद में उन्होंने मन में ठान लिया कि कुछ तो जिंदगी में कर गुजरना है और वे मुंबई चली आई। और मुंबई आने के बाद कल्पना सरोज ने एक सिलाई कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत और लगन से अपना छोटा व्यवसाय आरम्भ किया। पहले सिलाई का काम किया, फिर फर्नीचर और रियल इस्टेट के क्षेत्र में कदम रखा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक पहचान सफल उद्यमी महिला के रूप में बना ली।
1: और कल्पना सरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि है कमानी ट्यूब्स, ये कंपनी को पुनर्जीवित करना। कंपनी आर्थिक संकट से गुजर रही थी और लगभग बंद होने की स्थिति में ही थी। कल्पना सरोज ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली, कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच एक संतुलन बनाया और अपने प्रबंधन कौशल से कंपनी को फिर से सफलता के मार्ग पर लेकर आई। वो
2: यानी कितनी बड़ी बात है ना दीपा, कि यानी किसी बंद पड़ने जा रही थी वो कंपनी और उसमें खुद जाकर और उसमें आगे बढ़ना, यानी कितना ज्यादा संघर्ष किया होगा उन्होंने।
1: सही बात है, बिल्कुल। और फिर साल 2013 में भारत सरकार ने उन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। वे कई मंचों पर प्रेरणादायक वक्ता के रूप में भी जानी जाती है।
2: और इसके अलावा समाज के लिए भी उन्होंने योगदान दिया है। कल्पना सरोज केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं रही बल्कि समाज सेवा और युवाओं को प्रेरित करने का कार्य भी करती है। विशेष रूप से महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। और दीपा, कल्पना सरोज का जीवन ही सिखाता है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, सफलता की राह में अगर बाधा है तो उससे हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास हो, मेहनत और आगे बढ़ने की इच्छा हो तो उनका जीवन संघर्ष सफलता मिली जाती है। और एक प्रेरणादायक कहानी है उनकी जो हर व्यक्ति को अपने सपने को पूरा करने की प्रेरणा देती है। तो जब हम ये सेगमेंट लेते हैं ना दीपा, तब हमें इतनी ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि एक महिला अगर कुछ मन में ठान ले तो वे कर गुजरती ही है।
1: बिल्कुल, और उसके लिए कोई आपको आपकी शैक्षणिक जो
2: योग्यता
1: है उसकी भी जरूरत एक बार के लिए तो थोड़ी पीछे हो जाती है। फिर वो मन में जो आपका जुनून, जोश जो आपका रहता है ना, कहीं से एक आंतरिक ऊर्जा जब निकल के आती तो वो शक्ति जो है, मात्र शक्ति, पता नहीं क्या है उसमें, क्या जज्बा है कि बस वो जब करने के लिए ठान लेती है तो कर ही गुजरती है।
2: और उसमें आत्मविश्वास अगर मिल जाए साथ में तो फिर वो आगे बढ़ने से उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल सही कहा। और इस बात पर अभी तो हम लेते हैं एक अंतराल और भी बातें करेंगे
2: जी।

0: देखो सोनाली, हम सुन रहे हैं ये गाना धीरे धीरे मचल, और मन एकदम ऐसा ना उसमें खो सा गया था, तुम्हें नहीं लगता?
1: बिल्कुल खो सी गई थी, इतने सुंदर इसका संगीत है और लता जी की आवाज, हाँ हाँ हाँ क्या कहने, बहुत सुंदर गीत।
0: बिल्कुल। और देखो ना
1: ये
0: जब
1: गाने भी हमारे आँख के तारे हो जाते हैं।
0: बस मैं मन में सोच रही थी, शब्द तुमने दे दिए, इसे कहते हैं प्यार, है ना दोस्तों, सही कहा या नहीं?
1: बिल्कुल सही कहा। कभी कभी ऐसा था ना, हमारे दोनों की मन की बात होती तो

0: तो एकदम से मुंह से निकल ही जाती है,
1: और
0: दोनों के मुंह से।
1: वैसे बिल्कुल वैसा ही संदेश फिर हमारी सखियां लिख भेजती है, तो ऐसा लगता है देखो मन जब मिल जाते हैं तो शब्द भी एक हो जाते हैं, है ना। तो भाई बात हो रही थी हम आंखों का तारा ये मुहावरे की, और बहुत सारे संदेश आए हमारे श्रोताओं और सखियों की तरफ से। तो पहला संदेश पढ़ते हैं, ये लिखा है कि बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा, बहुत प्यारा, अत्यधिक प्रिय या अति प्रिय होना इसका मतलब है। तो ज्यादातर अपनी संतान के प्रति ये कहा जाता है, चंदा है तू मेरा, सूरज है तू। ये गाना उनको लग रहा है कि ये गीत शायद बजेगा, देखते हैं भाई बजेगा या ना बजेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि गीत तो आएगा ही
0: कोई ना
1: ना।
0: कोई गीत तो आएगा ही।
1: हाँ।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, आंखों का तारा होना हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है, इसका अर्थ बहुत प्रिय होना या अत्यंत प्यारा होना, बहुत लाडला होना, और छोटा बच्चा अपने परिवार की आंखों का तारा होता है, और VBS के सारे प्रोग्राम हमारे आंखों के तारे हैं।
1: क्या बात है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल, और बस कुछ इसी तरह की बात हमारे एक और

0: या अति प्रिय होना इसका मतलब है। तो ज्यादातर अपनी संतान के प्रति ये कहा जाता है, चंदा है तू मेरा, सूरज है तू। ये गाना उनको लग रहा है कि ये गीत शायद बजेगा। देखते हैं भाई बजेगा या ना बजेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि गीत तो आएगा ही ना।
1: कोई ना कोई गीत तो आएगा ही।
0: हाँ।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, आंखों का तारा होना हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है। इसका अर्थ बहुत प्रिय होना या अत्यंत प्यारा होना, बहुत लाडला होना। और छोटा बच्चा अपने परिवार की आंखों का तारा होता है, और VBS के सारे प्रोग्राम हमारे आंखों के तारे हैं।
0: क्या बात है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल। और बस कुछ इसी तरह की बात हमारे एक और श्रोता ने लिख भेजी कि जहाँ तक आंखों का तारा होने की बात है, विविध भारती भी हमारी आंखों का तारा है, यानी हम सभी का बड़ा प्रिय प्यारा मनोरंजन चैनल है। और आज का मंच संभाल रही हमारी दोनों बेटियों भी हमारी आंखों के तारे हैं।
1: क्या बात है।
0: तो
1: बहुत बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं को, सखियों को, जो इतना प्रेम आपकी तरफ से मिलता है। और सच में हम मुलाकात हमारी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कहीं कोई एक जुड़ाव तो है।
1: बिल्कुल, पिछले जन्म का होगा या इसी जन्म का जुड़ाव है,
0: हाँ
1: है ना।
0: बिल्कुल।
1: एक नाजुक सी डोर है श्रोताओं के बीच और हमारे बीच, ये हमें बहुत सारा संबल देती है ना।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, सखी सहेली प्रोग्राम हमारी आंख का तारा है, यानी बहुत बहुत प्यारा दुलारा है। बहुत ही मनपसंद चीजों कहते हैं, आग का तारा कहते हैं। और हर माँ की आग का तारा होती है उनकी संतान, देशभक्त क्रांतिकारों की आग का तारा उनका प्यारा हिंदुस्तान। क्या बात
0: क्या
1: है,
0: बात है।
1: हमारा देश हम सभी की आंखों का तारा है।
0: और देखो होना भी चाहिए।
1: जी
0: और एक और संदेश आया है, आंखों का तारा होना इसका अर्थ है हम सभी जानते हैं कि बहुत प्यारा होना। ये मुहावरा अक्सर घर के किसी लाडले बच्चे या व्यक्ति के लिए उपयोग में लाते हैं। हम सबके जीवन में हमारे आंखों का तारा कोई ना कोई तो जरूर होता है। उसको हम ये बताएं कि तू हमारे आंखों का तारा है या हम तुझे कितना प्यार करते हैं। पहले आप मुहावरे के माध्यम से बताएं कि आप उसको प्यार जताकर बताते हैं, या ये जरूर कह सकते हैं कि ये मुहावरा हमारी निजी जिंदगी में हमारे प्यार को दर्शाने के लिए बहुत काम आता है।
1: क्या
0: तो
1: बात है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम जैसे घर में छोटा बच्चा होता है ना, नाराज हो जाता है, तो हम उसको लाड़ दुलार में नहीं कहते, अरे तू तो मेरी आंखों का तारा
1: तारा
0: है, क्यों
1: है।
0: नाराज हो रहा है ना।
1: ये माँ जो है ना, हर माँ के मुंह की बात है, उनके उनके जुबान पे ये शब्द आता ही। एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा कि आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ तो बहुत प्यारा या अत्यंत प्रिय होना है। ये मुहावरा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी का सबसे पसंदीदा और लाडला होता है। इसका अर्थ बहुत अधिक स्नेह या प्यार का पात्र होना है। वाक्य प्रयोग, हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। छोटा बेटा होने के कारण सोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है। उन्होंने उदाहरण लिख के भेजा है। वैसे हर बच्चे जो होते हैं ना, अपनी माँ के आंख के तारे होते हैं। फिर वो छोटा बेटा हो, मझला हो, बड़ा हो, बेटा हो या बेटी हो, सारे लोग अपने माँ के आंख के तारे ही होते हैं।
0: बात तो बिल्कुल सही की कही। और अब क्या लगता है आपको, हम देखते हैं कि हमारे पसंद का जो गीत हमने निकाला हमारे श्रोताओं को वो भी पसंद आएगा, या उनकी जो लिस्ट उन्होंने बना रखी होगी छोटी सी कि शायद इस मुहावरे के बाद ये गीत बजेगा या नहीं। तो चलिए देखते
1: देखते
0: हैं कि हमारी पसंद और उनकी पसंद
1: मिलती
0: कितनी
1: है
0: मिलती
1: नहीं।
0: है ना।
1: जी।

0: सोनाली, मैं देख रही हूँ कि इस गीत को सुनते सुनते कुछ संदेश पढ़ के आप जैसे कुछ भावनात्मक हो गए हो।
1: जी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई मेरी माँ ये गाना हमेशा गुनगुनाती थी और मैं 5 बहनों में इकलौता भाई हूँ, तो मैं अपनी मम्मी की आँख का तारा था, है ना।
0: बिल्कुल सही
1: तो
0: कहा।
1: जो बच्चे होते हैं ना, माँ की आँख के तारे होते हैं, फिर बेटी हो बेटा हो, पर जो हम बच्चे होते हैं ना, कभी कभी हम अपनी माँ को दुखी कर देते हैं कि क्यों इस तरह से हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, या क्यों हमें हमेशा लेक्चर देते रहती हो,
0: या कुछ कोई खास चीज खाने के लिए मम्मी बोलती है ना, थोड़ा सा खा लो थोड़ा सा खा लो। अब हमारा मन नहीं होता और हम बोलते हैं कितना आप बोल रही हो, नहीं खाना भाई। हम झुंझला के उनको कभी कई बार
1: गुस्सा हो जाते हैं।
0: हाँ, और कुछ कड़वे बोल भी बोल देते हैं। माँ दुखी हो जाती है, लेकिन उनकी आंखों का तारा बनने में हमारी कोई कमी नहीं होती, उनके लिए हम वैसे ही बने होते हैं।
1: वैसे ही बने होते हैं। और फिर क्या होता है कि एक वक्त के बाद हमें ऐसा लगता है, अरे मैंने फालतू में माँ का दिल दुखा दिया, और हम अपराध बोध से ग्रस्त भी हो जाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल,
1: माँ तो हमारी इतनी प्यारी है, वो कहती है कि देर रात तक ना जागो, पर हम जागते हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसा करो ऐसे कपड़े पहनो इस तरह के कपड़े पहनो, मम्मी डांटती है। और फिर कभी
0: और
1: कभी
0: जब हाँ कुछ सालों के बाद जब हम उस पे चिंतन करते हैं तो हमें लगता है कि माँ कितना सही कहती थी और हम कितना चिढ़ गए उस वक्त। और फिर वो एक मन में ना कहते हैं ना हम, जैसे कि पछतावा होने लगता है,
1: और
0: या
1: अगर
0: यूं
1: माँ ना हो इस दुनिया में तब तो
0: हाँ
1: और भी बुरा लगता है ना।
0: बिल्कुल सही कहा। और बात तो तुमने बहुत गंभीर शुरू कर दी है सोनाली, लेकिन वक्त हो गया एक अंतराल का, तो अंतराल लेके इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं।

0: सोनाली, आप क्या बात कर रही थी अपराध बोध के लिए?
1: ये अपराध बोध शब्द ही ऐसा है ना कि जिसको पढ़ते ही अपराध बोध आ जाता है दीपा, जब हम मन की बात कहते हुए बोल देते हैं ना कि मुझे गिल्ट खा रहा है या पछताव हो रहा है, ऐसी मानसिक स्थिति जो इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखली करती जाती है। अतीत में हुई किसी गलती, गलत फैसले या किसी को अनजाने में पहुंचाए गए कष्ट के कारण ऐसी भावना पैदा होती है। हालांकि कुछ हद तक अपराध बोध हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रेरित भी करता है, लेकिन जब ये लंबे समय तक मन में घर कर जाए ना तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह कर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा। अतीत को देखो बदला नहीं जा सकता सोनाली, लेकिन जो वर्तमान है, आज है, उसको संभाल कर भविष्य को जरूर संवारा जा सकता है। इसलिए खुद को माफ करना, अपराध बोध के जाल से बाहर निकलना बेहद जरूरी है।
1: और यदि हम किसी बात को लेकर ग्लानि या अपराध बोध से जूझ रहे हैं तो कुछ तरीकों को अपनाकर खुद को मुक्त कर सकते हैं। जैसे गलती को स्वीकार करना अपराध बोध से बचने का पहला कदम है, कि ये मानना कि हमसे गलती हो गई है। गलती को छुपाने या उससे भागने के बजाय उसे स्वीकार करने से मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। और परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, खुद से पूछे कि जब वो गलती हुई तब क्या हम सचमुच किसी बुरे इरादे से काम कर रहे थे। कई बार हालात, अधूरी जानकारी या सामाजिक पारिवारिक दबाव के कारण गलतियां हो जाती है। खुद को हर बात में विलन ना बनाए, यानी खुद को अरे इतना मैं इतनी तो बुरी नहीं हूं, पर मुझसे गलती हो गई है तो हो गई है ना।
0: बिल्कुल सही कहा। और माफी मांग सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। वो कैसे? अगर गलती से किसी दूसरे को ठेस पहुंची है तो बिना किसी अहंकार के उनसे सीधे माफी मांग लेनी चाहिए। यदि संभव हो तो उस नुकसान की भरपाई करने की भी कोशिश कर सकते हैं, और ये करके देखें, आपके मन को बहुत गहरी शांति देगा। फिर आत्मक्षमा अपनाना चाहिए। हम ना दूसरों को तो कर देते हैं क्षमा, लेकिन कभी कभी अपने ही किसी किए के लिए बार बार बोलते ना, मैं उसके लिए खुद को माफ नहीं कर सकती, मैं अपनी ये वाली बात को बिल्कुल भूल नहीं सकती। इस तरह की बातें अक्सर आती हैं, हम अपने लिए सोचने लग जाते हैं। और अक्सर हम दूसरों को बहुत आसानी से माफ तो कर देते हैं, लेकिन खुद के प्रति इस तरह से हम कठोर हो जाते हैं। लेकिन इंसान गलतियों का ही पुतला है, फिर देखो है कि नहीं सही बात। और खुद को एक इंसान के रूप में देखें जिसने एक गलती की, न कि खुद को ही एक बुरा ही इंसान हम मान लेते हैं बिल्कुल कि हाय मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। इस तरह की बातें भी कभी कभी निकल आती हैं।
1: और ऐसे में क्या होता है, हम निराशा की खाई में ही गिरे रहते हैं हमेशा। अगर ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती हैं तो हम उदास रहते हैं, निराशा में रहते हैं, और उससे क्या होता है, जाने अनजाने में हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ जाता है, बीमारियों का घर बन जाता है। तो अतीत की उस घटना को एक कड़वी याद के रूप में ना देखकर एक सबक के रूप में अगर हम देखें ना, तो बहुत हद तक हम आगे भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, और हमारी गलतियां हमें फिर गिल्ट में नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास में आगे बढ़ने में भी मददगार होगी। जो बीत गया उसे पर अब हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जो आएगा वो हमें पता है नहीं। इन्हीं बातों की उलझन में हम अपना वर्तमान क्यों बिगाड़े, और फिर देखिए ना, अन्य चिंता में वर्तमान के खूबसूरत पल हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलते चले जाएंगे। तो क्यों ना अपनी ऊर्जा को आज सुधारने संवारने में बिताए, एक सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना जरूरी है।
0: बिल्कुल, हम अपने अतीत में की गई गलतियों से कई बड़े हैं सोनाली, और कई बेहतर भी हैं। खुद को कोसना बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर नया दिन खुद को सुधारने का एक नया मौका लेकर आता है।
1: और हमारे श्रोताओं ने भी इस विषय में बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं। एक साथ ही लिखते हैं, अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता है, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता है। जीवन का उद्देश्य निर्दोष बनना नहीं बल्कि सीखते हुए बेहतर बनना है। गलती को स्वीकार कीजिए, उससे कुछ सीखिए, लेकिन उसे अपना स्थायी पहचान मत बनाइए। इंसान गलती से छोटा नहीं होता, वो तब छोटा होता है जब सीखना छोड़ देता है।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह का एक और देश कहता है कि अपराध करने के बाद दिल दिमाग पर एक बोझ महसूस होना स्वाभाविक है। आपसे ये अपराध जानबूझकर के नहीं हुआ है, तो खुद को कोसने के बजाय शांत चित्त पूर्वक आत्मचिंतन करें, भविष्य में इससे इसके प्रति जागरूक रहें। अतीत के गलियारों में घूमने के बजाय परिवार के साथ हंसी खुशी भरा माहौल बनाए रखें, वर्तमान आपका ऐसा ही होना चाहिए।
1: एक साथ ही लिखते हैं, जाने अनजाने हमसे गलतियां होती रहती है, मन से उसे मान

0: लेना ही समझदारी है, नहीं तो जब तक मान न लूं हमेशा अपराध बोध से मैं ग्रस्त रहती हूं, क्योंकि कोई ना कोई आपकी गलती पकड़ ही लेते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर है मान लिया जाए। साथी,
1: बिल्कुल
0: एक और साथी ने लिखा है कि अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता। इसी तरह की बातें और भी हमारे साथियों ने लिखी है।
1: भाई, देखो दिल की बात कहीं किसी को कह देनी चाहिए, कोई दोस्त को, कोई ऐसा आपका भाई होते हैं ना, हमारे कजिन्स भी होते हैं जिनके हम बहुत करीब होते हैं, तो अगर आप अपने दिल की किताब कहीं खोल देंगे तो मन शायद कुछ इस तरह से हल्का हो सकता है।

0: गहराई से पढ़ रही हो तुम।
1: जी, हमारे एक सखी ने लिखा है कि कभी कभी हम अनावश्यक रूप से अपराध बोध पालकर अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं। कुछ लोगों को तो अगर जागने में देर हो जाए तो भी अपने आप को कोसने लगते हैं, भाई आप जरा देर तक सो लेंगे तो दुनिया थोड़ी रुक जाएगी। किसी से खाने में नमक ज्यादा पड़ गया तो परेशान हो जाएंगे। आप ही तो रोज स्वादिष्ट बनाती है, एक दिन गड़बड़ हो गया तो क्या हो जाएगा। जिंदगी को हल्के फुल्के ढंग से जिए, बोझ लेकर नहीं जिए। वहीं एक साथी ने लिखा कि भाई मैंने भी एक कुछ ऐसा काम कर दिया था कि मेरे दुकान के पीछे में एक जगह थी, वहां पर बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चे दिए थे, तो मुझे परेशानी हो रही थी तो मैंने बच्चों को उठा के कहीं भिजवा दिया। बाद में दूसरे दिन उन्हें मंगवा लिए बच्चे, तो बहुत अपराध बोध से ग्रस्त हो गए थे, अब उन्हें अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता
0: हो
1: है।
0: जाता है बिल्कुल। और आपने देखिए माँ को उसके बच्चों से मिला दिया है, तो इससे ज्यादा खुशी जितने खुश आप है ना, ये सुनकर और ये पढ़ के आपका संदेश हमें भी बहुत खुशी मिल रही है। और भाई इसका परिणाम तो देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन परीक्षा के परिणाम में कभी कभी घर में मार भी पिट जाती है और कभी कभी उपहार भी मिल
1: पर
0: जाता
1: ऐसा
0: है।
1: होता है ना दीपा, कि उस वक्त भी अपराध बोध से हम ग्रस्त हो जाते हैं कि कभी परीक्षा में हमें कम नंबर मिल गए, तो खासकर लड़कियां, क्योंकि सब लोग बोलते ना कि अरे हमारी बेटी तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आती है, हमेशा फर्स्ट आती है, और कभी तीसरा चौथा नंबर आ गया तो उस बेटी को बड़ा बुरा लगता है कि अरे मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मैंने अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं की। और फिर उन्हें मन ही मन वो खाते भी रहता है वो अपराध
0: बिल्कुल,
1: बोध।
0: लेकिन इस तरह से होना नहीं चाहिए। हम अब तो बच्चों को बहुत समझाते हैं भाई, पहला और दूसरा नहीं, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, नंबर के पीछे ना भागो, ये हमें भी सिखाया जाता था। लेकिन हाँ कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक माता पिता को एक एक्सपेक्टेशन होती है हमसे कि भाई ये इतने नंबर तो लेकर ही आएगी या लेकर ही आएगा, तब और नहीं ला पाते तो कहीं हमें मन में वो कसोसता है। लेकिन भाई अगली बार आप मेहनत करके हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन तब छोटे होते हैं ना तो ये सारी बातें नहीं समझ आती। लेकिन आज देखते हैं कि संदेश क्या कहते हैं। पहला संदेश है परीक्षा परिणाम, उपहार कभी नहीं मिला, बचपन में पापा की मार जरूर पड़ी है लेकिन हर बार मम्मी बचा लेती थी। तो देखो मम्मी तो यहाँ भी
1: वो
0: काम आई
1: आंख
0: है।
1: का तारा होते हैं ना बच्चे।
0: हाँ इसीलिए
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, कभी मार तो कभी मिले उपहार। हमारे जमाने में तो परीक्षा के परिणाम के बारे में तो हम फिक्र ही नहीं करते थे, ना माता पिता करते थे। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के आगे पढ़ना नहीं था, पढ़ना ये हमारे रिजल्ट के आने के बाद पता चल जाता था, क्योंकि उन दिनों हमारे परिवार में पढ़ाई से ज्यादा काम धंधे पर ध्यान दिया जाता था। अगर फेल हो गए तो गृह उद्योग यानी कारखाना हमारा स्वागत करते तैयार रहता था। मुझसे बड़े सभी भाइयों का ऐसे ही स्वागत हुआ था, पूरे परिवार में मैं अकेला ही है जो ग्रेजुएशन तक पहुंच सका हूँ। क्या बात
0: क्या
1: है।
0: बात है। और एक हमारे साथी ने लिख भेजा है संदेश कि मेरे दादाजी हम बच्चों को जिसका भी रिजल्ट 1 से 5 के बीच में रैंक में आता था उनको मतलब उस जमाने में 5 रुपए देते थे। वो 5 रुपए हम तीनों भाई बहनों को मिलता ही मिलता था। क्या बात है भाई। और उस जमाने में यानी कि 50 साल पहले की बात होगी, 5 रुपए बहुत मायने रखता था। जी बिल्कुल रखता था। और कुछ मिलना ही हमारे लिए ये मतलब मिल जाए बहुत बड़ी बात होती थी। मैं तो SSC में सेंटर का फर्स्ट था और मैथ्स में 100 में से 90 मार्क्स, क्या बात है। और मुझे 100 रुपए का इनाम भी मिला था।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, परीक्षा परिणाम की बात चली तो बता दे कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में मैं पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी पढ़े थे और हमारी किताबें समझते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो भी पास होने भर के मार्क लाता रहा। BA तक ये सिलसिला चला जब तक मैं मनबढ़ हो चुका था। हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाने लगा, शादी भी हो चुकी थी और पत्नी घर में आ चुकी थी। हाँ, इधर दो नाती अपनी परीक्षा परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% और एक ने 87% मार्क लाए, फिर भी वे संतुष्ट नहीं है। ये आजकल का जमाना है, यहाँ पर तो 99 भी मिल जाए तो कहते कि भी 1% कहाँ चला गया, है
0: बिल्कुल सही कहा।
1: ना।
0: और एक संदेश कहता है कि ये वो शब्द है जो दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। भले ही हम कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन बोर्ड एग्जाम या फाइनल रिजल्ट के दिन वो गुड़गुड़ वाली, वो घबराहट वाली जो एक फीलिंग रहती है ना, वो सबको याद रह ही जाती है। भाई बिल्कुल सच बात है। एक समय सच में भावनाओं का ये वो समय है जब भावनाओं का एक रोलर कोस्टर होता है। कभी खुशी, कभी गम, कभी मार डांट, तो कभी उपहार। तो इन खट्टी मीठी यादों को ताजा करते हुए वो बताते हैं कि रिजल्ट वाले दिन का माहौल तो सुबह में ही घर में सन्नाटा हो जाता। मम्मी भगवान की पूजा कर रही होती है, पापा अखबार पढ़ने का नाटक करते हैं जबकि नजरें घड़ी पर होती है। परिणाम अच्छा हो अगर हुआ तो घर में दिवाली जैसा माहौल, मिठाई बांटी जाती है, रिश्तेदार फोन करते हैं, पड़ोसी हेलो बोलने आते हैं। परिणाम खराब तो घर में बिल्कुल ऐसा

0: सन्नाटा, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है। टीवी बंद, आवाज धीमी, सब ऐसे व्यवहार करते जैसे किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कभी पड़ी मार तो जब नंबर कम आते थे तो लगता था कि अब तो बस धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। और पापा का यह डायलॉग हमेशा होता, बगल वाले शर्मा जी के बेटे को देखो, ये जुमला तो लगता है हर बच्चे का दुश्मन रहा होगा। भाई बिल्कुल सही कहा आपने। और मम्मी का डायलॉग रहता, सारा दिन मोबाइल में खेल में लगे रहोगे तो अब भुगतो उसका नतीजा। और एक हफ्ते के लिए टीवी खेलना बंद, टीवी बंद, और एक्स्ट्रा ट्यूशन की धमकियां मिलती, इस तरह की बातें होती। और अगर उपहार के रूप में उन्हें ये होता था कि जब मेहनत रंग लाती थी तो डर लगता था कि हमसे बड़ा सिकंदर कोई नहीं। और डिमांड पूरी हो जाती थी, पापा से नई साइकिल या नया फोन या मनपसंद गेमिंग कंसोल की डिमांड पूरी हो जाती थी। तो भाई उन्होंने तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बिल्कुल आंखों के सामने ऐसा लग रहा है हमारा बचपन भी कहीं ना कहीं सामने लेकर आए हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों की आज यादें ताजा की होगी।
1: और तो अब गाना सुन ले
0: चलिए।

0: भाई देखो,
1: हाँ
0: कितने लोगों को पढ़ने में दिल भले ही नहीं लगता हो, लेकिन यहाँ पे जो संदेश आ रहे हैं उसको देख के तो ऐसा लगता है कि पढ़ने में बहुत मन लगता था।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है दीपा, हमारे जमाने में सेवंथ बोर्ड होता था, एक स्कूल होने के चलते हम आसपास के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आते थे, जिससे हम सभी उनके साथ बैठकर पढ़ते थे। पड़ोस में एक बच्चे को का नंबर कम आया, ट्यूशन पढ़ने वाले टीचर आए तो गार्जियन ने शिकायत किया। उस समय तो उनने सिल लिया, बड़ी अकड़ के साथ हमें सुनने लगे कि मुझे कम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये। नया नया कबीर का दोहा पढ़ना शुरू कर दिया। जो टीचर ट्यूशन पढ़ाने आते थे उन्होंने कान पकड़ कर बोला, सिर्फ पढ़ने की भी खाने में भी, खाने में हो तो कम हो जाएगा तो बहुत हल्ला करते हो।
0: और एक और संदेश कहता है कि परीक्षा परिणाम का दिन बच्चों से ज्यादा शायद माता पिता के लिए डर और उत्सुकता लेकर आता है। इस बार मेरी बेटी ने 10वीं की

परीक्षा दी थी, सच बताऊं तो उससे ज्यादा घबराहट मुझे हो रही थी उसके कितने मार्क्स आएंगे। जब उसका परिणाम आया तो उसने 90% अंक प्राप्त किए तो मन गर्व और खुशी से भर गया। अब उसकी एक प्यारी सी इच्छा है, उसे गिफ्ट में मोबाइल चाहिए। अभी हमने उसे दिलाया नहीं है, लेकिन आजकल वो बड़े प्यार से दूसरे बच्चों के स्टेटस दिखा रही है हमें और कहती है, मम्मी देखो ये उसके पेरेंट्स ने उसे ये गिफ्ट दिया है। तो सच कहूं तो रिजल्ट के साथ जुड़ी ये सारी छोटी छोटी बातें जीवन की सबसे सुंदर यादें बनकर रह जाती है। तो भाई अगर आपने वादा किया है तो अब आपको अपनी बिटिया को गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा और हमें भी आपको गिफ्ट देना होगा।

0: शिवानी, तुम कौन सा संदेश पढ़ने का कह रही थी?
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि परीक्षा परिणाम वैसे तो किसी के प्रतिभा को आकलन करने का मापदंड तो है नहीं, पर जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन तो होता ही है। स्कूल जाएंगे, क्लास में पढ़ेंगे तो परीक्षा भी होगी, परिणाम आने पर घर पर उसके अनुकूल ट्रीटमेंट भी मिलेगा। पर मेरा अनुभव तो अच्छे वाले ट्रीटमेंट का ही है, तब उपहार वगैरह मिलने का जमाना तो था नहीं, पर क्लास में फर्स्ट सेकेंड आने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से पुरस्कार जरूर दिया जाता था। मुझे तो फर्स्ट प्राइज ही मिल जाता था, जो भी मिलता था अनमोल होता था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि परीक्षा के परिणाम उपहार या डांट मुझे तो याद नहीं, हमारे जमाने में ऐसा कुछ होता था। नंबर कम आया तो गार्जियन समझाते थे, लेकिन अच्छे नंबर आने पर घर में कभी मिठाई मिल जाती थी, कभी अठन्नी चवन्नी मिल जाते थे। आजकल के गार्जियन बच्चों के लिए परीक्षा फल के परिणाम के लिए कुछ ज्यादा संशय में रहते हैं। आजकल कंपटीशन कुछ ज्यादा टफ है, नए नए रोजी रोटी और पढ़ने के आयाम भी खुले हैं। अगर कुछ कम है तो कुछ दूसरे रास्ता भी ढूंढ लेंगे। उन्हें डराया जाता है कि अगर नंबर

0: कम आएंगे तो अगली बार फिर उसी क्लास में 2 बार पढ़ना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही अपमानजनक शब्द होता था। पर भैया हम तो इतना कोशिश करते थे कि अगले साल नए क्लास में ही जाएं।
1: सही बात है। और एक और संदेश है, कहता है, परिणाम परीक्षा की बात चली तो बता दें कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में भी पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी पढ़ाते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो पास भर होने का मार्क लाता रहा। बीए तक ये सिलसिला चला। और बाद में तो ये है कि हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाना, शादी भी हो चुकी थी, पत्नी घर आ चुकी थी। हाँ, इधर हमारे दो नाती और अपने परीक्षा परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% लाए हैं और एक ने 87% मार्क्स लाए हैं, फिर भी वे लोग देखिए संतुष्ट नहीं हैं।
0: एक
1: और अब हम किस बात से संतुष्ट होंगे?
0: गाना सुन के
1: चलो।

0: यार शब खैर, हम मेरे यार शब खैर, मेरे यार शब खैर।
1: आज के हमारे श्रोताओं के जो जितने भी संदेश है, खूब हंसाया हमें,
2: इतने हम खिलखिला के हंसे तो कुछ बार तो मेरी आंखें छलक गई हंसते हंसते।
1: हाँ बिल्कुल, मैं देख रही थी श्रोताओं, लेकिन वक्त देखिए शब्बा खैर कहने का आ गया है, तो आप सभी दीजिए इजाजत। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
2: सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

दोस्तों, सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने। दोस्तों, अगर हम वक्त का दामन थाम कर अतीत में लौटें, तो फिल्म संगीत की वादियों में गूंजने वाली एक जानी पहचानी सी मीठी और मधुर आवाज बरबस ही हमारा ध्यान खींच लेती है। कभी सेल्यूलॉइड के पर्दे के उस पार से, कभी स्टेज, कभी रेडियो और कभी टीवी के जरिए हवाओं पर सवार होकर ये आवाज आपको आवाज देने पहुंचती रही है। जी हाँ दोस्तों, हम जिक्र कर रहे हैं गायिका कमल बारोट का, जो आज

0: पिताजी को संगीत का, घर में संगीत का माहौल था ऐसे समझ लीजिए। मेरी माताजी भी गाती थी, पिताजी दिलरुबा बजाते थे और घर में महफिल सजती थी। हालांकि क्लासिकल महफिल होती थी जहाँ से मैं भाग जाती थी, क्योंकि मुझे उस वक्त क्लासिकल म्यूज़िक से इतना, बहुत छोटी थी मैं, एक लगाव नहीं था। तो वो कहते हैं ना, वो माहौल तो बचपन से ही मिला था। और जब मैं कॉलेज के लिए हिंदुस्तान आई तो सोफिया कॉलेज में सब लड़कियों को पकड़ के मैं कहती थी मेरा गाना सुनो ज़बरदस्ती, क्योंकि सीखा नहीं था कुछ, सारे गमा का कुछ पता ही नहीं था, तो ऐसे ही गाती थी। और उसमें से मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के लिए चली गई, लड़कियों ने मेरा फॉर्म भर के, और वो मैं कॉन्टेस्ट जीती, और वहाँ से एक किस्म से ये यात्रा शुरू हुई।
1: अच्छा, तो यानी ये हम माने कि जैसे किसी को मंत्र दीक्षा दी जाती ना कान में हौले से
0: जी,
1: तो वैसे ही संगीत की पहली जो दीक्षा थी मंत्रों की, वो तो आपको घर में ही मिली।
0: घर में ही मिली, बिल्कुल सही।
1: लेकिन बाद में उसका जो सफर है थोड़ा सा और आगे जा करके शुरू हुआ।
0: जी,
1: अच्छा
0: जी।
1: लेकिन कहते हैं कि यदि संगीत के क्षेत्र में आपको गुरु मिल जाए तो आपकी ये जो यात्रा है या जो भी विद्या आप सीखना चाहते हैं उसमें और अच्छाइयाँ आ जाती हैं, तो संगीत में आपके भी कोई गुरु रहे?
0: जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब थोड़ा सा रेडियो पे मेरा गाना बजा और कहते ना पता चला कि ये कॉन्टेस्ट जीती है, तो बहुत जगह से लोगों ने बुलाना शुरू किया और कहते ना पब्लिक आई में किस्म से आना। तो कल्याण जी आनंद जी हमारे फैमिली फ्रेंड थे और उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, कल्याण जी आनंद जी नाइट, और इतना बड़ा ये प्रोग्राम हुआ था कि रंग भवन में ये प्रोग्राम हुआ था, तो मेट्रो तक, कहते ना गाड़ियों की, लोगों की उस ज़माने में क्यू थी, उस प्रोग्राम में मुझे मुकेश जी के साथ गाने का मौका मिल गया।
1: अच्छा,
0: और लता जी भी वहाँ थी और उन्होंने ये कार्यक्रम सुना, और बाद में उन्होंने कहा कि सेवा सदन करके उनकी जो स्कूल थी उनके लिए उन्होंने मुझे ये प्रोग्राम में इनवाइट किया, एंड आई वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ लता मंगेशकर। मैं दीदी को इतना चाहती थी कि जब भी मैं आती थी तो उनको मिलने जाती थी। और एक बार ऐसे ही संडे में उनके घर चली गई, तो वो तो जा रही थी कोल्हापुर, और कल्याण जी भाई आ गए डेट लेने के लिए, और तो उन्होंने कहा कमल जी को तो सुना है मैंने, इससे गवा लो ये ड्यूएट गाना है। आप यकीन माने वहाँ से मैं कल्याण जी भाई के म्यूज़िक हॉल पे गई, और वहाँ आनंद जी भाई ने मस्ती मजाक में मुझे एक गाना सिखा दिया। दूसरे दिन पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग भी हो गई, रिकॉर्ड भी हो गया, फिल्म थी ओ तेरा क्या कहना, और गाने के बोल थे दिल लेके जाते हो कहाँ।
1: वाह वाह वाह भाई, ऐसा
0: कहाँ से कहाँ ये बात देखिए।
1: आपने जो गाना गाया है दिल लेके जाते हो कहाँ, लेकिन ये एक चीज है कि जब जब इस गाने को हम सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि ये गाना वाकई दिल लेके कहीं जा रहा है, तो क्यों ना हम ये गाना।
0: ये तो आप सब लोगों का प्यार है, लेकिन मुझे भी उस वक्त पता नहीं था कि ये गाना इतना पॉपुलर होगा, और यहाँ से एक कसम से फिल्म यात्रा शुरू हुई।
1: ठीक है, हम आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो गाना है आपका जो बहुत ही पॉपुलर हुआ और आज भी सदाबहार है, इसके जरिए हम क्यों ना एक बार फिर से अपने सुनने वालों के दिलों को छुएं और उन पर दस्तक दें।
0: सुनाइए।
2: दिल लेके जाते हो कहाँ, हम तो खड़े हैं यहाँ।

0: आपके पार्श्व गायन की शुरुआत हुई
1: जी।
0: लेकिन चूंकि वो पहला गाना था आपका और बड़े संयोग से और अचानक ही आपको वो गाना मिल गया था, तो पहला गाना और पहली सफलता हर आदमी की जिंदगी में बहुत अहम होती है। कैसा आप महसूस कर रही थी और आपको आपके जो सहयोगी कलाकार थे, संगीतकार थे, उन सबका सहयोग कैसा मिला?
1: देखिए, उस जमाने की बात मैं आपको बताऊं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये जो सिंगर्स थे, म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स, ऐसा लगता था जैसे एक बड़ी हैप्पी फैमिली है। मैं आप बताऊँ, मेरा दूसरा गाना लता जी के साथ ही हुआ और म्यूजिक डायरेक्टर वही थे, कल्याण जी आनंद जी। तो जब रिकॉर्डिंग के दिन मैं गई वहाँ, तो जाहिर है कि मैं बहुत ही नर्वस थी, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी गायिका के साथ उसी
0: लेवल
1: पे बैठ के गाना, तो वो देख समझ गई। वैसे सहेली दीदी तो थी, सहेली भी थी, तो कहने लगी, देखो कमल, जब भी आज इतने सालों के बाद माइक्रोफोन फेस करती हूँ, तो मुझे लगता है जैसे मेरा ये आज इम्तहान का दिन है, और एवरी टाइम मैं गाना गाती हूँ तो वो एक इम्तहान ही लगता है। तो सबके लिए एक ही बात, उन्होंने मेरा माइंड इतना एटीज कर दिया कि वो गाना भी ऐसे हो गया, अकेली मोहे छोड़ना जाना बराबर की लाइनें थी, और म्यूजिक भी, म्यूजिक के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा, पॉपुलरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा।

0: जहाँ तक हौसला अफजाई की बात है, जैसे अभी आपने बताया कि लता जी ने आपका हौसला बढ़ाया, आपको ढांढस बनाया,
1: जी
0: इसमें घबराने की कोई बात नहीं
1: जी
0: है,
1: जी
0: तो ऐसे और भी कलाकार होंगे, गायक गायिकाएं।
1: जी अब आप रफी साहब को ले लो, कितने बड़े महान कलाकार थे। अब उनके साथ जब गाते थे तो वो भी वही अंदाज से पेश आते थे और माइंड इतना ईज कर लेते थे और माहौल ऐसा बना के रखते थे कि जैसे गाना रिकॉर्ड हो जाता। तो मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने तकरीबन सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ गाना गाया है और मेरे साथ बहुत अच्छी तरह ये पेश आए हैं।
0: कमल जी, आप जिस जमाने का जिक्र कर रही हैं,
1: जी
0: कुछ देर के लिए हम भी उसी जमाने की तरफ जाना चाहते हैं। आज सब कुछ बदल चुका है। आप जिस जमाने में पार्श्व गायन के क्षेत्र में सक्रिय थी, उस दौर को आप किस रूप में याद करती हैं?
1: एक ऐसा दौर था कि जो गान बनाने वाले जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो भी जैसे कोई रिसर्च करते हैं ना, वो एक भी डेडिकेटेड म्यूजिक डायरेक्टर्स थे और जो गाने वाले थे वो भी। अभी मेरा एक गाना हुआ था, फिल्म बरसात की रात का गाना था, म्यूजिक डायरेक्टर रोशन थे। आप यकीन माने इतने बड़े वो म्यूजिक डायरेक्टर मुझे रिहर्सल कराने आते थे। हाँ, और एक दिन नहीं आए, वो मेरे ख्याल में 10-12 दिन आए, क्योंकि कह रहे थे ये राग पर आधारित है गाना और कमल को कुछ छोटी सी ताने भी कहलवानी है, क्योंकि मेरा कोई क्लासिकल म्यूजिक का कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो इतनी दिलचस्पी, आप बताइए आज कैसे कौन ले सकता है। समय की का कितना अभाव है कि आज तो गाने मैंने सुना ऐसे बनते हैं कि बहुत
0: इंस्टेंट फूड की तरह।
1: इंस्टेंट फूड की तरह बनते हैं। तो वो गानों में बात भी फिर ऐसी आती थी क्योंकि माहौल ही ऐसा था।
0: जी हाँ,
1: हाँ
0: इतना पेशेंस रखते
1: जी
0: थे लोग,
1: जी जी
0: और उसमें

0: और बारीक से बारीक काम जितना तराश सकें
1: और जो
0: किसी
1: इंग्लिश
0: जाने
1: में
0: को।
1: कहते हैं ना, पेस भी थोड़ा स्लो था
0: क्या बात है।
1: जिंदगी का पेस, मजा था एक, यू नो, जिंदगी का कहते हैं ना, हर चीज़ में डिस्कशन, वो लेवल पे रिहर्सल, हम लोग पहले रिहर्सल करते थे, फिर रिहर्सल म्यूजिक हॉल में रिहर्सल हुआ करती थी, फिर स्टूडियो में जाते थे, फिर वहाँ म्यूजिशियन के साथ पूरा गाना खड़ा रह के गाना।
0: रिहर्सल फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है।
1: जी,
0: तो उस जमाने में आप लोग कितने घंटे रिहर्सल किया करते थे, कितने दिन तक? हालांकि आपने थोड़ा सा इसका संकेत दिया है, एक गाने
1: जी
0: के
1: जी
0: बारे में बताया है।
1: जी कोई गाने ऐसे होते थे जैसे अभी मैंने बताया वैसे, तो उसमें मैंने सुना है लता दीदी भी रिहर्सल के लिए जाया करती थी, जैसे हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे सज्जाद करके, वो बहुत कड़क माने जाते थे, और उनको बड़े बड़े सिंगरों को, मंझे हुए आर्टिस्ट को भी जब रिहर्सल की ज़रूरत पड़ती थी, तो मैं तो एकदम नई थी, मैं तो चाहती थी कि मुझे रिहर्सल कराएं, और रिहर्सल होता था, बाकायदा होता था।
0: तो चलिए इसी बात पर एक अब हम रिहर्सल रूम से बाहर आते हैं
1: और
0: और एक आपकी पसंद का और गाना सुनते हैं। आप बताइए कौन सा गाना सुनवा रहे हैं आप?
1: अभी आप सुनिए फिल्म घराना का गाना सुनिए, दादी अम्मा मान जाओ।

0: दादी अम्मा मान जाओ भाई। कमल जी, आपने इस बहाने इस गीत के जरिए दादी अम्मा को मनाने का एक सूत्र जो है वो
1: जी,
0: बहुत सारे लोगों के हाथ में पकड़ा दिया कि अगर दादी माँ रूठी है तो ये
1: तो
0: गाना
1: कैसे मनाया जाए उनको, है कि नहीं?
0: सुना। इस गाने से जुड़ा कोई रोचक वाक्या हो तो बताइए।
1: नहीं, क्या हुआ, जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो आपको जैसे मैंने बताया, आशा मेरी बहुत अच्छी सहेली है, रिहर्सल के लिए साथ में गई थी, तो मैंने ऐसे रास्ते मजेदार एक वाकया सुनाती हूँ। मैंने कहा देख, मुझे मंडी जाना

0: है अपना अहमदाबाद में एक कॉलेज का फंक्शन है, तो कहती है तेरे साथ कौन चल रहा है, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो मैंने कहा मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे साथ शायद कोई फैमिली मेम्बर चलेगा, मैं चलूँ? मैं कहा तू कैसे चल सकती है, तू तो इतनी मशहूर सिंगर है, तुझे सब पहचानेंगे। कहने लगी नहीं चलते, मज़ा आएगा, मैं कोकिला बन बहन बन के आऊँगी। यकीन मानो मेरे साथ आई, उस जब इतनी बड़ी कॉलेज में फंक्शन में मैं गा रही हूँ, मेरी किताबें लेके बैठी हैं। अब बोली आज कैसे, ये माहौल कैसा था, है कि नहीं मज़ेदार।
1: बिल्कुल
0: और किसी ने पहचाना भी नहीं, वो ऐसे चुपचाप बैठी रही, मुझे हंसी भी आए और मुझे बोलती रहती चुप बोल बोलो मत तुम। तो उतने में गुजरात के बड़े मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अविनाश व्यास आए और उन्होंने देख के बोले आशा तुम यहाँ? फौरन प्रिंसिपल, कॉलेज स्टूडेंट, सबको पता लग गया आशा भोसले बैठी है। बड़ा मजा आया, लेकिन ये आजकल मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है,
1: और आपकी ये दोस्ती उतनी ही
0: अभी भी
1: बनी है।
0: कायम है।
1: अच्छा,
0: जी हाँ
1: तो अब जब आप आती हैं तो मिलती हैं अपने पुराने दोस्तों से, जो मतलब जो भी आपके
0: बिल्कुल
1: फील्ड के
0: बिल्कुल,
1: लोग हैं।
0: वही हमारे वही ग्रुप है बस जिसके साथ ये यात्रा शुरू की थी, बिल्कुल अभी तक वही फ्रेंडशिप है। बहुत अच्छे लोग हैं, मुश्किल से जिंदगी में अच्छी कहते हैं ना मित्रता मिलती है।
1: कमल जी, मैं समझता हूँ कि मातृभाषा तो आपकी गुजराती है,
0: जी
1: लेकिन अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो हिंदी गानों की बात हो रही है, तो
0: जी
1: हिंदी से हटकर भी आपने दूसरी भाषाओं की फिल्मों के लिए गीत गाए।
0: जी मैंने गुजराती फिल्म के लिए गाना गाया, फिर अपना भोजपुरी, पंजाबी, और गुजराती फिल्म के लिए तो मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 साल के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर्स का अवार्ड मिला।
1: अच्छा,
0: जी हाँ, फिल्म बनी थी लीलूड़ी धरती, फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म इन गुजराती, जिसका म्यूजिक पुरुषोत्तम उपाध्याय ने दिया था। और उसका एक गाना था मारू नाम पाड़ियों छे संतूरंगीली। अब ये गाना जब बजता था तो कहते हैं लोग कॉइन फेंकते थे,
1: अच्छा,
0: इतना मशहूर हुआ था ये गाना।
1: लेकिन एक चीज है,
0: जी
1: आपने तो हमारी प्यास जगा दी और अधूरी दी, आपने सिर्फ एक लाइन गुनगुनाई है। अच्छा, वैसे बहुत अच्छा लगा,
0: अच्छा लगा
1: और बहुत देखिए ऐसा है कि
0: चलो
1: मीठी और मधुर आवाज वो कहीं भी गूंजे वो गानों में
0: बहुत बहुत
1: रस
0: शुक्रिया।
1: हमेशा घोलेगी। कमल जी, ऐसा कहते हैं कि गीतकार के शब्द, संगीतकार की अच्छी धुन, गायक गायिका की आवाज जो है एक गीत को अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। आप इस बारे में क्या कहेंगी?
0: नहीं बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि क्या होता है कि जब सिचुएशन के मुताबिक कवि लिखता है तो म्यूजिक डायरेक्टर उसको सोच समझ के कि भाई ये शब्द कैसे हैं, अगर उसमें पैथोस हैं तो ऐसे रागों का इस्तेमाल होता है जो उन चीज़ों को उभार के ला सके। और जब फिर वो गाना बन जाता है तो वो कलाकार के सामने रखा जाता है, फीमेल प्लेबैक सिंगर के सामने या मेल प्लेबैक सिंगर के सामने, और वो फिर समझ के इसको अपनी एक ऐसी अनोखी अदा से गाता है कि वो जिस अंदाज से गाना लिखा गया है उसका
1: जी
0: मकसद पूरा होता है,
1: जी
0: और ये आना चाहिए तभी
1: जी
0: जाके गाने की सफलता हो सकती है।
1: तो जब आपने गायन के क्षेत्र में कदम रखा, रियाज कितने घंटे किया करती
0: अच्छा,
1: थी?
0: शुरू में क्या हुआ था कि मेरा कोई रियाज नहीं था, मेरी एक रॉ आवाज़ थी, और शायद वो क्वालिटी की क्लियर कट आवाज़ है, एकदम सीधी सादी आवाज़ है, उसमें कोई वो बात नहीं थी।
1: जी
0: तो मुझे कहा गया कि आप अभी उसमें कुछ गुरु से शिक्षा लो, तो मेरे पहले गुरु थे अब्दुल रहमान खान साहब, उनसे थोड़े दिन सीखने

0: रॉ आवाज़ थी, और शायद वो क्वालिटी के क्लियर कट आवाज़ है, एकदम सीधी सादी आवाज़ है, उसमें कोई वो बात नहीं थी। तो मुझे कहा गया कि आप अभी उसमें कुछ गुरु से शिक्षा लो। तो मेरे पहले गुरु थे अब्दुल रहमान खान साहब, उनसे थोड़े दिन सीखने के बाद पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले आए, उन्होंने कण मुरक का एक अभ्यास कराया कि जो आवाज़ कैसे मुलायम होती है, उसमें लोच कैसे आती है, ये सारी बातें बताई। उसके बाद आए ताज अहमद खान साहब, जो कि गज़लों के बड़े माहिर थे, और कल्याण जीवे का कहना ऐसा था, वो मेरे रियाज में बहुत दिलचस्पी लेते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था फिल्म लाइन में। तो वो कहते थे कि हमें क्लासिकल सिंगर पूरा नहीं बनना है, तो इस टाइप की सिंगिंग के लिए एक ख़ास रियाज चाहिए। तो कभी कभी मेरे रियाज में आके वो बैठते थे। तो ताज अहमद खान साहब ने मुझे वो बात सिखाई, और इन ये सब, और उसके बाद एक गुरु आए थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेरे पे, खान साहब गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब। तो इन सब के आशीर्वाद से जो कुछ पाया हमने, वो आपके सामने हाजिर है। मेरा एक गाना ऐसे आया था कि मैं शाम को गेस्ट्स को एंटरटेन कर रही थी, और एन दत्ता साहब का मैसेंजर आ गया कि भाई आप रात को 7 बजे एक गाना होने वाला है, फिल्म बादशाह का। गाना भी बहुत अच्छा था, आशा जी गाने वाली थी।
1: अच्छा।
0: वो भी जानती हैं, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो गाना तो उनको दूसरे दिन पिक्चराइज करना था। तो क्या है कि ऐसा है कि जैसे एग्ज़ाम के लिए आप हर वक्त तैयार रहो, हाँ, वो मूड भी बना लो, वो आवाज़ भी अच्छी रखो, वो म्यूज़िक डायरेक्टर के गाइडलाइन में आप गाओ, और ये सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था। वो गाना हुआ, आज हमको हंसाए ना कोई, आज रोने को जी चाहता है। और ये गाना मैं यहाँ इसका स्पेशल जिक्र करूँगी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी, तो आपका ये रेडियो स्टेशन जब कुछ मॉर्निंग पीरियड के बाद गाने बजाता है ना, तो इस गाने से उन्होंने शुरुआत की थी।
1: अब मैं एक सवाल, हालांकि पहले सोचा कि पूछूं ना पूछूं आपसे, लेकिन लग रहा कि पूछ ही लेना चाहिए। वो ये कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के बाद, एक गाने के लिए आपको, मतलब कलाकार को कितने पैसे मिल जाया करते थे?
0: मुझे 300 रुपये मिलते थे। उस जमाने में जब लता जी को 500 या 600 मिलते थे, तो हमको आधे मिलते थे, और बड़ी खुशी से हम ले लेते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, अब ये आपको ताज्जुब होगा, कि गाना हो गया, एक मेरा और आशा का ड्यूट था, और मैंने ड्यूट्स ज़्यादा गाए हैं, तो हम लोग बाहर आ गए, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, तो बेचारे वो प्रोड्यूसर भागे भागे आए, दोनों के हाथ में एक एक लिफाफा दे दिया, और कहा कि कुछ नहीं है आपका, बस कहते ना पेट्रोल मनी है ना, हम उससे, हमें कोई खेद होता था ना खुशी इतनी कि भाई हमको क्यों कम पैसे दिए गए। आई थिंक पैसों का इतना उस ज़माने में नहीं, अहमियत इतनी नहीं थी, बनिस्बत के गाना अच्छा मिले।
1: ये एक जो सेटिस्फेक्शन, जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की जिसकी हम बात करें, मैं समझता हूँ कि हर कलाकार में, आप ही क्या, सभी के मन में इस किस्म की चीज़ हुआ करती थी। तो आपने अंदाजन कितने गीत गाए होंगे?
0: मैंने तकरीबन 300 फिल्मों में गाने गए हैं।
1: अच्छा
0: जी।
1: और मेजर ब्रेक जिस फिल्म के हिसाब से आपको मिला, वो कौन सी थी?
0: सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेरा पारसमणि का हंसता हुआ नूरानी चेहरा बड़ा, कहते हैं ना, टॉप पे रहा काफ़ी दिनों तक। और यहीं नहीं, जहाँ भी मैं गई, मुझे इस गाने से लोगों ने बड़ा पहचाना। जैसे लंदन गई मैं, हॉलैंड गई, ईस्ट अफ्रीका गई मैं, जिम्बाब्वे गई, तो कहते थे आपका ये गाना तो रेडियो स्टेशन से हमेशा बजता है।
1: और चूंकि आपने कहा है कि आपने डुएट बहुत ज्यादा गाए हैं, ये गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ है और रेडियो से भी बजता रहा है, तो आज एक बार फिर से क्यों ना रेडियो से
0: जरूर सुनाइए।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 हुए हैं। हम उपस्थित हैं आज की दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवाओं का मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: शिखर पर पहुंचना काबिलियत की बात है, लेकिन शिखर पर पहुंचकर भी अपनी ज़मीन याद रखना असल शख्सियत की बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रचा।
1: और मैं हूँ अश्मिता। ऋचा, आज का दिन इतिहास के पन्नों में एक बहुत बड़ा, बेहद खास और प्रेरणादायक दिन है।
0: बिल्कुल अश्मिता, आज 19 मई है और आज हमारे इस सफ़र में चर्चा के लिए एक नहीं बल्कि कई बेहद महत्वपूर्ण विषय हैं। आज हम बात करेंगे खेल भावना को सलाम करने वाले विश्व फेयर प्ले दिवस यानी वर्ल्ड फेयर प्ले डे की। याद करेंगे हिंदी साहित्य की पुरोधा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, उनकी पुण्यतिथि पर, और साथ

0: ही देश के एक ऐसे महान राजनेता की जयंती मनाएंगे जिनका पूरा जीवन सादगी और सिद्धांत की एक जीती जागती मिसाल रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी की।
1: सही कहा आपने ऋचा, यानी आज का कार्यक्रम ज्ञान, प्रेरणा और यादों का एक खूबसूरत गुलदस्ता होने वाला है। और हाँ दोस्तों, सिर्फ बातें ही नहीं होंगी, इस सफर में हम आपके लिए बेहतरीन गीत संगीत का तड़का भी लगाते रहेंगे और कार्यक्रम के अंत में आपको कुछ बेहद रोचक तथ्य भी बताएंगे जो यकीनन आपका दिन बना देंगे।
0: कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले क्यों नश्मिता अपने श्रोताओं को एक गाना सुना दिया जाए?
1: बिल्कुल ऋचा,
2: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म ये जवानी है दीवानी, रेखा भारद्वाज, विशाल दंदरानी की आवाज़ में ये गीत। तो चलिए बिना देर किए आज की इस खूबसूरत शाम की शुरुआत करते हैं नीलम संजीव रेड्डी जी की उस प्रेरणादायक यात्रा से, जहां हम स्कूल या कॉलेज में होते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि क्या बिना किसी गॉडफादर या बिना बड़ी सिफारिश के शीर्ष पर पहुंचा जा सकता है। रेड्डी जी का जीवन इस बात का सबसे बड़ा और तार्किक जवाब है। उन्होंने छात्र राजनीति से शुरुआत की और देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने रचा। उनकी पूरी यात्रा में मुझे तो सबसे लॉजिकल और इंस्पायरिंग बात लगती है वो है उनकी लीडरशिप का इवोल्यूशन। वो केवल 25 साल की उम्र में आंध्र प्रदेश प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बन गए थे, यानी आज के युवाओं की उम्र में वे बड़े फैसले ले रहे थे।
0: और सिर्फ इतना ही नहीं अश्मिता, उनके नाम एक ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज है जो भारतीय राजनीति में आज तक कोई दूसरा नहीं दोहरा पाया। वह भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अनअपोज्ड चुने गए थे।
1: ये बात बहुत गहराई रखती है ऋचा। आज के दौर में जहाँ एक छोटे से कॉलेज इलेक्शन या पंचायत चुनाव में भी इतना मुकाबला और तनाव होता है, वहाँ देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए सभी राजनीतिक दलों का एक नाम पर सहमत हो जाना, ये दिखाता है कि उनका कद और उनकी ईमानदारी पर किसी को कोई शक नहीं था।
0: बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण बात जो आज के युवाओं को जरूर जाननी चाहिए वो है उनकी सादगी। जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन के वैभव के बीच रहने के बावजूद अपनी सैलरी में 70% कटौती की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि एक विकासशील देश के राष्ट्रपति के रूप में उन्हें इतनी बड़ी रकम की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आगे हम और इन पे बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनवाते हैं एक और प्यारा सा ट्रैक।

0: दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे फिल्म रांझना से जावेद अली की आवाज़ में ये गीत।
1: ऋचा, हम बात कर रहे थे रेड्डी जी के बारे में, यानी मिनिमलिज्म और सिंपल लिविंग की जो बात आज हम सोशल मीडिया पर करते हैं, उन्होंने उसे दशकों पहले असल जिंदगी में जीकर दिखाया था। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के एक छोटे से हिस्से का ही इस्तेमाल किया और बाकी को जनता के लिए सुलभ बनाए रखा।
0: उनका कार्यकाल 1977 से 1982 भी भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही परीक्षा का समय था। उस दौरान देश ने कई राजनीतिक उथल-पुथल देखी। तीन अलग-अलग प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने काम किया और हमेशा संविधान को सर्वोपरि रखा।
1: तो दोस्तों, उनके जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि जब आप शिखर पर पहुंच जाएं, तब भी अपनी जमीन और सादगी को कभी मत भूलिए। चलिए, इसी खूबसूरत सोच के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक बेहतरीन गाना, जिसके बाद हम रुख करेंगे विश्व फेयर प्ले दिवस के बारे में।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म जब भी मेट से आओ मिलो चलो, शान उस्ताद सुल्तान खान की आवाज़ में। इस खूबसूरत गाने के बाद हमारे आज के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले बेहद ख़ास और दिलचस्प विषय की ओर। दोस्तों, आज 19 मई को दुनिया भर में विश्व फेयर प्ले दिवस यानी वर्ल्ड फेयर प्ले डे मनाया जा रहा है।
1: बिल्कुल अश्मिता, और जब भी हम फेयर प्ले यानी निष्पक्ष खेल की बात करते हैं तो जहन में सबसे पहले खेल का मैदान और वहाँ का रोमांच आता है। लेकिन यह दिन हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है, वो ये कि खेल सिर्फ ट्रॉफी जीतना या स्कोर बोर्ड पर आगे रहना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि खेल को पूरी ईमानदारी, मर्यादा और सही नियमों के साथ खेलना ही सबसे बड़ा मेडल होता है।
0: बिल्कुल रिचा, आज के इस दौर में जहाँ हर तरफ सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह जीत जाने की अंधी होड़ मची है, वहाँ ये दिन हमें असली खेल भावना का महत्व समझाता है। अपने सामने वाले खिलाड़ी को कमतर ना समझना, उसका सम्मान करना, अंपायर या रेफरी के फैसलों को सिर माथे रखना और बिना किसी शॉर्टकट या चीटिंग के मैदान पर पसीना बहाना ही असली फेयर प्ले है।
1: सही बात कही आपने अश्मिता। इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब किसी खिलाड़ी ने जीतने का मौका होते हुए भी सिर्फ इसलिए खेल रोक दिया क्योंकि सामने वाला खिलाड़ी चोटिल था। इतिहास ऐसी ही महान शख्सियत को याद रखता है जो अपनी जीत से नहीं बल्कि अपने ऊंचे चरित्र से महान बनते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि फेयर प्ले का यह सबसे खूबसूरत नियम सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए।
0: वाह, ये तो आपने बहुत ही गहरी और पते की बात कही है ऋचा। अगर हम इस फेयर प्ले को अपनी असल जिंदगी में भी लागू कर दें, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, हमारा करियर हो या फिर हमारे आपसी रिश्ते, अगर हम वहाँ भी ईमानदारी और सही तरीकों का इस्तेमाल करें तो हम बिना किसी को गिराए खुद आगे बढ़ सकते हैं। किसी को हरा कर जीतना तो आम बात है, लेकिन सबको साथ लेकर चलना ही आपको जिंदगी के हर मैदान का सच्चा विनर बनाता है।
1: बिल्कुल अश्मिता, जब नीयत साफ हो और खेल निष्पक्ष हो तो हार में भी एक अलग ही सुकून और गरिमा होती है। तो चलिए दोस्तों, इसी सच्ची ईमानदारी और सकारात्मक खेल भावना को अपने भीतर जगाते हैं और जिंदगी के इस खूबसूरत सफर में खोलते हैं संगीत की थोड़ी और मिठास। अश्मिता, सुनते हैं आज का अगला ट्रैक।
0: बिल्कुल रचा।

0: बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: दोस्तों, आज की तारीख यानी 19 मई इतिहास के पन्नों में एक बेहद खास और आदरणीय नाम के साथ दर्ज है।
4: दोस्तों, आज के दिन हिंदी साहित्य जगत के महान विद्वान और लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुण्यतिथि है। उन्होंने हिंदी को सिर्फ लिखना ही नहीं बल्कि हिंदी को जीना भी सिखाया।
3: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के महान निबंधकार, उपन्यासकार और आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की।
4: दोस्तों, जब हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में सोचते हैं

0: तो सबसे पहले क्या याद आता है? एक ऐसा व्यक्तित्व जो जितना गंभीर थे उतना ही सरल और उदार।
1: उत्तर प्रदेश के बलिया के एक छोटे से गांव दुबे का छपरा से शुरू हुआ उनका सफर उन्हें रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन तक ले गया।
0: वहाँ गुरुदेव के सानिध्य में रहकर उनके भीतर जो ज्ञान वक्तवाद पनपा, उसने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी।
1: बिल्कुल सही कहा ऋचा। कहते हैं कि उन पर संत कबीर का ऐसा गहरा असर था कि वे खुद भी मस्त मौला और फक्कर मिजाज के थे। उनके जीवन में या उनके चिंतन में कभी किसी के लिए कड़वाहट नहीं रही।
0: हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की लेखनी में इतिहास भी थी और गजल, गजब की कल्पना भी। अगर आपने अपने स्कूल या कॉलेज की किताबों में उनकी रचनाएं पढ़ी हैं तो आपको आपको वो जादू जरूर याद होगा।
1: बिल्कुल ऋचा, जैसे कि बाणभट्ट की आत्मकथा, ये एक ऐसा ऐतिहासिक उपन्यास जो हमें हमारी जड़ों और सांस्कृतिक गौरव से जोड़ता है।
0: और दोस्तों, अशोक के फूल और कुडके थे, उनके निबंध सिर्फ पेड़ों या फूलों पर नहीं है। दोस्तों, कुटज्ञ हमें सिखाता है कि जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपराजेय इच्छा शक्ति के साथ कैसे जिया जाता है।
1: आलोक पर्व इस बेहतरीन निबंध संग्रह के लिए उन्हें 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। और हाँ, साहित्य में उनके इसी बेमिसाल योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था।
0: तो दोस्तों, आज सोशल मीडिया और रील के इस दौर में, जब हम अक्सर गहराई को भूलकर सस्ती चीजों के पीछे भागते हैं, तब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य हमें एक कर सोचने की वजह देता है।
1: वे कहते थे कि साहित्य का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का कल्याण है, मनुष्यता को जगाना है। तो दोस्तों, आज उनकी पुण्यतिथि पर क्यों ना हम रील्स स्क्रॉल करने के बीच थोड़ा सा वक्त निकालें और उनकी लिखी हुई एक कहानी, कोई एक निबंध या कुटज की कुछ पंक्तियां जरूर पढ़ें। यकीन मानिए, आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस होगी।
0: हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को युववाणी और हमारी पूरी युवा टीम की ओर से भावभीन श्रद्धांजलि। चलिए, युववाणी के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये अगला खास ट्रैक।

0: तो इसको अभी आप सुन रहे थे शान सांतनु मोइत्रो की आवाज़ में थ्री इडियट्स से ये सॉन्ग।
1: दोस्तों वक्त हो चला है मनोबल मंगलवार का और हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रेरक कहानी।
0: दोस्तों हमारी कहानी का शीर्षक है बाज की उड़ान और मुर्गियों का झुंड।
1: एक बार एक पहाड़ी की चोटी पर एक बाज का घोंसला था जहां उसने चार अंडे दिए थे।
0: एक दिन भूकंप आया और उन अंडों में से एक अंडा नीचे लुढ़क कर पहाड़ी के नीचे रहने वाली एक मुर्गी के घोंसले में जाकर गिर गया।
1: मुर्गी ने उस अंडे को भी अपने अंडों के साथ पालना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद अंडा फूटा और उसमें से एक सुंदर बाज का बच्चा निकला। वह बच्चा उसी मुर्गी के घोंसले में पला बढ़ा।
0: वह वही सब करता जो बाकी चूजे करते थे। मिट्टी में कीड़े ढूंढता, दाना चुगता और मुर्गियों की तरह ही कुछ फीट ऊपर तक फरफराकर रुक जाता। वह पूरी तरह मान चुका था कि वह एक मुर्गी ही है।
1: एक दिन उसने आसमान में एक बेहद खूबसूरत पंछी को बहुत ऊंचाई पर बिना पंख हिलाए शान से उड़ते हुए देखा। उसने गर्व से पूछा, वह कौन सा शानदार पंछी है?
0: पास खड़ी मुर्गियों ने कहा, ओह वह बाज है, वह आसमान का राजा है, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम तो एक मुर्गी हो।
1: बाज के बच्चे ने बिना सोचे समझे मुर्गी की बात मान ली। उसने कभी अपनी असली क्षमता को आजमाने की कोशिश ही नहीं की। वह जिंदगी भर मुर्गियों की तरह जिया और एक दिन मुर्गी की तरह ही मर गया।
0: दोस्तों

0: हम वही बनते हैं जो हम मान लेते हैं। इस कहानी से युवाओं के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि हमारे आसपास का माहौल, समाज या कुछ लोग अक्सर हमारी क्षमताओं को सीमित करने की कोशिश करते हैं। वे अपनी सीमाओं को हमारी सीमा बना देते हैं।
1: यदि आपके पास आसपास छूने के पंख, तो सिर्फ इसलिए जमीन पर मत रेंगिए क्योंकि आपके आसपास के लोग उड़ना नहीं जानते। अपनी काबिलियत को पहचानिए, खुद पर भरोसा रखिए और अपनी सोच का दायरा मुर्गियों के घोंसले से बाहर निकालकर आसमान की तरफ ले जाइए। आपकी पैदाइश बाज की तरह राज करने के लिए हुई है, साधारण जीने के लिए नहीं।
0: दोस्तों, आगे हम बात करेंगे और भी सारी चीज़ों पे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा ट्रैक।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल से सुखविंदर सिंह सपना अवस्थी की आवाज में ये गीत।
1: दोस्तों आज के रोचक तथ्य में हम जानेंगे वर्षा देश पांडे जी के बारे में।
0: संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित हुई एडवोकेट वर्षा देश पांडे ने महाराष्ट्र में लिंग आधारित जेंडर सिलेक्शन और महिलाओं के अधिकारों के लिए 3 दशकों से ज़्यादा समय तक लड़ाई लड़ी।
1: बिल्कुल ऋचा, उनके दलित महिला विकास मंडल के जरिए किए गए जमीनी काम ने निजी दुख को जवाबदेही और न्याय के आंदोलन में बदल दिया। दोस्तों डॉक्टर सोनाली घोष IUCN केंटन मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी। काजीरंगा की रक्षक कहलाने वाली डॉक्टर सोनाली घोष का कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन मॉडल दिखाता है कि जंगल पर निर्भर समुदायों को अलग किए बिना जंगलों की रक्षा कैसे की जा सकती है।
0: यह समावेशी संरक्षण के लिए एक ग्लोबल बेंचमार्क स्थापित करता है। दोस्तों कार्यक्रम में जानेंगे और भी कुछ, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा ट्रैक।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म स्वदेश से उदित नारायण की आवाज में ये गीत। दोस्तों, अब वक्त हो चला है जॉब अपडेट का। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के 37 पदों पर आवेदन मांगे हैं। आयोग उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर 29 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी योग्यता है न्यूनतम 60% अंकों के साथ सिविल इंजीनियरिंग में एमई या एमटेक की डिग्री हो, साथ ही पीएचडी हो। इसकी आयु सीमा है अधिकतम 45 वर्ष से कम हो। भारतीय वायुसेना ने सिविलियन के 47 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सभी नियुक्तियां ग्रुप सी के तहत वायुसेना के विभिन्न स्टेशनों, यूनिटों पर की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए डाक से आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि है 1 जून 2026। इसकी योग्यता है 12वीं पास हो, कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति हो। आज हमने बहुत सारी बातों पे चर्चा की और बात करते करते समय का पता ही नहीं चला।
1: जी बिल्कुल ऋचा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज का हमारा युवाणी कार्यक्रम आप सबको पसंद आया होगा।
0: दोस्तों, अब अपनी रेडियो दोस्त ऋचा
1: और मैं अश्मिता,
0: को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक नए जोश, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए आपका और मेरा मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

युववाणी, अभी आप ये युवाओं का मन पसंदीदा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं मगही कार्यक्रम मागधी।

सब सुनिहार के निलाद्री के प्रणाम। आ आय हन मंगल हमनी प्रस्तुत हियन अपने लेल मागधी कार्यक्रम के लेके। जैसे रोज बतबहियन आई की प्रसारित करबन, तो सबसे पहले हमें बता दहियन कि आई कौन ची पर हमनी निमन निमन बात करबे आ खूब मधुर मधुर लोकगीत सुनबे। आय है जमशेदजी टाटा के पुण्यतिथि, हिनकर पर बातचीत करबे। आ आय है विश्व IBD दिवस, एकरा पर बात करबे। सुनबे लोकगीत अन्नपूर्णा कुमारी से आ साथे साथ एगो कविता पाठ सुनबे जयप्रकाश पुजारी से। तो देर नहीं करे हम श्रोता बंधु, सबसे पहले तो हमने जानिए कि IBD कह है केकरा। ई जे है ने पेट में तनी सूजन हो जा है, आ जब सूजन हो जा है तो पेटवा गड़बड़ा जा है, गड़बड़ा जा है तो एकरे कह है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। जैसे एगो क्रोन रोग होबा है आ बेसी गैस उस बने लगल तो घाव नियन हो जा है, तो ओकरा भी अल्सरेटिव कोलाइटिस कह है। तो ई दिन के उद्देश्य जे है एकर मुख्य चीज है कि लोगन में एकरा संबंध में जागरूकता फैले। आई हर साल 19 मई के होवा है, ता सब साल एकर

थीम रहा है अबड़ी एकर थीम है आईबीडी के कोनो सीमा नहीं है देखभाल तक पहुँचथिन। आईबीडी जे है हमने के जो पाचन तंत्र है एकरा में होवे वाला सूजन और जलन से जुड़ल बीमारी के एगो समूह है। माने कैगो न चीज मिल के बीमारी होवे है एकर जो सामान्य लक्षण है ओकरा में लगातार दस्त होना पेट में ऐठन थकान ऐसा चीज देखे में आवे है। तो ई दिन के जो लक्ष्य है उ लोगन के ई बीमारी के प्रति जागरूक करना जैसे उ पेट से जुड़ल समस्या के समान समझ के नज़रअंदाज नहीं करथिन और समय पर इलाज करा सकथिन। ई दिन दुनिया भर में 50 से बेसी देश के रोगी समूह एकजुट होब हथिन और समर्थक के प्रतीक के रूप में बहुते महत्तम इमारत के बैगनी रंग से रंग के रोशन कर हथिन। बातचीत तो जारिये रहते अभी हमने सबसे पहने चूंकि कार्यक्रम के पहल गीत है तो भगवान भक्ति के भजन रहे तो बड़ी निमन लगे है। हमने देवी गीत सुनिए कलाकार हथिन अन्नपूर्णा कुमारी।

0: रथ डोलत जाय, हमर देवी जी रथ पर उ विराजमान रहथिन, कैसन भव्य मनोहर दृश्य होते। आइए जमशेद जी टाटा के पुण्यतिथि भी है। जमशेद जी टाटा के निधन 19 मई 1904 में हो गलन हल। ये भारत के महान उद्योगपति और विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराना टाटा समूह के संस्थापक हलखिन। गुजरात के एगो कस्बा नवसारी में हिनकर जन्म होलन हल। पिता के नाम नौशेरवा जी आ माता के नाम जीवनबाई टाटा हलन। तनी बड़ होलखिन तब बम्बई आके व्यवसाय में कमे उम्र से अपन पिताजी के हाथ बटावे लगलखिन। एलफिंस्टन कॉलेज में जखनी पढ़ हलखिन त हीराबाई देवू से ही ब्याह करलखिन। 1868 में 21,000 रुपया से एगो तेल कंपनी हले जे दिवालिया हो गल हल तो ओकरा किन ललखिन आ नागपुर में रुइया के कारखाना लगेलखिन। ओकर बाद इम्प्रेस मिल लगेलखिन, टाटा स्टील नियन उद्योग के स्थापना करलखिन, जे हमनी के देश के रीढ़ साबित होले। आज टाटा समूह जे है सुइया से लेकर हवाई जहाज तक, निमक बिस्कुट कॉस्मेटिक चाहे भाई सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर है की नहीं बनावे, तो हर तरह के सामान निर्मित करके देश के विकास के सहयोगी बनल हथिन, रोजगार बढ़ा रहलखिन हैं आ अपन विश्वसनीयता पूरे विश्व में कायम कैने हथिन। तो अब हम बढ़िए आगू आ सुनिए एक कविता पाठ आय के कवि हथिन जयप्रकाश पुजारी।
1: मगध गौरव गीत गावे थी।

गुरुनाथ में धन लक्ष्मी वरदान, भोल भाई रामे राम रामे राम हो भाई, हमर मगह भूखल के खियाव है, भोल भाई रामे राम हमर मगह भूखल के खियाव है। अनपढ़ के तो सब पढ़ावे, दे दे ज्ञान विज्ञान। अन

हई बोला भाई रामे राम, हमर मगह पढ़ल के पढ़ाव हई। परम पवित्र गया गजाधर पुरखन सबके तारे, परम पवित्र गया गजाधर पुरखन सबके तारे। पाप ताप संताप हरे अगला जन्म सुधारे, पाप ताप संताप हरे।

हई बोला भाई रामे राम, हमर मगह दाल के टाल लगावा हई। राजगीर मलमास के मेला देवन के राजधानी, राजगीर मलमास के मेला देवन के राजधानी, पाटलिपुत्र अशोक बसैले।

अवहई बोल भई रामे राम हमर मगह प्रेम के दियरी जरा वही। अब हमर दूसरका गीत है मैया के पुकार है, गंगा मैया के पुकार, गंगा मैया के पुकार, अगे गीत है।

मुनि सब हथिन लाचार का देव का ऋषि मुनि सब हथिन लाचार चीर हरण हो रहल गंगा के मचल है हाहाकार। चीर हरण हो रहल गंगा के मचल है हाहाकार। लाजे गंगा मुंह तोप के लाजे गंगा मुंह तोप के सह रहल बेपानी। जग के प्यास बुझावे वाली गंगा मांगे पानी। जग के प्यास बुझावे वाली

जग के प्यास बुझावे वाले, का कहे केकरा से कहे, का कहे केकरा से कहे, अपन राम कहानी जग के।

जग के प्यास बुझावे वाली। अब हमार मगह गीत के तीसरा गीत है माई के दर्द घर के बंटवारा। माई के करेजा सौसे, माई के करेजा।

अरे घर अंगना कटहर नियर, घर अंगना कटहर नियर, बाट ले बेटा रे घर अंगना कटहर नियर, बाट ले बेटा रे घर अंगना कटहर नियर, धन ले धर्म ले डूबा देले बंस रे, धन ले धर्म ले डूबा देले बंस रे, एक रास नीमन हम रहती निर्वंश रे, एक रास नीमन हम रहती निर्वंश रे, दूध पी के मैया के, दूध पी के मैया के छाट देले बेटा रे घर अंगना कटहर नी।

0: से जीते जिंदगी पाथर से, पाट दिल बेटा रे घर अंगना कटहर नियर, बाट ले बेटा रे घर अंगना कटहर नियर, बाट ले बेटा रे घर अंगना कटहर नियर, बाट ले बेटा रे बेटा।
1: हाँ, तो बड़ा मैंने मन लायक कविता सुन

एलखिन जय प्रकाश पुजारी जी, हिनका दहियन धन्यवाद। आ कार्यक्रम में अब हमनी आगू बढ़िए। 19 मई 1913 के हमनी के छठा राष्ट्रपति जे हलखिन नीलम संजीव रेड्डी, हुनकर जन्म होलन हल। ई भारत के छठा राष्ट्रपति हलखिन। आंध्र प्रदेश के कृषक परिवार में जन्मल नीलम संजीव रेड्डी के छवि कवि, अनुभवी राजनेता आ कुशल प्रशासक के हलन। हिनकर सार्वजनिक जीवन उत्कृष्ट हलन। सन 1977 के आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी के पराजय होले, तो उस समय नवगठित राजनीतिक दल जनता पार्टी हिनका राष्ट्रपति के प्रत्याशी बनेलखिन। ई भारत के पहला गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति हलखिन। अक्टूबर 1956 में आंध्र प्रदेश के पहला मुख्यमंत्री बनलखिन। फिर 1962 से 1964 तक भी ई दोबारा मुख्यमंत्री बनलखिन। 1959 से 1962 तक ई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम करलखिन। आ हिनकर 1 जून 1996 में बंगलोर में हिनकर मृत्यु हो गलन। अब हमनी के खिस्सा गलवात तनी मनी घट गलन है, लेकिन अभी बाकी है। तो अब हमनी जतसार सुनबे। कलाकार हथिन अन्नपूर्णा।

बहुते निमन आ एकदम जे कह है ग्रामीण अथी से जे जतसार अब लुप्त होल जा है ई गीत सुनलिए आ धन्यवाद दही है अन्नपूर्णा कुमारी के। आ अब हमनी के समय ओरिया रहलन है तो हमरो विदा देथिन तब न इवन फिर जल्दी मिले ले। प्रणाम।

0: मागधी, अभी आप ये मगही कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

फिल्म संगीत आप सुनेंगे 8 बजे, 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत। कलाकार होंगे मोहम्मद असलम।

8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9 और 9:15 पर उर्दू में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजी बिहार आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। 10:30 पर पुनः आप सुनेंगे फिल्म संगीत। तो ये थी आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन।

प्रणाम, ये आकाशवाणी पटना है। अब रउआ सभे संजय सिंह से भोजपुरी में समाचार सुनी। प्रदेश में आम लोगन के समस्यान के तुरंत समाधान खातिर आज से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर के आयोजन कल गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद सारण जिला के डुमरी बुजुर्ग पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होके ई राज्यव्यापी अभियान के उद्घाटन कैले। श्री चौधरी कहले कि शिविर में मिलल शिकायतन के समाधान ज्यादा से ज्यादा 30 दिन के भीतर हर हाल में हो जाए के चाहिए। ऐसा ना कैला पर संबंधित अधिकारी 31वां दिन अपने आप निलंबित हो जाये। सहयोग शिविर में आवे वाला आवेदनन के निपटारा के प्रगति पर मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से सीधे नजर रखल जाये। उ जनता सबके सुविधा खातिर हेल्पलाइन नंबर 1100 आ सहयोग पोर्टल भी चालू कर देहल गइल बा। इस सहयोग शिविर के आयोजन हर महीना के पहला आ तीसरा मंगलवार के कइल जाई। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी पटना के दानापुर अनुमंडल के सरारी पंचायत में सहयोग शिविर के उद्घाटन कैले। एह मौका पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM समेत और दूसर वरिष्ठ अधिकारी लोग मौजूद रहे। बेगूसराय जिला के प्रभारी मंत्री सह सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव बरौनी प्रखंड के भरत उच्च विद्यालय पिपरा दिवस में सहयोग शिविर के उद्घाटन कैले। बिहार के औरी दूसर जिलवन में भी अलग अलग पंचायतन में ऐसन शिविर के आयोजन कल जा रहल बा। तेल बेचे वाली कंपनियन पेट्रोल और डीजल के कीमतन में करीब 90 पैसा प्रति लीटर के बढ़ोतरी कैले बाड़ी सा। राजधानी पटना में अब पेट्रोल के दाम 110.02 रुपया प्रति लीटर और डीजल के दाम 10.94 रुपया 97 पैसा प्रति लीटर हो गई बा।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आवे वाला 25 मई के राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक आ राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के पूर्व कुलपति डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी समेत बिहार के 3 गो विभूतियन के पद्मश्री सम्मान से नवाजी हैं। भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती के कला के क्षेत्र में उनका उत्कृष्ट योगदान खातिर पद्मश्री देहल जाई, जबकि डोमकच नाच के मुख्य धारा में लावे वाला लोकप्रिय कलाकार विश्वबंधु के मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से सम्मानित कल जाई। राज्य के ज्यादातर हिस्सा में भयानक गर्मी के हालत बनल बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक आज भभुआ और रोहतास जिला में लू के चलते जनजीवन पर बड़ असर पड़ल बा। पिछला 24 घंटा के दौरान गया जी राज्य के सबसे गर्म जगह रहल, जहां ज्यादा से ज्यादा तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज कैल गई। विभाग अपना अनुमान में कहले बा कि रोहतास भभुआ बक्सर समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सा में अगला कुछ दिन ले गर्मी से राहत मिले के कोनो आसार नहीं खे। वही जे चक्रवाती परिसंचरण बने के कारण राज्य के उत्तर वाला हिस्सा में मौसम बदले के संभावना बा। यही बीच पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य आ उत्तर पूरब के इलाका में आंधी पानी हो सकेला। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति DLED संयुक्त परीक्षा के तारीख के घोषणा कर देले बिया। समिति की ओर से जारी कैल गईल कार्यक्रम के मुताबिक परीक्षा 8 जून से लेकर 22 जून तक आयोजित कल जाय। ई परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में लिहल जाय। परीक्षा खातिर सब प्रमंडलीय मुख्यालय में सेंटर बनावल जाय। बोर्ड कहले बा कि अभ्यर्थी लोग 28 मई से अपन एडमिट कार्ड डाउनलोड क सकत बाड़े। भारतीय रेलवे 54 किलोमीटर लाम किउल झाझा तीसरी रेल लाइन परियोजना के मंजूरी दे देले बिया। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव बतौलन कि हावड़ा दिल्ली रूट पर क्षमता बढ़ावे खातिर 962 करोड़ रुपया के लागत से ई रेल लाइन बनावल जाई। ई प्रोजेक्ट पूरा भइला से यह भारी भीड़ भाड़ वाला रेल खंड पर भारी लोगन औरी मालगाड़ी सबके आवाजाही ढेर आसान औरी समय पर हो सकी। सारण पुलिस नशा मुक्त सारण अभियान के तहत जिला के अलग अलग जगहन पर छापेमारी क के भारी मात्रा में देसी और विदेशी दारू जब्त कैले बिया। इस संबंध में 14 गो तस्करण के गिरफ्तार कैल गैल बा। पूरब मध्य रेल के सोनपुर मंडल के अंतर्गत अलग अलग स्टेशनन और ट्रेनन में मेगा टिकट चेकिंग अभियान चलावल गई। इस दौरान बिना टिकट यात्रा करत लोगन से 25 लाख रुपया से ढेर के राशि जुर्माना के रूप में वसूल कैल गैल। एकरे साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक समाप्त भइल।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं तुम्हारी सुल्लू फिल्म का ये गीत गुरु रंधावा के स्वर में, जिसके संगीतकार और गीतकार हैं गुरु रंधावा।

0: बागी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर में अब संस्कृत समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओस्लो नगरे तृतीये भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं भजितवान्। यस्योद्देश्यं प्रौद्योगिकी पुनर्नवीकरणीयोर्जा रक्षा व्यापार क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकरणमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना स्वीडन देशस्य समकक्षीयेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यनेन सह संयुक्तलेखे वैश्विक अनिश्चिततावधौ सहभागितायाः विषये अवधानं प्रदत्तम्। सर्वोच्च न्यायालयेन मानव जीवनस्य सार्वजनिक सुरक्षायाः च आवश्यकताम् उल्लिखन् उन्मत्तानाम् असाध्य रोगिणाम् अथवा प्रत्यक्षतया अपायकारिणां मार्गभ्रष्ट शुनकानां कृते प्रथमवारं यूथेनेशिया माध्यमेन मृत्योः अनुमतिः प्रदत्ता। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले जयपुरे राजस्थान रॉयल्स दलं लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। तृतीयं भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलनम् अद्य नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे समारब्धम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्येतेषां समकक्षिभिः सह अस्मिन् शिखर सम्मेलने भागं स्वीकृतम्। द्वाविंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे डेनमार्क देशस्य कोपेनहेगन नगरे आयोजितस्य पूर्व शिखर सम्मेलनानन्तरं भारत नॉर्डिक देशानां मध्ये क्षेत्रीय सहकारं सुदृढीकरणम् अस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यमस्ति। तन्त्रज्ञानं नवान्वेषणं च सुस्थिरता पुनर्नवीकरणीयोर्जा डिजिटल

0: राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिनः चीनदेशस्य राष्ट्रपतिना शी चिनफिंग वर्येण सह मेलनं करिष्यति। क्रेमलिन इत्यस्यानुसारम् उभौ नेतारौ आर्थिक सहयोगस्य विषये प्रमुखेषु प्रादेशिक वैश्विक विषयेषु च चर्चां करिष्यतः। एषा यात्रा चीन रूस मैत्रीसन्धेः 25 वर्षाणाम् उपलक्ष्ये आचर्यते। एषा वार्ता तदा अभवत् यदा वैश्विक भूराजनैतिक संघर्षस्य मध्ये चीनदेशः अमेरिकादेशेन रूसदेशेन च सह स्वस्य सम्बन्धान् सन्तोलयति। युक्रेन द्वन्द्वस्य विषये पाश्चात्य प्रतिबन्धानाम् अनन्तरम् अपि चीनदेशः रूसदेशस्य बृहत्तमः वाणिज्यिक सहभागी रूसदेशस्य तैल प्राकृतिकेन्धनस्य प्रमुखः क्रेता चास्ति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायं 7:30 जयपुरे राजस्थान रॉयल्स दलं लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गुजरात टाइटन्स सनराइजर्स हैदराबाद दलानि च पूर्वमेव प्ले ऑफ क्रीडायां प्रविष्टवन्तः। मुंबई इंडियंस लखनऊ सुपर जायंट्स दले स्पर्धातः बहिः गतवन्तः। पंजाब किंग्स राजस्थान रॉयल्स चेन्नई सुपर किंग्स दिल्ली कैपिटल्स कोलकाता नाइट राइडर्स दलानि अधुनापि अंतिम स्पर्धा याम संति। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओस्लो नगरे तृतीये भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं भजितवान्। यस्योद्देश्यं प्रौद्योगिकी पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा रक्षा व्यापार क्षेत्रे सुसहकारं सुदृढीकरणमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना स्वीडन देशस्य समकक्षीयेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यनेन सह संयुक्त लेखे वैश्विक अनिश्चिततावधौ सहभागितायाः विषये अवधानं प्रदत्तम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले जयपुरे राजस्थान रॉयल्स दलं लखनऊ सुपर जायंट्स दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी।

0: नमस्कार चंपा बहन।
1: हाँ नमस्कार मी
0: प्रिया।
1: प्रिया नाम इतने दिन पर भेंट करब तो नाम तो बिसरबे करै छी।
0: और जानते हैं ये जो गर्मी है ना इसकी वजह से
1: हाँ।
0: ऐसे भी हमारा जो दिमाग है ना वो लग रहा है ना कि जैसे बहुत सारी चीजें हम भूल जा रहे हैं।
1: हाँ।
0: अभी अभी कुछ सोच रहे थे और कुछ और ही करने लगी तो फिर मैं बाद में खुद भी सोची थी मैं क्या करने वाली थी और मैं क्या कर रही हूँ। तो ये एक आम सी बात है।
1: लेकिन एहन अनदेखी केनाई ठीक
0: हाँ
1: बात नहीं
0: नहीं
1: अछि।
0: नहीं अनदेखी तो नहीं।
1: गर्मी में स्वास्थ्य के देखभाल करब बहुत जरूरी अछि। देखियौ गर्मी में स्वस्थ रहऽ के लेल स्वयं के हाइड्रेट राखी, हल्लुक एवं ढीला कपड़ा पहिरी आ रौद सब बाँची। दिन भरि मे 8 सँ 10 गिलास कम से कम पानि पीबी आ छाँछ, नारियल पानि जेहन तरल पदार्थक सेवन अवश्य करी।
0: सही बात है क्योंकि गर्मी के दिनों में आम मौसम के अनुपात में गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से पसीना निकलता है और पसीना निकलने से शरीर में जितना पानी होना चाहिए उसकी कमी होती है। पसीना निकलने के साथ ही साथ उससे हमें ये बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे तरल जो चीज़ें हैं पानी हो गया फिर मौसमी जो फल है उसे खाएं जिससे पानी की मात्रा कम मत हो।
1: जेना तरबूज, खरबूज,
0: हाँ
1: ककड़ी,
0: नारियल पानी।
1: खीरा, हाँ ई सब जे है से आहार में शामिल करके चाहिए।
0: और एक

0: एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत सारे लोगों को, मेरे खुद की भी आदत है, मैं चाय बहुत पीती हूँ,
1: हाँ
0: लेकिन लेकिन लेकिन अभी जब से गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है ना, मेरा खुद का मन नहीं होता उतना चाय पीने का।
1: नीते तो निक बात है, चाय नहीं पीवा के मन करे तो मुदा चाय जे सच में लोग के एक एहन आदत पड़ गई
0: हाँ
1: कि कनिको मन नहीं एम्हर उम्हर भेल तो कि चाय पीला नहीं पीलूँ बहुत देर से तय मन
0: कभी
1: अलसाइयो।
0: कभी ऐसा होता है ना कि खाली समय है तो लग रहा है कि क्या करे
1: हाँ
0: क्या करे, चलो चाय बना लिया, या जो लोग कॉफी पीते हैं वो कॉफी पीते हैं, और कॉफी तो और गर्म है, चाय
1: हाँ
0: भी उतना ही। और एक और महत्वपूर्ण बात कि चाय कॉफी के अलावा मीठे का सेवन, जैसे
1: हाँ
0: चीनी है उसका सेवन कम करें।
1: हाँ मीठ चीज तो ओहना अहाँ के बेसी हार्म करे छे मीठ
0: तो
1: तो ओकरा खाए के मात्रा कम राखी। आ जे मधुमेह से पीड़ित छे हुनका तो
0: हाँ,
1: नहीं खेवा के
0: नहीं लेना
1: चाहिए।
0: चाहिए। और वहीं पे खाने में, जैसे मैं तो हमेशा कोई भी मौसम हो सलाद ज़रूर खाती हूँ, और अभी तो ज़रूर से ज़रूर सलाद खाना चाहिए, और प्याज का सेवन करना चाहिए, लू से बचाता है।
1: हाँ
0: वहीं
1: देख
0: वहीं मैं तो आ रही थी तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ना, ये गर्मी है, न टोपी पहन रखा है न छतरी ले रखा है,
1: हाँ
0: ऐसे में गश्त, ऐसे में चक्कर आ जाना, ये सब आम बात
1: देखियो
0: है।
1: रौद आ गर्मी से बचाव के लिए दोपहर 12 बजे से सांझ 4 बजे धरि कोनो आवश्यक काज नहीं होए तो नहीं निकली। बाहर निकले से पहिने नीक क्वालिटी के सनस्क्रीन लगा ली चेहरा पर।
0: बहुत जरूरी है।
1: हाँ हल्लुक कपड़ा पहरी, अकर अर्थ है सूती कपड़ा, ढीला ढाला पहरे के चाहिए ताकि शरीर में हवा लगत रहे आ पसीना आसानी से सूख जाए।
0: और वहीं पे खान पान की और भी बात करें तो, जैसे बहुत तला भुना या भरा हुआ चीज, जैसे
1: हाँ
0: कि आलू भरी, सत्तू, ऐसा होता है ना कि जाड़े के दिन में हम कुछ ज्यादा ही ये सब सेवन करते हैं, तो
1: हाँ तो
0: उससे
1: ज्यादा दिन
0: हाँ
1: में पचे छे, एक और बेसियो खा ली तो
0: तो
1: पच
0: पच
1: जाए।
0: जाएगा। लेकिन गर्मी के मौसम में जितना हो सके उतना हल्का खाना, सादा खाना, और जितना हो सके तरल जो चीजें हैं वो ले, जैसे छाछ ले लिया, दही ले लिया, रायता जैसा बना दिया उसको और वो
1: हाँ
0: खा लिया, तो उससे पेट ठंडा रहता है, नारियल पानी ले लिया, तो ये सारी चीजें ना हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो उन्हें भी इन तरीके की चीज़ें देनी चाहिए, बुजुर्ग हैं उन्हें भी, और खुद के लिए तो ये ख्याल रखना ही चाहिए, क्योंकि हम महिला हैं तो हम तो अपने अलावा अपने को थोड़ा सा नज़रअंदाज भी कर देते हैं, लेकिन घर परिवार के लोगों पर पूरा ध्यान देते हैं।
1: हाँ अब घर परिवार के लोग पर ध्यान दे तो अपनों पर ध्यान देना के चाहिए।
0: और जब तक स्वयं सही नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो किसी पर ध्यान कैसे दे पाएंगे। वही अब बात करते हैं गर्मियों के मौसम में, बहुत बार क्या होता है कि साफ सफाई पे ध्यान नहीं दिया। अब साफ सफाई अगर नहीं नहीं की तो उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन का या फंगस का जो है खतरा होता है। और सुबह का खाना अगर शाम में खा लिया तो मान ले कि फ्रिज में नहीं रखा, महक जाता है, तो वो फूड पॉइजनिंग का काम करता है।
1: हाँ देखियो सब साफ सफाई के मतलब ये है नहीं है कि खाली कपड़ा साफ पहन लिया आ मुंह में अहाँ रंग बिरंग के आजकल जो चल रही आर्गेनिक वाला से लगा लिया अहाँ के घर के नीचा में आगल बगल में गंदगी पसरल है
0: वही
1: तो
0: वही
1: फिर
0: वही
1: वहाँ के शरीर के जते सफाई कैल है वो गंदगी में परिवर्तित हो जात आ
0: हाँ,
1: वैसे रोग व्याधि अहाँ के बेसी
0: साफ
1: होते।
0: सफाई तो समझिए किसी भी मौसम में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: हमेशा हम
0: अब बात करें जैसे कि नहाने का, बहुत पसीने पसीने हो गए, सुबह नहाया था, एक बार और नहा लें
1: हाँ
0: जिससे कि बिल्कुल आप साफ सुथरा रहें, क्योंकि ऐसे में साफ सुथरा रहने से किसी तरीके की बीमारी नहीं होती। बहुत लोगों को गर्मी से घमौरियाँ हो जाती हैं, तो उससे भी बचने के लिए कम से कम 2 बार ठंडे पानी से ज़रूर नहा लें। और ये तो हमने बात की स्वास्थ्य से संबंधित कि हाँ गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य का किस तरीके से देखभाल हम कर
1: ध्यान
0: सकते हैं
1: रखना
0: अपने
1: चाहिए।
0: घर परिवार बच्चों का। लेकिन हमारे श्रोता इसका भी इंतज़ार करते हैं कि ये तो हमने बातें कर ली, थोड़ा मनोरंजन करवा दें।
1: हाँ तो चलो गीत ना देखता सुनाओ।
0: सूर्यदीप सिंह यादव की आवाज में सुनते हैं ये लोकगीत।

0: सियाराम जी में होला मतवारा तो बहुत ही प्यारा ये लोकगीत सूर्यदीप सिंह यादव की आवाज़ में हमने सुना, और भी इनसे हम लोकगीतों का आनंद लेंगे ही। अभी जैसे गर्मियों की बात कर रहे थे, तो पहले से अब में अगर देखे तो गर्मी कुछ ज़्यादा नहीं लगती, पहले भी गर्मी पड़ती थी
1: लेकिन
0: लेकिन अभी
1: अखन सब चीज अति छे, जाड़ो भेल तो अति, बरखो भेल तो अति, रौदो भेल तो अधिक।
0: और सबसे बड़ी बात है जो मौसम चक्र है उसमें जो बदलाव आ रहा है, जिस जिस मौसम को जिस महीने में आना चाहिए वो पहले आ जा रहा है, और गर्मी जिस मौसम में ख़त्म होनी चाहिए वो नवंबर तक चली जा रही है, या फिर

0: यूं कहे कि दिसंबर में भी गर्मी का वो
1: हाँ वो
0: रहता
1: आप
0: है। तो
1: सकते।
0: ये जो बदलाव है उसका कहीं ना कहीं जो प्रभाव है हमारी वजह से ही है। हम किसी एक ना ही सरकार को दोष दे सकते हैं ना ही गैर सरकारी संस्थान को, ये हम सभी की जवाबदेही है। जैसे कि पेड़ की कटाई हो रही है,
1: हाँ
0: क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, आधुनिकता लाना है। आधुनिकता आधुनिकता के नाम पे जो दोहन हो रहा है, जिसका असर अब व्यक्ति व्यक्ति पे पड़ रहा है। पहले इतनी बीमारियां
1: आधुनिक
0: होती थी?
1: नहीं, आधुनिकता के वजह से भविष्य गंभीर समस्या में अब बोला है।
0: बहुत
1: तो
0: ही गंभीर समस्या में।
1: जो वायु प्रदूषण पर
0: जैसे अब सुबह उठ करके योगा करें, ये करें, वो करें, चलो सब कुछ किया, लेकिन कैसी वायु हमारे अंदर हम ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा मतलब हम ये कह सकते हैं कि शुद्ध वायु के सोच में हम सुबह जाते हैं टहलने और उसे सोचते हैं कि चलो हम स्वस्थ रहेंगे, लेकिन तब भी वैसे भी लोग अस्वस्थ हैं, बहुत सारी बीमारियों से
1: बीमारी।
0: ग्रसित हैं।
1: हाँ
0: तो ऐसे में आज हम वायु की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना इसी पर आधारित एक वार्ता सुने, वायु प्रदूषण एवं इससे बचाव। वार्ताकार हैं शालिनी सिंह।
1: प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। प्रदूषण शब्द का मतलब है पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश होना। ये पदार्थ वायु, जल और भूमि में प्रवेश करते हैं और इनसे पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता है। आज हम चर्चा करेंगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वायु प्रदूषण पर एवं इससे बचाव के उपायों पर भी रोशनी डालेंगे। यह विषय न केवल हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे स्वास्थ्य और आने वाले पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हवा विभिन्न गैसों का एक अदृश्य मिश्रण है। यह हमारे वातावरण में स्वाभाविक रूप से मौजूद है। ऑक्सीजन हवा में मौजूद विभिन्न गैसों में से एक है जिसे हम सांस में लेते हैं। वायु प्रदूषण तब होता है जब गैसें, धूल, गंदगी, कालिख, वायरस आदि हवा को दूषित करते हैं, जिससे यह अशुद्ध, अस्वास्थ्यकर और विषाक्त होता है। हवा में प्रदूषण की मात्रा मनुष्यों, जानवरों और पौधों को नुकसान के स्तर तक प्रभावित करती हैं। वायु प्रदूषण अर्थात हवा में ऐसे अवांछित गैसों, धूल के कणों आदि की उपस्थिति जो लोगों तथा प्रकृति दोनों के लिए खतरे का कारण बन जाता है। वायु का अवांछित रूप से गंदा होना वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण के कारणों में बहुत सी परिस्थितियां हमारे विकसित या यूं कहें हमारे अत्याधुनिक जीवन शैली के वजह से है। डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहन कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें उत्सर्जित करते हैं। इतना ही नहीं, ब्रेक और टायर से निकलने वाले कण वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण मानवीय गतिविधियां हैं। औद्योगिकीकरण, वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, दहन, ऊर्जा उत्पादन, निर्माण, कृषि गतिविधियां और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी मानवीय गतिविधियां वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। मानवीय गतिविधियों के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे प्रदूषक निकलते हैं जिससे वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण के प्राकृतिक कारण ज्वालामुखी विस्फोट, धूल के तूफान और जंगल की आग है। हालांकि वायु प्रदूषण के प्राकृतिक कारण वहां के क्षेत्रों तक ही सीमित होते हैं और दीर्घकालीन पर्यावरणीय खतरे पैदा नहीं करते हैं। वायु प्रदूषण का एक प्रमुख और अत्यंत ही हानिकारक कार्य आम जनता के द्वारा किया जाता है, कचरे को जलाना। अक्सर लोग अपने घर के आसपास के जगहों पर कचरे के ढेर को जला देते हैं। ये बहुत ही हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करते हैं। कृषि क्षेत्रों में पराली जलाई जाती है। फैक्ट्रियों और बिजली संयंत्रों से चलने वाले गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और हानिकारक रसायन वातावरण को विषैला बनाते हैं। निर्माण स्थलों से उड़ती धूलें और कण भी वायु गुणवत्ता

0: उर्वरकता को नुकसान पहुंचाते हैं। इन प्रदूषण के कारकों की वजह से मानव स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है और प्रतिदिन स्वास्थ्य स्तर में गिरावट आ रही है। जलवायु परिवर्तन प्रदूषण के दुष्प्रभाव का ज्वलंत उदाहरण है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और असामान्य मौसम परिवर्तन होते हैं। वायु प्रदूषण का श्वसन संबंधी समस्याओं जैसे दमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के कैंसर पर सीधा सीधा असर पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 99% आबादी हानिकारक हवा में सांस ले रही है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों में नीतियां और निवेश आवश्यक है। पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को अपनाने से वायु प्रदूषण को कम करने में काफ़ी मदद मिल सकती है, जैसे व्यक्तिगत स्तर पर हम जब भी संभव हो कारपूलिंग, साइकिलिंग या इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। घरों में सोलर पैनल लगवाने जैसे प्रयास सराहनीय और वातावरण के हित में हैं। अपशिष्ट उत्पादन को न्यूनतम करने की कोशिश और जब भी संभव हो पुनः प्रयोज्य उत्पादों का चयन करना वायु प्रदूषण की रोकथाम में उचित प्रयास हो सकता है। कारखानों को शहरी क्षेत्र से दूर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ऐसी तकनीक उपयोग में लानी चाहिए जिससे कि धुएं का अधिकतर भाग अवशोषित हो और अवशिष्ट पदार्थ व गैसे अधिक मात्रा में वायु में न मिल पाए। जब वायु प्रदूषण की चर्चा हो और उसके निवारण हेतु वृक्षारोपण की बात न हो तो ये अनुचित होगा। वृक्ष एकमात्र प्राकृतिक साधन है जो वायु को शुद्ध रख पाने की क्षमता रखते हैं। हमें बड़ी मात्रा में पेड़ लगाने का प्रयास करना चाहिए और यह प्रयास निरंतर एवं पीढ़ी दर पीढ़ी चले ऐसी मानसिकता बनानी होगी। भारत सरकार भी वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रयासरत है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का उद्देश्य बड़े शहरों में वायु प्रदूषण को 20-30% तक कम करना है। स्वच्छ भारत मिशन और उज्ज्वला योजना जैसे कार्यक्रमों में स्वच्छ ऊर्जा और स्वच्छता को बढ़ावा दिया गया है तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत सख्त नियम लागू किए गए हैं। वायु प्रदूषण एक गंभीर चुनौती है जिसका समाधान केवल सरकार या वैज्ञानिकों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाएं। वायु प्रदूषण से बचने के लिए हर व्यक्ति अपना योगदान दे सकता है, वायु प्रदूषण से जुड़े बचाव नियम और उपायों को अपनाकर। वायु प्रदूषण आज के समय में एक गंभीर समस्या बन गई है। इस समस्या को हल करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह मानव जीवन और समस्त जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है। सरकार और आम जनता को मिलकर इस समस्या के समाधान जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग, प्लास्टिक और कचरे को जलाने से बचना तथा उनका पुनर्चक्रण करना, वनों की कटाई पर रोक लगाना, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाना और लोगों को वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना और उन्हें स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए प्रेरित करना जरूरी है। हमें अपने भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करने का संकल्प लेना चाहिए।
1: तो अभी हम लोगों ने बहुत ही उपयोगी वार्ता सुनी वायु प्रदूषण एवं इससे बचाव, और वार्ताकार थी शालिनी सिंह। बहुत ही विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया वायु प्रदूषण से बचाव के बारे में। तो अब जैसा कि वादा किया था आप सभी श्रोताओं से कि आपको लोकगीत का आनंद जरूर देंगे, तो सुनते हैं ये देवी गीत सूर्यदीप सिंह यादव की आवाज़ में।
2: सुनो।

0: तो अभी हम लोगों ने बहुत ही प्यारा ये देवी गीत सुना सूर्यदीप सिंह की आवाज़ में। अब
1: हाँ
0: चौपाल की घड़ी यहीं समाप्त हो रही है, थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे खेती गृहस्थी की। खेती गृहस्थी में सबसे पहले सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम जो फिट है वो हिट है।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर पटना।

नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से, जी हां, एक बार फिर से इसलिए कहता हूं कि लगातार आपके घर आंगन में कार्यक्रम जो फिट है वो हिट है लेकर आ गया। जी हां, मंगलवार का दिन है, आज के दिन आप ये कार्यक्रम सुनते हैं और खास करके वैसे बुजुर्ग, हाँ, या आप तो युवा साथी भी, हाँ, जोड़ों में दर्द है या हड्डी नस की समस्या है, उनके लिए ये कार्यक्रम राम बाण साबित होता है। जो फिट है वो हिट है, और कितना सही लाइन है, जो फिट है यानी शारीरिक रूप से जो फिट है वही हिट है, वही जिंदगी का मजा ले सकता है। कार्यक्रम जो फिट है वो हिट है हम आपके लिए लेकर आते हैं साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर की तरफ से। साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, विष्णु प्लेस के बगल में राय जी की गली है, पटना में है, और उन्हीं के तरफ से ये कार्यक्रम हम आपके घर आंगन में वैसे लोगों की मदद के लिए लेकर आ रहे हैं जिन्हें पुराना से पुराना हड्डी और नस की समस्या है, और बिना दर्द निवारक गोली के हम कोशिश करते हैं कि उनकी समस्या का निदान हो जाए। युवाओं में भी, हाँ, आजकल युवाओं में ही खान पान बदल गया है ना, आजकल युवाओं में, बच्चों में भी बॉडी में पेन होने लगता है, बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। तुरंत दिखाना चाहिए। यहाँ साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर में होते हैं डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, नाम तो सुना ही होगा, डॉक्टर राजीव कुमार सिंह रहते हैं, जो आप

0: का इलाज करते हैं। बहरहाल ज्यादा बातें नहीं, ढेर सारे सवाल आज हमारे पास पड़े हैं जो डॉक्टर राजीव कुमार सिंह से पूछना है आपके लिए, और सवाल आपके तरफ से ही है। लेकिन हम नंबर बताए देते हैं हाँ डॉक्टर राजीव कुमार सिंह का, कि कार्यक्रम के खत्म होने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि कोई सवाल है या कोई क्लैरिफिकेशन है, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप बात कर सकते हैं। और आपको बताएं कि ये उनका मोबाइल नंबर जो है ना, वो व्हाट्सएप वाला नंबर भी है, यानी दिखने वाली अगर कोई बीमारी है तो आप वीडियो भी भेज सकते हैं, फोटो भी भेज सकते हैं। नंबर नोट करें 8877372299 8877372299। चचा हाँ तैयार हो जाइए हाँ, कि अगर आपने जो सवाल हमसे पूछा था कहीं आज आप ही का सवाल होगा, क्योंकि हम वैसे प्रकृति के सवाल उठाते हैं जिससे सरोकार ज्यादा से ज्यादा लोगों का होता है। डॉक्टर राजीव बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में।
1: आप सभी को प्रणाम नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात होती है, लेकिन लगता नहीं है कि हम बहुत दिन से मिले नहीं है। एक अपनापन है, एक प्यार है, एक फीलिंग है आप लोगों के लिए, और ऑलवेज रहेगा, चाहे दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म पे हम दिखे आपको। लेकिन इतना तो याद रखिएगा कि रेडियो से ही हमारी शुरुआत हुई थी, इस बिहार में पहचान मिली थी, और ये रेडियो का प्रोग्राम ऑलवेज जब तक साई हेल्थ केयर है तब तक आपको, आपके बीच हम रेडियो के माध्यम से जरूर आते रहेंगे। तो चलिए राजेश जी, अब आपके जो सवाल होंगे उसके जवाब जरूर हम देंगे।
0: बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने रेडियो को रिकॉग्नाइज किया, और आपकी शुरुआत लोगों के बीच जाने की रेडियो से ही हुई थी। और आपने ये भी कहा डॉक्टर राजीव कि जब तक साईं हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर है, रेडियो के माध्यम से आप लोगों के घर में पहुंचते रहेंगे। चलिए आज का पहला सवाल आपके गृह जिला सिवान से उठाते हैं, मनोज कुमार हैं हाँ। इन्होंने सवाल पूछा है कि गर्मी के मौसम में तो हाँ बदन में जो दर्द है या ठेहुने में जो दर्द है, जहां भी दर्द है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन जो बारिश हो जाती है और थोड़ा ठंड हो जाता है ना, तो ठेहुने का दर्द और घुटने का दर्द और बॉडी में कहीं भी है तो वो बढ़ जाता है। तो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन अगर है तो आप मनोज जी को बताइए, आपके गृह जिला सीवान से हैं, डॉक्टर साहब सन ठीक है, लगे हाथ बता दें आपको।
1: देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात है कि मौसम के बदलाव से दर्द में बदलाव होता है, ये सत्य है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि ठंड के दिनों में भी दर्द जो होता है कहीं का भी वो ज्यादा पता चलता है, गर्मी में थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन कम और ज्यादा तो बात की बात है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि घुटने में दर्द होता क्यों है। देखिए घुटना एजिंग फैक्टर से दर्द होता है, घुटना के अंदर ग्रीस होता है, लिक्विड होता है, जो भी अपने भाषा में कहिए साइनोवियल फ्लूइड होता है, और वो ड्राई होता है। अगर जब भी आप 50 के रेंज में जाते हैं तो वो सूखना शुरू होता है, क्योंकि आप सोचो 50 साल से कोई चक्का चल रहा है, जो पांव चल रहा है, तो वो घिसेगा ही ना, ये नेचुरल फिनोमेना है, कॉमन चीज बातें हैं। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, आप जितना जल्दी हो साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर में आइए, जो कि पटना में है, पूर्वी बोरिंग कनाल रोड राय जी की गली में है, और वहां आइए और आपके घुटने को चेक किया जाएगा। अगर उसके अंदर लिक्विड की जरूरत होगी तो लिक्विड डाला जाएगा, अगर घुटना के अंदर लग रहा है कि कहीं ना कहीं डिफॉर्मिटी आ रही है, कहीं से घुटना सट रहा है, या अंदर से या बाहर से या बीच से, तो उसके लिए मशीन के द्वारा उसको सीधा भी कर दिया जाएगा। तो बहुत सारी तकनीकी है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, और आप आइए, आप तो हमारे गृह जिला के भी हैं।
0: गृह जिला से थे ये मनोज कुमार, इन्होंने घुटने की बात की, और डॉक्टर राजीव आपने बहुत ही विस्तार से अच्छे से समझाया है। बहरहाल इग्नोर नहीं करने का, अगर समस्या है तो डॉक्टर के पास जाने का। कार्यक्रम जो फिट है वो हिट है चल रहा है, मैं हूँ राजेश, और डॉक्टर राजीव कुमार सिंह हमारे बगल वाली कुर्सी पर बैठे हैं और सवालों का जवाब दे रहे हैं। ये कार्यक्रम जो फिट है वो हिट है हम लेकर आ रहे हैं साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर से, जो कि है पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, विष्णु प्लेस के बगल में राय जी की गली पटना में है। ये हम नंबर बता दे रहे हैं डॉक्टर राजीव का एक बार फिर से, जरूरत पड़े तो जरूर डायल कीजिएगा, संकोच नहीं कीजिएगा। नंबर है 8877372299, 8877372299। अब पटना से एक फोन कॉल आया था ब्रजेश।

0: सिंह जी का रिटायर्ड पर्सनल हैं ये, हाँ रिटायर हो चुके हैं तो उम्र इनकी है। इन्होंने बताया कि हमने बातें सुनी हैं राजीव जी आपके बारे में, कंधा जाम रहता है इनका। जी हाँ, बहुत परेशान है, कंधा जाम होने से बहुत परेशान रहे, हाथ बाजू घूमने में दिक्कत होती है, रोज अपना काम करने में दिक्कत होती है। ये कहते हैं कि हमने सुना है कि आपके यहाँ लेटेस्ट तकनीक के मशीन्स आ चुके हैं, क्या हमारी समस्या का निदान हो पाएगा, कंधा जाम जो है क्या कंधा खुल जाएगा?
1: देखिए ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात है कि ये प्रॉब्लम होता वैसे लोगों को है जो डायबिटिक है, जिनको शुगर है। अगर आपका शुगर नहीं है तब तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनके भी कंधे में जाम है और वो शुगर वाले हैं, उनका दर्द जल्दी नहीं जाता है, लेकिन जिनको दर्द है और शुगर नहीं है तो वो दर्द 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। तो इसलिए उसके लिए अब आपको इधर आना ही है, क्योंकि इसमें जो है लेजर और मैग्नेटो ट्रीटमेंट का बड़ा रोल है। लेजर क्या करेगा कि अंदर के जाके इन्फ्लामेशन सूजन को खत्म करेगा, मैग्नेटो जो है वो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जो कि आपके एडहेशन जो जाम है उसको ब्रेक करेगा और हाथ खुलेगा। जब हाथ मुलायम होगा, खुलेगा, तो फिर आप एक्सरसाइज करिएगा तो आपका फ्री हो जाएगा। तो आप पटना के हैं, लोकल हैं, तो कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आप साईं हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर में आइए जो कि पूर्वी बोरिंग कनाल रोड में है, राय जी की गली में है। तो आप आके और उसका सेशन लीजिए, इसमें 10-15 सेशन आपको आना पड़ेगा। आप तो लोकल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 घंटा के लिए इधर आने का है और आपका देख के कंप्यूटराइज हाथ को खोल दिया जाएगा, फ्री हो जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज कर लीजिएगा 10-15 दिन अपने घर पे जो बताया जाएगा, कुछ दवा खाना है, नॉर्मल हो जाएगा।
0: अगला सवाल हम उठाएं, इससे पहले एक बार हम नंबर बता देना चाहते हैं डॉक्टर राजीव कुमार सिंह का, नंबर नोट करें। हड्डी और नस की अगर कोई समस्या है तो जरूर बातचीत करनी चाहिए, डॉक्टर से बात करने से थोड़ी तकलीफ कम होती है, राहत होता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि हाँ डॉक्टर साहब ने कहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। जी वाह क्या बात है। नंबर 8877372299 8877372299, ये डॉक्टर राजीव कुमार सिंह का नंबर है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अब दानापुर से रिटायर्ड फौजी हैं सरयू राय, हाँ ये रिटायर कर चुके हैं। ये कहते हैं कि चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है, ज्वाइंट्स में पेन है, सूजन आ गया है, टेढ़ापन भी हो गया है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा।
1: देखिए आप तो कैंटोनमेंट एरिया से है तो मैं तो वहाँ आता ही हूँ और मेरा ड्यूटी भी है बीआरसी में, बिहार रेजिमेंट सेंटर में, अग्निवीर को मैं ही देखता हूँ। तो आप वहाँ भी हमसे मिल सकते हैं, बुधवार या शनिवार को मैं आर्मी में रहता हूँ तो वहाँ पे आप आ सकते हैं। लेकिन अगर बहुत तकलीफ है तो हमारे पटना वाले सेंटर पे आ जाइए, आपसे बहुत दूर भी नहीं है। और इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो अर्थराइटिस है, गठिया है, जब भी टेढ़ापन आने लगे जॉइंट्स में तो गठिया है। गठिया भी बहुत तरह का होता है, उसमें जो सबसे खतरनाक गठिया कहेंगे उसको रिमेटोइड अर्थराइटिस कहते हैं, आरए फैक्टर पॉजिटिव जिसका होता है, तो वो ब्लड से रिलेटेड, वो जड़ से कभी खत्म नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ लेकिन कंट्रोल जरूर होता है, ठीक जरूर होता है, लेकिन जड़ से खत्म नहीं होता है। जैसे कैसे आपके शुगर है वो जड़ से खत्म नहीं होता, कंट्रोल होता है, बीपी का भी जड़ से खत्म नहीं होता है, कंट्रोल होता है। तो अब इस तरह के थायराइड का भी कंट्रोल नहीं, वो खत्म नहीं होता है, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस समय प्रिकॉशन है, और आप लोग गठिया हो जाता है तो आप बहुत घबरा जाते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जो अंदर में रहती है लेकिन उभरती नहीं है, तो इसको उभरने नहीं देना है। बीमारी तो सब जगह, पूरा इन्वायरमेंट में बीमारी है, 1 लाख वायरस घूम रहे हैं, जैसे आपका शरीर कमजोर होगा आप पे अटैक कर देंगे, है ना। तो ये चीजें हैं, आपको योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, खान पान, बहुत सारा प्रिकॉशन, लाइफ मॉडिफिकेशन, ये सारा कुछ बताया जाएगा आपको। गठिया वाले जितने मरीज हैं, जो भी गठिया वाले सुन रहे हैं, जिनके घर घर में गठिया फैला हुआ है, वो लोग ध्यान दें, आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और आपको आना पड़ेगा डॉक्टर राजीव के पास। तो आप यहाँ आइए, जो समय लगता है आप लोग घबरा जाते हैं कि नहीं हमारा पैसा लग गया, तो हमारा ये लग गया, तो हमारा वो लग गया। अरे भाई पैसा आप अपने शरीर में लगाए हैं ना, तो आप अपने शरीर में लगाए हैं और इतना बड़ा बड़ा बीमार

0: और किसी से ये उम्मीद करिएगा कोई आपको एकदम तुरंत छू मंतर कर दे तो संभव नहीं है। तो ऐसी बीमारियों में आपको पेशेंस रखना होगा, समय देना होगा और आपको आना होगा साईं हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर जो कि पटना में है, जिसका नंबर है 8877372299 8877372299। इस पे फोन करिए, मिलिए, आइए और दिखाइए। और किसी भी तरह का अगर आपको हड्डी या नस से संबंधित समस्या है तो उसके लिए जो सबसे दुनिया का लेटेस्ट ट्रीटमेंट है वो अपने पटना में आ चुका है साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर में। तो अब आप दर्द के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हड्डी और नस से संबंधित कोई भी दर्द है, जैसे घुटना दर्द, कमर दर्द, एड़ी दर्द, गर्दन दर्द, कंधा जाम, चलने फिरने में कठिनाई, लकवा की समस्या, एड़ी का दर्द है, एनकोलाइजिंग स्पोंडिलाइटिस है, HLA-B27 जिसका पॉजिटिव है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, बहुत सारी ऐसी समस्या जो कि आपको लगता है कि नहीं, हम दवा खा खा के थक चुके हैं, आज नहीं तो कल आना ही होगा और आपको आना चाहिए भी।
1: बहुत खूब डॉक्टर राजीव, कितना कन्विंसिंग एटीट्यूड है आपका, वाह वाह क्या बात है, कितना समझा कर बताते हैं आप और प्रेरित करते हैं कि शरीर में अगर कोई विकार हो तो उसे इग्नोर नहीं करें। जो एडवांस टेक्नोलॉजी आई है साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर में, उसका इस्तेमाल कीजिए और जीवन में आनंद उठाइए। और कितना अच्छे से कहा कि आपको आना ही पड़ेगा, आना चाहिए भी आपको। जी हाँ साथियों, जो फिट है वो हिट है, यही नाम रखा गया है। अपने को फिट रखिए, हाँ तभी जीवन का मजा ले पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, चलने से पहले नंबर हम बताए दें, 8877372299 8877372299। मुलाकात होगी हाँ आपसे। थैंक यू कह के निकलते हैं साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर, पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, विष्णु प्लेस के बगल में, राय जी की गली पटना को, कि इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया राजेश को। नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर पटना।
3: तो अभी हम सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम, जो फिट है वो हिट है।
4: हाँ।
3: और अब बात करते हैं खेती गृहस्थी में अपने किसान भाइयों के फायदे की। हालांकि कोई भी फसल उगाने से पहले हम बहुत सारी बातों का ध्यान देते हैं कि किस तरीके की मिट्टी उस फसल के लिए अच्छी है, किस समय इसे लगाना चाहिए, किस महीने में इसे लगाना चाहिए, सारी बातों का तो ध्यान देते हैं। लेकिन जैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए खान पान आवश्यक है, वैसे ही पौधों और फसलों के लिए भी खान पान बहुत ही आवश्यक है,
4: मिट्टी के लिए, माइट के लिए।
3: हाँ।
4: देखियो, वर्मी कंपोस्ट एक अत्यधिक पौष्टिक जैविक उर्वरक है। अकर प्रयोग से माइट के जल धारण क्षमता बढ़त, पौधा के वृद्धि तेज होत आ माइट में लाभकारी सूक्ष्म जीव के विकास होत।
3: हाँ।
4: ई फसलक उत्पादन को बढ़ावे में आ भूमि के अधिक समय धरि उपजाऊ बनाकर राखे में मदद करते हैं।
3: बिल्कुल, वर्मी कंपोस्ट एक प्राकृतिक और जैविक उर्वरक है। ये पौधों के लिए आवश्यक सभी मुख्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सूक्ष्म पोषक तत्व प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं इसमें, वर्मी कंपोस्ट में। बात अगर मिट्टी की संरचना की करें तो ये मिट्टी को भुरभुरा, मुलायम और हवादार बनाता है, जिससे पौधों की जड़ों को गहराई तक जाने में आसानी होती है। बहुत बार जब हम पौधे लगाते हैं वो किस गहराई तक जानी चाहिए उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
4: वर्मी कंपोस्ट के नियमित आ सही उपयोग से खेती या बागवानी में बहुत फायदा है छे।
3: बहुत ज्यादा।
4: आय खाद के उपयोग कैला से माटी में सुधार जना कहलों होत आ माटी के भुरभुरा आ उपजाऊ बनबत।
3: हाँ, इसके
4: जैसे पौधा के जड़ धरि हवा आगे आसानी से पहुँचे।
3: इसके प्रयोग से मिट्टी की नमी सोखने और उसे बनाए रखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, जिससे सिंचाई में पानी की कम आवश्यकता होती है, एक तरीके से पानी की बचत भी होती है अगर वर्मी कंपोस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। ये मिट्टी में मौजूद मित्र कीटों, यानी कि मित्र मतलब जो कि उसके लिए फायदेमंद हो, मित्र कीटों और लाभदायक सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाता है और बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो मिट्टी है

0: है वो ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ होगी, जो जैविक कचरे को प्राकृतिक खाद में बदलते हैं, मतलब जैविक जो कचरा है उसको प्राकृतिक खाद में बदल देता है। ये पौधों में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है।
1: हाँ।
0: मतलब अब किसी तरीके का रोग लगना हो तो ये जो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, विकसित करता है, जिससे हानिकारक कीटनाशकों का जो खर्च है वो बहुत हद तक बचता है। हम कीटनाशकों के लिए बहुत तरीके की कीटनाशक दवाएं डालते हैं जिससे फसल पे उसका प्रभाव तो पड़ता ही है, और साथ ही साथ हमारे जो थाली में आता है वो किसी न किसी प्रकार से हमें कमज़ोर करता है।
1: देखियो, ये अधिक समय धरि माटि के नमी बना कर रखैत अछि, जाहिसँ सिंचाई के कम आवश्यकता होइत अछि। एहि खाद के उपयोग कयलासँ फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ैत अछि, जाहिसँ रासायनिक कीटनाशक पर होबय वाला खर्च में कमी अबैत अछि।
0: बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले भी बात की, इसके उपयोग से लंबे समय में खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है। बहुत बार क्या होता है कि एक फसल लगाया लेकिन मिट्टी की जो गुणवत्ता है जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग धीरे धीरे इसका उपयोग करने से कम किया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से फल फूलों और सब्जियों का प्राकृतिक रंग स्वाद और आकार बेहतर होता है।
1: हाँ, पर्यावरण के अनुकूल ये पूरा तरह से प्राकृतिक आ विषहीन अछि।
0: मतलब इसमें किसी भी तरीके के टॉक्सिक या विष जैसे होते हैं, विष मुक्त होता है।
1: हाँ।
0: तो जब ये हमारे बाजार में आएगा और बाजार से हमारे घरों में आएगा और हम बनाएंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, न कि हानिकारक
1: अच्छा।
0: होगा, और बीमारियां नहीं
1: होंगी। साग सब्जी हो, अन्न हो, फल हो, सब स्वादिष्ट के संग संग सेहतमंद
0: होगा। तो सेहत को और अच्छा करने के लिए जरूरी है कि मनोरंजन भी हो जाए।
1: हाँ।
0: तो सूर्यदेव सिंह यादव की आवाज में सुनते हैं ये पूर्वी।

0: सूर्यदीप से यादव की आवाज़ में बहुत ही प्यारा ये पूर्वी सुना, और जाने का तो मन नहीं हो रहा, लेकिन घड़ी की टिक टिक का इशारा यही है।
1: समय बहुत चुकल है।
0: हाँ, क्योंकि कल आना है तो आज तो जाना ही हुआ। तो नमस्कार चंपा बहन और हमारे श्रोताओं।
1: नमस्कार प्रिया।

0: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुन रहे थे चौपाल और खेती गृहस्थी, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही देर बाद अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: हर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
1: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
0: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
0: लाभवाणी,
1: आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: इधर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर...

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश भर में आज से सहयोग शिविर की शुरुआत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सारण जिले से राज्यव्यापी अभियान का किया शुभारंभ। राज्य में भूमि संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए बिहार भूमि न्यायाधिकरण के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मुद्दे पर पार्टी करेगी आंदोलन। और राज्य में औद्योगिक विकास को देखते हुए नबीनगर एनटीपीसी परियोजना का होगा विस्तार। 800 मेगावाट की 3 इकाइयां लगाई जाएंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आज से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वयं सारण जिले के डुमरी बुजुर्ग पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होकर राज्यव्यापी अभियान का उद्घाटन किया। श्री चौधरी ने कहा कि शिविर में प्राप्त शिकायतों का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर का आयोजन प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को किया जाएगा
1: और ये कार्यक्रम 2 बार महीने में पंचायतों के स्तर शिविर लगेगा और 2 बार पहली मंगलवार और तीसरी मंगलवार। आपके सहयोग के लिए सरकार जारी है, चाहे वो अंचल का काम हो, शिक्षा विभाग का काम हो, चाहे वो ब्लॉक का हो या थाना का काम हो, जिसमें भी रुकावट है वो 30 दिन में नहीं करेगा, उसके पदाधिकारी को निलंबित करने का काम हमारी सरकार करेगा।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोग शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की प्रगति की मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से सीधी निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि जनता की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल भी क्रियाशील कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना के दानापुर अनुमंडल के सरारी पंचायत में सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन SM समेत अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे। बेगूसराय जिले के प्रभारी मंत्री सह सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने बरौनी प्रखंड अंतर्गत भरत उच्च विद्यालय पिपरा देवस में सहयोग शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर तेघड़ा के विधायक रजनीश कुमार, जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री, पुलिस अधीक्षक मनीष समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इधर दरभंगा जिले में 24 स्थानों पर सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री सह पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कटिहार में आयोजित सहयोग शिविर के माध्यम से 2975 शिकायत

0: वस्तुओं का निष्पादन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री सह कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने सदर प्रखंड के भवाड़ा पंचायत में सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। वहीं अरवल जिले के करपी प्रखंड के परियारी पंचायत में जिले के प्रभारी मंत्री सह पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने शिविर का उद्घाटन किया। अन्य जिलों में भी विभिन्न पंचायतों में शिविर का आयोजन किया गया। सुपौल जिले के प्रभारी सह योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने सदर प्रखंड अंतर्गत पंचायत सरकार भवन में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल होकर आम जनों की समस्याओं और शिकायतों को सुनने के लिए शिविर के निष्पादन के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। औरंगाबाद जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत बसडीहा स्कूल मैदान में प्रभारी मंत्री रमा निषाद ने सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। बिहार भूमि न्यायाधिकरण के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है। इसके साथ ही न्यायाधिकरण में 5 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने आज पत्रकारों से बातचीत में बताया कि आम लोगों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने और भूमि संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए यह निर्णय लिया गया है। राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर खानापूर्ति करने का आरोप लगाया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार केवल बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि राजद महिलाओं के मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक आंदोलन करेगा।
1: लगातार ये सरकार महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करती है, जो सच्चाई है बिहार की। अपराधी जो है हमारी माताओं बहनों पर बेटियों पर कहर बनकर के टूटे हैं, इसमें सम्राट चौधरी जी की सरकार पूरी तरीके से फेल होते नजर आ रही है। प्रशासन कहीं नहीं नजर आ रहा है और ये गंभीर समस्या बन गई है बिहार के लिए, और खास तौर पे जो आम बिहारी है वो बहुत चिंता में है।
0: बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने लोहार जाति को फिर से अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किए जाने के विषय को लेकर बिहार राज्य लोहार समन्वय समिति के प्रतिनिधियों के साथ आज बैठक की। समिति ने विधानसभा अध्यक्ष को इस संबंध में दस्तावेज सौंपते हुए सहयोग का आग्रह किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से जुड़े इस मामले में संसद के माध्यम से ही पहल संभव है। श्री कुमार ने कहा कि दस्तावेजों के आधार पर केंद्र और राज्य सरकार से पत्राचार किया जाएगा। औरंगाबाद जिले के नबीनगर में स्थित एनटीपीसी की सुपर थर्मल पावर परियोजना का विस्तार किया जाएगा। कंपनी के परियोजना प्रमुख एलके बेहरा ने प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य में औद्योगिक विकास को देखते हुए बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता है। इसे पूरा करने के लिए नबीनगर परियोजना के स्टेज 2 के तहत 800 मेगावाट की 3 इकाइयां स्थापित की जा रही हैं।
2: ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का कल्याण में आएगा, बिहार देश का हित में ही आएगा। ये बिजली तो अपना बाहर देश को तो नहीं जा रहा है, हम लोग देश में ही बिजली के लिए, हम लोग का जो इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, देखिए इकोनॉमी बढ़ेगा तो उसी का पाई किसी न किसी का पे बैक होता है। उसी तरह का हम लोग का जो ये पावर प्लांट होने के कारण जो लोग रोजगार मिल रहा है वो सर्कुलर इकोनॉमी ही कंट्रीब्यूट कर रहा है।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना,
7: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
7: लाभवाणी,
4: आकाशवाणी।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Pattna को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनी मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। श्री मांडविया ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि निधि आपके निकट कार्यक्रम के तहत मामलों की पहचान कर उनके निपटारे की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि EPFO व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने ई फार्मेसी और ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ कल देश भर में हड़ताल की घोषणा की है। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संघ ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। संघ के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार सिंह ने कहा कि 20 मई को प्रदेश की दवा दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कंपनियां नकली, नशीली और अवैध दवाओं की बिक्री कर रही हैं, जिससे समाज को बड़ा नुकसान हुआ है। दवा विक्रेताओं ने ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म पर अंकुश की मांग को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। भारतीय रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबी क्यूल झाझा तीसरी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हावड़ा दिल्ली मार्ग पर क्षमता बढ़ाने के लिए 962 करोड़ रुपए की लागत से इस रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा हो जाने से इस अति व्यस्त रेलखंड पर यात्रियों और मालगाड़ियों की आवाजाही अधिक सुगम और समयबद्ध हो सकेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे हावड़ा दिल्ली मार्ग पर परिचालन क्षमता बढ़ेगी और क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को मजबूती मिलेगी। रेलवे ने पटना और उड़ीसा के खोरधा रोड जंक्शन के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन की परिचालन अवधि में विस्तार किया है। पटना खोरधा रोड स्पेशल ट्रेन प्रत्येक गुरुवार की सुबह 8:45 पर पटना जंक्शन से खुलेगी और अगले दिन 3:35 पर खोरदा रोड पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को खोरदा रोड से दोपहर 3:15 पर खुलकर अगले दिन सुबह 10:45 पर पटना पहुंचेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने DLED संयुक्त परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। समिति के द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 8 जून से 22 जून तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। परीक्षा के लिए सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में केंद्र बनाए जाएंगे। बोर्ड ने कहा कि अभ्यर्थी 28 मई से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। समिति की वेबसाइट form.bsabdeled.com से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज भभुआ और रोहतास जिले में लू के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान गया जी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि रोहतास, भभुआ, बक्सर समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत के आसार नहीं हैं। वहीं चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बनने के कारण राज्य के उत्तरी भागों में मौसम में परिवर्तन की संभावना है। इस दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों में आंधी बारिश हो सकती है।
1: दिनांक 20 मई राज्य के उत्तर पूर्व एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्वी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर भीषण गर्मी के मद्देनजर कैमूर जिला प्रशासन ने 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 23 मई तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह ने इस संबंध में आज आदेश जारी किया। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। राजधानी पटना में अब पेट्रोल का मूल्य 110 रुपये 2 पैसे प्रति लीटर और डीजल का मूल्य 94 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर हो गया है। सारण पुलिस ने नशा मुक्त सारण अभियान के तहत जिले के विभिन्न भागों में छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब जब्त की। इस संबंध में 14 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।

0: शिवहर जिले में आयोजित भाजपा के 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का आज समापन हो गया। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे समापन सत्र में शामिल हुए। सुपौल जिले के बलुआ स्थित पुनर्वास स्कूल में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत मेडिकल जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 6 से 7 वर्ष के बच्चों में संक्रमण की स्थिति के आकलन के लिए TAS1 जांच की गई। सुपौल जिले के वीरपुर में भारत नेपाल सीमा के समीप SSB जवानों ने जांच अभियान के दौरान एक नाबालिग लड़की को मानव तस्करों से मुक्त करा लिया। जांच अभियान के दौरान भारी मात्रा में नेपाली शराब और गांजा के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत मेहूस गांव में संचालित वस्त्र निर्माण केंद्र में कार्यरत मजदूरों को विकसित भारत योजना और PF योजना से जोड़ा जाएगा। जिलाधिकारी शेखर आनंद ने आज इस वस्त्र निर्माण इकाई के निरीक्षण के दौरान यह निर्देश दिए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में आज से सहयोग शिविर की शुरुआत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सारण जिले से राज्यव्यापी अभियान का किया शुभारंभ। राज्य में भूमि संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए बिहार भूमि न्यायाधिकरण के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मुद्दे पर पार्टी करेगी आंदोलन। और राज्य में औद्योगिक विकास को देखते हुए नबीनगर NTPC परियोजना का होगा विस्तार। 800 मेगावाट की 3 इकाइयां लगाई जाएंगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है अररिया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता गौतम सिंह सहगल।
5: अररिया जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। जिले के 12 पंचायतों में इसका भव्य शुभारंभ जिला पदाधिकारी विनोद तुहन ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को शिविरों के सफल संचालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री दुहन ने कहा कि जन शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निवारण के उद्देश्य से प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को नियमित रूप से इस शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिविरों में केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी आम लोगों को दी जा रही है, ताकि समाज के अंतिम पायदान तक अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यह अभियान 2 मई से शुरू हुआ है, जो आगामी 31 मई तक जारी रहेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में मकान सूचीकरण का कार्य लगातार प्रगति पर है और अब तक लगभग 71.45% कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जनगणना के तहत नियुक्त प्रगणनक घर घर जाकर मकानों से संबंधित आवश्यक जानकारियां एकत्र कर रहे हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि जब प्रगणनक उनके घर पहुंचे तो उन्हें सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि जनगणना कार्य को सफलतापूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके। इधर जिले में संभावित बाढ़ और सुखाड़ की पूर्व तैयारी को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित परमान सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों को लेकर विभिन्न विभागों की तैयारी की विस्तृत समीक्षा की गई। जिले के फारबिसगंज रेलवे स्टेशन से अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं

0: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस एक्सप्रेस के परिचालन से सीमांचल क्षेत्र में रेल विकास को नई गति मिली है।
1: प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। लगातार हमारे जिले में नई ट्रेनों का सौगात 6 महीना में मिलते रहता है और आने वाला दिन में और भी कई ट्रेनों का सौगात हमारे जिला को मिलने वाला है।
0: अररिया व्यवहार न्यायालय में वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुंजन पांडे और जिलाधिकारी विनोद दुहन ने संयुक्त रूप से लोक अदालत का उद्घाटन किया। इस दौरान ट्रैफिक चालानों के निष्पादन को लेकर भारी भीड़ उमड़ी। लोक अदालत में लगभग 1227 मामलों का आपसी सहमति के आधार पर ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया, जिनमें 148 ट्रैफिक चालान शामिल हैं। अररिया जिले में बीते दिनों नागरिक सुरक्षा अभियान के तहत ब्लैकआउट और मॉकड्रिल का सफल आयोजन किया गया। निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिले के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में शाम 7 बजे से 7:15 तक बिजली बंद कर ब्लैकआउट किया गया। इस दौरान चौक चौराहों पर सायरन बजाकर हवाई हमले की प्रारंभिक चेतावनी दी गई, जिसके बाद नागरिकों और संबंधित एजेंसियों ने निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया। जिलेवासियों ने निर्धारित अवधि तक घरों, प्रतिष्ठानों और अन्य संस्थानों की रोशनी बंद रखकर आपातकालीन तैयारी में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। जिला मुख्यालय स्थित नियोजनालय संयुक्त श्रम भवन परिसर में एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया गया। इस जॉब कैंप में कई पदों के लिए आवेदन लिए गए। इस दौरान निजी कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई। निर्धारित योग्यता रखने वाले जिले के सैकड़ों युवाओं ने जॉब कैंप में भाग लिया। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी की ओर से ऑफर लेटर प्रदान किया गया। जिला पदाधिकारी विनोद दुहन की अध्यक्षता में चमकी बुखार, दिमागी बुखार की रोकथाम और जन जागरूकता को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान सदर अस्पताल में 10 बेड का पीकू वार्ड, अनुमंडलीय अस्पताल फॉरबिसगंज में 5 बेड का वार्ड तथा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चमकी बुखार, दिमागी बुखार के मरीजों के लिए 2-2 बेड आरक्षित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने जीविका और आंगनबाड़ी कर्मियों के माध्यम से चमकी बुखार से बचाव को लेकर जन जागरूकता फैलाने का निर्देश दिए। साथ ही पशुपालन विभाग को बड़े सूअरों को रिहायशी इलाकों में दूर रखने के भी निर्देश दिए। अररिया जिले में वट सावित्री पूजा का पर्व पारंपरिक आस्था के साथ मनाया गया। इस दौरान अखंड सुहाग की कामना को लेकर सुहागिन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा। सुबह से ही शहर के विभिन्न मंदिरों और वट वृक्षों के आसपास बड़ी संख्या में महिलाएं पूजा अर्चना के लिए पहुंची और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ पूजा की। महिलाओं ने वट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधकर पति की दीर्घायु की कामना की।
2: अभी आप सुन रहे थे अररिया जिले के हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता गौतम सिंह सहगल।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं जगजीत सिंह के स्वर में गजल।

शफक कहते हैं किरणों को रेस, और धनुक रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है। शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली फूल।

अभी आप जगजीत सिंह के स्वर में गजल सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं कुमार शानू और अलका याग्निक के स्वर में यस बॉस फिल्म का ये गीत। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है जतिन ललित ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के पटना केंद्र से मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। अगला गीत हमने लिया है खिलाड़ी फिल्म से, अभिजीत और अलका याग्निक के स्वर में। गीत के बोल लिखे हैं अनवर सागर ने और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के पटना केंद्र से मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। अगला गीत आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण के स्वर में कुर्बान फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के पटना केंद्र से। अगला गीत हमने लिया है चमत्कार फिल्म से, कुमार शानू और अलका याग्निक के स्वर में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं दीवाना फिल्म का ये गीत, कुमार शानू की आवाज में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

दीवाना फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में सुनते हैं चंद गजलें। कलाकार हैं मोहम्मद असलम।

0: अभी आप मोहम्मद असलम से गजल सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी ही देर में अब समाचार प्रसारित होंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
2: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को

0: मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आंग्यू बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के साथ जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक

0: मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली NCR में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और KL राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। IPL क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी

0: संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human lives. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम नॉर्डिक कंट्रीज इन इंडिया रोज बाय 200% इन द पास्ट डेकेड।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
2: आज हम सबने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: स्पीकिंग ऑन द ओकेजन, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड एंड डेनमार्क

0: have already qualified for the playoffs. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade. Attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने ओस्लो में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने हम मनसबों के साथ तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के अगले माह दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी जानों के तहफ्फुज के लिए खतरनाक आवारा कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस बरस सितंबर में नई दिल्ली ब्रिक्स समिट में शिरकत करेंगे। महकमे मौसमियात ने शुमाली हिंद में गर्मी की इंतहाई शदीद लहर से खबरदार किया है। उसने जुनूबी खित्ते में बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान के साथ भारत की टेस्ट और एक रोजा मैचों की सीरीज में शुभमन गिल टीम की सरबराही करेंगे। अब खबरें तफसील से। भारत और यूरोप के नॉर्डिक ममालिक ने, जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं, अपने बाहमी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाकर ग्रीन टेक्नोलॉजी और इख्तराती कलीदी शराकतदारी की सतह तक पहुंचा दिया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आज तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत के बाद नॉर्डिक मुल्कों के लीडरों के साथ एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने यह ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: जनाब मोदी ने कहा कि पिछले 10 बरस में भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत बढ़कर 4 गुना हो गई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: जनाब मोदी ने इस बात का यकीन दिलाया कि भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात एक नए सुनहरे अहद की सूरत में इंतहाई समरावर साबित होंगे। हाल ही में तय पाए तिजारती मुआहदे इसी जानिब इशारा करते हैं। इन मुआहदों में तिजारत और इक्तिसादी शराकतदारी और भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदा शामिल है। दहशतगर्दी के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि तरफेन का एक वाज़ह और मुत्तहदा मौकिफ है जिसमें कोई समझौता नहीं है और कोई दोहरा मयार नहीं है।
2: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात

0: सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: इस मौके पर खिताब करते हुए नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के वज़ीरे आज़म ने जमहूरियत की अपनी मुश्तरका अकदार, उसूलों पर मबनी आलमी निज़ाम और आज की बदलती हुई दुनिया में कसीर सतही इदारों में इस्लाहात की फौरी ज़रूरत के तई अपने अज़्म का इयादा किया। भारत के आलमी मर्तबे का एतराफ़ करते हुए उन्होंने भारत के साथ ज्यादा ताउन की जरूरत पर जोर दिया, क्योंकि ये ममालिक मुश्तरका अकदार के हामिल हैं। बिलखसूस तनाज़ियात और आलमी रखनांदाजी के चैलेंजों से निमटने में इनकी अकदार मुश्तरक हैं। वज़ीर आज़म मोदी नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स और मुत्तहिदा अरब अमारात के अपने दौरों की तकमील के बाद पांच मुल्कों के अपने दौरे के पांचवें और आखिरी मरहले की तकमील के लिए इटली रवाना हो गए हैं। जना मोदी आज रात देर गए रोम पहुंचेंगे। मजीद तफसील वजीर आजम के इटली के दौरे की रिपोर्टिंग के लिए उनके साथ गए हमारे नुमाइंदे से।
2: वजीर आजम पांच मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले पर आज इटली पहुंचने वाले हैं। तवक्को है कि ये दौरा कई अहम शोबों में भारत इटली किलीदी शराकतदारी को नई बुलंदी अता करेगा। इम्कान है कि तिजारत, सरमायाकारी और सनती पार्टनरशिप से मुतालिक शराकतदारियों का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही मुल्क अपनी इक्तसादी वाबस्तगी को मजबूत करने और ताउन के नए शोबे तलाश करने के ख्वाहां हैं। दौरे के दौरान आला सतह के मुजाकरात के बाद ताल्लुकात में मजीद इजाफा होगा, जो इस वक्त भी इंतहाई मजबूत हैं। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: वजीर दाखिला और इमदाद वाहमी के वजीर अमित शाह ने आज कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर डिवीजन आइंदा पांच बरस में मुल्क के सबसे तरक्की याफ्ता कबायली खत्ते के तौर पर उभरेगा। जगदलपुर में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि बस्तर में नक्सलिज्म को खत्म करने के बाद मरकज और छत्तीसगढ़ हुकूमत ने खित्ते की तरक्की की खातिर मुश्तरका तौर पर एक साइंसी लाइहा अमल तैयार किया है।
3: बस्तर के सभी नागरिकों को भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अब भय से जीने की जरूरत नहीं। यहां नया सूर्योदय हो चुका है, भले आजादी के इतने साल बाद ही अब विकास का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। यहां के आदिवासी युवा और महिला विश्वास के साथ आगे बढ़े, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ है।
1: इससे कबल मरकजी वजीर दाखिला ने जगदलपुर में बस्ती जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग की सदारत की। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के वज़राए आला और सीनियर अहदेदारान ने इस मीटिंग में शिरकत की। शिमाल मशरकी रियासतों के दस्तकारों और बुनकरों के ग्रुप ने आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बातचीत के दौरान दस्तकारों और बुनकरों ने राष्ट्रपति भवन में एट होम तकरीब के लिए काम करने के अपने तजुर्बात बताए और अपने हुनर को पेश करने के मौके के लिए तशक्कुर का इजहार किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दस्तकारों और बुनकरों की मदद की जरूरत पर जोर दिया, ताकि उनका रिवायती फन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो खुद कफील बन सकें। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की और तिब्बी तालीम में अंडर ग्रेजुएट दाखिले के लिए नीट यूजी के आइंदा माह होने वाले दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। इम्तिहान के इनेकाद में मुकम्मल दयानतदारी और शफाफियत की जरूरत पर जोर देते हुए जनाब प्रधान ने हिदायत दी कि इसे पहले हुए इम्तिहान के अमल में जिन सभी कमियों की निशानदेही की गई थी, उनका लाजमी तौर पर इजाला और उन्हें खत्म किया जाना चाहिए। वजीर मौसूफ ने इस बात पर जोर दिया कि दोबारा इम्तिहान सख्त सिक्योरिटी जाब्तों के तहत एक महफूज, बिला रुकावट और किसी भी कमी के बगैर तरीक़ेकार के तहत मुकम्मल होना चाहिए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह तीन रोजा सरकारी दौरे पर आज जनूबी कोरिया के सियोल पहुंचे हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब सिंह ने कहा कि इस दौरे का मकसद भारत और जमहूरिया कोरिया के दरमियान दिफाई इश्तराक और कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करना है। उन्होंने मजीद कहा कि यह दौरा बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दोतरफा ताल्लुकात और इश्तराक बढ़ाने का मौका फराहम करेगा। अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने रियासती अकलियती कमीशनों से जोर देकर कहा है कि वो अकलियती फिरकों के मामलात और शिकायतों से निमटने में सरगर्म रोल अदा करें। वजीर मौसूफ नई दिल्ली में आज मुनक्किदा रियासती अकलियती कमिश्नरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। जनाब रिजिजू ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत मुल्क के हर शहरी की बहबूद और

हुए ये फैसला सुनाया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आज उन अजदाश्तों को भी खारिज कर दिया जिनमें आवारा कुत्तों को किसी दूसरे मकाम पर ले जाने और उनकी नसबंदी करने से मुतालिक अदालत के इससे पहले के फैसले को वापस लेने की दरखास्त की गई थी। अदालत ने कहा कि वकार के साथ जिंदगी गुजारने का हक आजादी के साथ चलने फिरने के हक का भी अहाता करता है जिसमें कुत्तों के काटने से होने वाले नुकसान का खतरा न हो। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज जुमेरात को फाल्टा असेंबली हलके के लिए होने वाले जिमनी इंतखाबात से अपने कागजात नामजदगी वापस लेने का ऐलान किया है। जनाब खान ने एक बयान में कहा कि उनका ये फैसला खित्ते में अमन और तरक्की बनाने की गरज से लिया गया है और उन्होंने बीजेपी की क्यादत वाली नई सरकार की जानिब से फाल्टा के लिए ऐलान किए गए खसूसी पैकेज का खैर मकदम किया। एक बयान में तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि जहांगीर खान के नाम वापस लेने का फैसला उनका अपना निजी फैसला है और ये पार्टी का फैसला नहीं है। अब जबकि खान इंतखाबी मैदान से बाहर हो गए हैं तो अब मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार दीपांशु पांडा, कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल रजाक मुल्ला और सीपीआईएम के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी के दरमियान है। रूस ने तस्दीक की है कि भारत की सदारत में इस बरस नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन शिरकत करेंगे। जनूबी अफ्रीका में रूसी सिफारतखाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक पोस्ट में पुतिन के एक अहम सेक्रेटरी यूरी योशाकोव के हवाले से कहा कि रूस के सदर 12 और 13 सितंबर को मुनक्किद होने वाले इस समिट में हिस्सा लेंगे। एक साल से भी कम अरसे में जनाब पुतिन का भारत का ये दूसरा दौरा होगा। वो पिछली मरतबा 23वीं भारत रूस सालाना समिट में शिरकत के लिए नई दिल्ली आए थे जो दिसंबर 2025 में हुई थी। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने जुमेरात तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रात के वक्त गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने कल के लिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में बहुत शदीद गर्मी की भी पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, जनूब मगरबी बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, साहली आंध्र प्रदेश, यानम, मराठवाड़ा और ओडिशा में भी गर्मी में तेजी आने का इम्कान है। इस दौरान मौसमियात के महकमे ने इस माह की 21 तारीख तक अंडमान और निकोबार जजायर, तमिलनाडु, पुडुचेरी, क्राइकल, केरलम, माहे और लक्षद्वीप में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC ने तालीमी साल 2026-27 के लिए उर्दू जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए दरखास्तें तलब की हैं। ऑनलाइन दाखिले का अमल शुरू हो चुका है और ख्वाहिशमंद तलबा इदारे की सरकारी वेबसाइट के जरिए 26 मई तक दरखास्त दे सकते हैं। इंस्टीट्यूट के मुताबिक दाखिले के लिए एंट्रेंस इम्तिहान 1 जून को नई दिल्ली में IIMC के हेडक्वार्टर्स में होगा। किसी भी मंजूरशुदा यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री हासिल कर चुके ग्रेजुएट तलबा इस कोर्स के लिए दरखास्त दे सकते हैं। फाइनल ईयर या सेमेस्टर का इम्तिहान दे रहे तलबा भी दाखिले के लिए दरखास्त दे सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ एक क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एक रोजा बैन अलाक्वामी मैचों की आइंदा घरेलू सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। शुभमन गिल टीम के कप्तान रहेंगे और KL राहुल को नायब कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल ODI टीम के भी कप्तान रहेंगे जबकि सुरेश अय्यर नायब कप्तान बनाए गए हैं। गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर खिलाड़ी जडेजा को आराम दिया गया है। स्पिन गेंदबाज मानव सुथर और गेंदबाज गुरनूर बरार अपना पहला टेस्ट मैच खेलेंगे जबकि प्रिंस यादव को पहली मरतबा ODI टीम में शामिल किया गया है। टेस्ट मैच 6 जून से मुलानपुर में खेला जाएगा। इसके बाद 14 जून से धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई में ODI मैच खेले जाएंगे। IPL क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान मैच जारी है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स की जीत के लिए 221 रन का निशाना रखा है। इससे कबल राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है। वजीर आजम ने ओस्लो में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने हम मनसबों के साथ तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG के अगले माह दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी जानों के तहफ्फुज के लिए खतरनाक आवारा कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस बरस सितंबर में नई दिल्ली ब्रिक्स समिट में शिरकत करेंगे।
محکمہ موسمیات نے شمالی ہند میں گرمی کی انتہائی شدید لہر سے خبردار کیا ہے۔

उसने जनूबी खित्ते में बहुत तेज बारिश की पेशगोई भी की है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान के साथ भारत की टेस्ट और एक रोजा मैचों की सीरीज में शुभमन गिल टीम की सरबराही करेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है नाटक। नाटक का विषय है वो गांव की बेटी। आइए सुनते हैं ये नाटक।
1: प्रस्तुत है नाटक वो गांव की बेटी। लेखक अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा, संयोजक डॉक्टर राजीव रंजन श्रीवास्तव, प्रस्तुत करता है छत्रानंद सिंह झा।
2: दीना, ए दीना।
3: हाँ मालिक।
2: अरे गैया और भैंसिया को तनी उधर ले जाकर बांध दो।
3: ठीक है मालिक, बांध देते हैं।
2: अच्छा ठीक है, इधर कौन आ रहा है मोटरसाइकिल से? इधर ही आ रहा है।
4: हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। आप?
5: जी प्रणाम, मैं मठिया का रहने वाला हूँ, नाम है चकलाल, किसान हूँ भैया।
4: अच्छा अच्छा अच्छा, आने का कारण?
5: उका है कि त्रिलोकी सिंह डुमराव वाले ने आपके विषय में कहा था, आप अपने बेटे की शादी कराना चाहते हैं, इसी सिलसिले में आपके पास आया हूँ अपनी बहन का रिश्ता लेकर।
2: अच्छा अच्छा, बरतुहार है। अच्छा अच्छा, इत्मीनान से बैठिए बैठिए।
4: जी आप अपने विषय में बताइए।
5: राम सिंहासन बाबू, कृपया आप मेरी बात पर ध्यान दें, मेरी बहन जो है ना वो सर्वगुण संपन्न है। मेरी बहन एक ऐसी बेटी है जिससे किसी को आज तक कोई शिकायत नहीं हुई। बीए पास है, बैंक की परीक्षा दे चुकी है और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जरूर उत्तीर्ण होगी।
4: ठीक है, लेकिन देखिए जगलाल बाबू, मेरी आदत सीधी सीधी बात करने की है, घुमा फिरा कर बात करने और वक्त बर्बाद करने में मेरी कोई रुचि नहीं है, समझिए।
6: अरे मेरा बेटा भी कोई ऐसा वैसा नहीं है,
4: अच्छी कद काठी है,
6: सुंदर है,
4: होशियार है।
6: अरे सीधी सीधी बात कीजिए ना, इधर उधर बात घुमाने से कोई लाभ नहीं है। काय परीक्षण जी?
2: हाँ, जगलाल भाई।
4: जी।
2: ए जगलाल भाई।
4: जी कहिए।
2: मेरी सलाह है कि आप अपनी बहन की शादी की इच्छा रखते हैं तो खोल कर बताइए। हाँ आपका क्या एस्टिमेट है और कुछ तो प्लान होगा, क्यों भाई जी?
5: बात तो परीक्षण जी आपने सही कही है, मेरे मन में एक विचार चल रहा था कि आखिर छोड़िए, आप ये बताइए कि मुझे खर्च कितना करना होगा।
4: अरे भाई जी आप तो उल्टी ये बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है,
6: आप खुद ही देखिए ना हम लोग का क्या पोजीशन है। अरे उसी हिसाब से सोच समझ कर कहिए।
2: हाँ अरे भाई, शहर वाला हिसाब किताब नहीं है, आप जान लीजिए कि गाय बैल या भैंस हमेशा सालों भर यानी कि सालों साल दरवाजे पर बंधी रहती है। अरे दूध दही की कोई कमी नहीं है। दीना, ए दीना।
3: जी मालिक।
2: अरे चाय पानी ले आओ भाई, मेहमान आए हैं।
5: देखिए सुनिए परीक्षण बाबू, देखिए चाय पानी में समय गंवाने की जरूरत नहीं है और मुझे लौटना भी है। मेरी इच्छा थी कि लड़के को जरा देख सुन लेते तो बात आगे बढ़ाता।
4: इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लड़का और लड़की का मैच तो होना ही चाहिए जगलाल जी।
5: लेकिन राम सिंहासन बाबू, एडुकेशन की क्या स्थिति है?
2: देखिए भाई, देखिए स्कूली पढ़ाई के पोजीशन तो आपसे छुपा है नहीं, गेसिंग का जमाना है, जितना जुगाड़ लगा उतना तो पढ़े ही। ट्राई किया मैट्रिक में दो दो बार पर सक्सेस नहीं हुआ।
4: हाँ लेकिन देखिए देखिए देखिए, मैट्रिक फेल है पर हिम्मत नहीं हारी, टेक्निकल लाइन में चला गया और घर में अन्न पानी की कोई कमी तो है नहीं।

0: टेक्निकल लाइन, राम सिंह हसन बाबू, ये टेक्निकल लाइन से कुछ स्पष्ट नहीं हुआ।
1: अरे भाई, गांव के बाजार में ही एक शानदार साइकिल रिपेयरिंग का शॉप है। हाँ भाई, अपना रोजगार है, अच्छी कमाई हो जाती है, एक असिस्टेंट भी रखे हुए हैं। हाँ
2: लीजिए सरकार, चाय पिया जाए, नाश्ता आ रहा है।
0: अरे चाय चाय रहने दीजिए। देखिए, अब मुझे अनुमति दीजिए, निकलेंगे। काहे कि उधर बाजार में ही शॉप यानी रिपेयरिंग शॉप देखते बढ़ जाएंगे। जी चलता हूँ, प्रणाम।
3: अरे अरे अरे जगलाल जी, आप तो एकाएक हड़बड़ आ गए।
4: अरे रुपये पैसे की चिंता नहीं करिए ना, हिसाब किताब सेट हो जाएगा।
0: ठीक है ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। प्रणाम परीक्षण जी, प्रणाम।
1: प्रणाम,
0: आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: प्रणाम,
0: चलता हूँ मैं
1: जी। प्रणाम।
5: अरे माला, तुम यहाँ यहाँ क्यों खड़ी हो? माला शादी देखने जा रही हो ना?
6: इरादा तो ऐसा ही था, लेकिन नहीं जा रही हूँ। ऐसी शादी में सम्मिलित होना महापाप है, महापाप।
5: अरे इस तरह क्यों बोल रही हो माला?
6: इसीलिए तो, इस शादी से मुझे नफरत है, मैं कभी नहीं जाऊंगी। बताओ मनोज, 14 साल की लड़की की शादी, ये अन्याय है ना?
5: हाँ है तो, कानूनन अपराध भी। अच्छा एक बात कहो माला, रुक्मिणी तुम्हारी सहेली है, एक क्लास में पढ़ती भी हो, आखिर पढ़ाई बीच में छोड़ के कच्ची उम्र में शादी करने के लिए रुक्मिणी तैयार कैसे हो गई? माँ बाप को उसने बताया नहीं क्या?
7: अरे सबके सब यही खड़े हो, शादी हो गई, खाना पीना हो गया क्या? यहाँ खड़े खड़े तुम दोनों क्या घिटर पिटर कर रहे थे?
8: ओहो सॉरी, हम लोगों ने बाधा दे दिया।
6: नहीं रे, तुमने बाधा नहीं दी, असल में हम लोग एक गंभीर समस्या पर बातचीत कर रहे थे।
8: मेरे सुनने लायक है क्या?
6: बात ये है कि आज रुक्मिणी की शादी है, बल्कि ये कहो हो गई। जानते हो मनोज, यह शादी रुक्मिणी की इच्छा के विरुद्ध हुई। वो अभी शादी करना नहीं चाहती थी।
5: क्या?
6: 9th में पढ़ती है, शादी की उम्र भी नहीं हुई।
7: हाँ ये तो ठीक नहीं है।
8: ओ अब समझा, तुम लोग इसीलिए इस शादी में सम्मिलित नहीं हुए, शादी का बहिष्कार किया, क्यों है ना यही बात?
6: हाँ इसीलिए हम लोग यहाँ रुक कर सोच विचार कर रहे हैं कि कोई ऐसा कार्यक्रम बनाए जिससे आगे किसी और रुक्मिणी की शादी के नाम पर बलि ना दी जाए।
8: ठीक है, क्यों ना हम लोग स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाए जो गांव में घूम घूम कर लड़कियों को शिक्षित करने और उम्र से पहले शादी नहीं कराने का प्रचार प्रसार करे।
6: हाँ हाँ हाँ सही बोले।
7: और हाँ सुनो, और लोगों को ग्रुप में जोड़ना है।
5: जरूर, विचार तो काफी अच्छा है, अगर हौसला हो तो कोई काम कठिन नहीं होता, अच्छा सोचने वाले को अच्छा फल ही प्राप्त होता है, क्यों?
6: हाँ, एकदम एकदम सही।
0: किसी के दरवाजे बारात आती है तो मन में एक अजीब सी हलचल पैदा हो जाती है। क्या क्या मेरे दरवाजे पर भी इस खुशी का अवसर आएगा? लक्ष्मी बड़ी हो गई है, उसका हाथ पीला करा देता तो बाबूजी को दिया गया वो वचन पूरा हो जाता। रुपये पैसे की तंगी तो किसी तरह पूरी की जा सकती है, पर योग्य वर कहां से ढूंढूं? समझ में नहीं आता। हित कुटुंब से विवाह की चर्चा करता हूं तो लोग उलाहना देते हैं कि और लड़की जात को ऊंची शिक्षा दिलाओ, बहन को पढ़ाया तो क्या गुनाह किया? अनपढ़ रखता, गांव की बेटी पढ़ गई तो परिवार की शान में कोई कमी आ गई क्या? वही पुरानी दकियानूसी बातें करते हैं लोग, कभी समझ नहीं आता।
9: अरे जगलाल भैया, उधर कहाँ जा रहे हो? अरे आपकी तो गली पुरवारी वाली है ना? अरे भैया कहाँ से आ रहे हो?
0: अरे भैया, ध्यान जरा दूसरी तरफ अटक गया था भैया, इसीलिए आगे बढ़ गया।
9: किस तरफ ध्यान भटक गया भैया? इसीलिए तो कहते हैं, मेरा मतलब है, कहने वाला कहता है कि कुंवारा मन बड़ा चंचल होता है, और समय पर आपको भी विवाह कर लेना चाहिए था। वो क्या कहते हैं कि हमको भौजाई मिल जाती और आपको वाइफ।
0: अच्छा अच्छा, लेकिन एक बात सुन लो भैया, अपनी शादी की बात सोचना तो मैंने कब का छोड़ दिया है।

0: अभी तो बहन के विवाह के लिए दौड़ धूप कर रहा हूँ भैया।
1: अरे भैया, लक्ष्मी बहन की शादी के लिए काहे चिंता करते हैं। लक्ष्मी बहन जैसी लड़की जिस घर में भी जाएगी वो घर निहाल हो जाएगा।
0: वो तो सही कहा भैया, पर योग्य वर ढूंढते ढूंढते मैं कभी कभी निराश होने लगता हूँ। पर यही सोचकर मन को बहला देता हूँ कि जो राम जी चाहेंगे वही होगा। अच्छा सोचने से अच्छा होता है, अच्छा ही होगा भैया। जानते हो भैया, मुगाओं गया था, बाबू त्रिलोकी सिंह ने एक लड़का बताया था, पर कहा कहें।
2: पर क्या भैया, बात नहीं बनी क्या?
0: अरे वो बात नहीं है भैया, घर परिवार तो अच्छा ही है, पर लड़के की पढ़ाई बहुत ही कम है, मैट्रिक फेल। अब तुमसे कहा बताएं भैया, लक्ष्मी जो बीए पास है उसके लिए ये लड़का ठीक होगा, अब तुम ही बताओ।
2: ना, हमारे हिसाब से किसी भी तरह से नहीं, नॉट एट ऑल भैया।
0: और जानते हो भैया, रोजगार कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। वो साइकिल रिपेयरिंग का शॉप चलाता है, पर बाजार में पता चला है कि लड़के को नशा सेवन करने की आदत है, खैनी पान सरदा और कभी कभी तो गांजा भी पीता है। अब तुम ही बताओ भैया, ऐसे लड़के से बिना कुछ लिए दिए भी शादी का ऑफर होता ना तो मैं ये शादी नहीं करता। सो मैंने लड़के वालों को इशारतन ना कहकर चलाया।
2: एकदम ठीक किया, जाइए, आपका घर आ गया, मैं भी चलता हूँ।
0: हाँ भैया जाओ, प्रणाम।
3: आ, सुनती हो माँ, भैया आ गए।
4: जगलाल, मुगाओ गए थे ना बेटा, शादी की बात चलाने, क्या हुआ, कुछ बोल दे रहे हो बेटा, इतने उदास क्यों हो?
0: अब कहा बताए अम्मा, मेरी बहन पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सुशील है, अरे उसका जीवन हम नष्ट नहीं ना करेंगे अम्मा, मुगाओ वाले लोग तो।
4: क्यों, वो लोग तो धनी मानी है ना, घर द्वार खेती बाड़ी भी अच्छी है, तो क्या खराबी है उसमें बेटा?
0: अरे सिर्फ खराबी ही खराबी है अम्मा, दो बार लड़का मैट्रिक की परीक्षा दे चुका है पर दोनों बार फेल होता रहा है। अब तुम ही बताओ अम्मा, अपनी ग्रेजुएट बहन का विवाह ऐसे लड़के से कर दूं? और जानती हो अम्मा, साइकिल मरम्मत की दुकान चलाता है।
4: साइकिल?
0: हाँ, और बाजार में ये भी पता चला है कि नशे का सेवन भी करता है वो लड़का।
4: लक्ष्मी बेटी, जल्दी आ जा बेटा, भैया को पानी पिला।
5: आई माँ। ये लीजिए भैया, बैठिए, लीजिए मीठा खा करके पानी पी लीजिए।
0: हाँ लक्ष्मी।
5: हाँ भैया।
0: ये ले मैगजीन, तेरे परीक्षा देने में काम आएगा। जो जो सर्विस के लिए तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और कैसी तैयारी करनी है, अरे सब इसमें मिलेगा।
5: भैया आपने ये बहुत अच्छा किया, मैगजीन ले आए।
4: हाँ हाँ, बड़ा अच्छा किया। सुन, घर के काम समेट, धान उधर सूख रहा है, जा उसे चला दे, चली है बैंक की तैयारी का सपना।
0: अरे अरे अरे, अरे अम्मा, हाँ। अम्मा क्या बोल रही हो अम्मा?
4: और क्या?
0: लक्ष्मी इधर आ, इधर आ। अरे माँ तुम ऐसा क्यों बोलती हो? इधर देखो, ये मैगजीन देखो अम्मा।
4: हाँ।
0: इस फोटो को देखो।
4: क्या देखो?
0: 22 व्यक्तियों को बैंक की नौकरी में सफलता मिली है।
4: अच्छा।
0: और जानती हो अम्मा, उसमें 9 लड़कियां हैं, समझी?
4: अच्छा।
0: ए लक्ष्मी।
5: हाँ भैया।
0: लक्ष्मी तू तैयारी कर, जा। अरे परिश्रम के सामने कोई कार्य कठिन नहीं होता बहन, सपना देखना ही चाहिए। और ये मैं जानता हूं बहना कि तुम्हारा सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। और जानती है लक्ष्मी?
5: हाँ भैया।
0: अगर तेरा सपना पूरा होगा ना तो अरे तेरे भैया का भी मान बढ़ेगा बहना।
5: भैया आप चिंता मत कीजिए, आपके आशीर्वाद का सहारा है, परिश्रम करना मेरा धर्म है, भगवती चाहेंगी तो मैं अवश्य सफल हो जाऊंगी भैया।
6: दीदी तुम जरूर बैंक में निकल जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ूंगा, मेरी भी आगे की तैयारी होती चलेगी।
0: हाँ मनोज सही कहा तुमने, अरे लक्ष्मी जरूर पास करेगी। और मेरी तो प्रभु से यही प्रार्थना है कि जो वचन मैंने बाबूजी को दिया था कि अपनी छोटी बहन

0: और भाई के जीवन को आगे बढ़ाने का हर प्रयास करेंगे, वो पूरा हो।
1: जगलाल जी, कोई है भाई? जगलाल बाबू।
2: अरे आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं।
0: अरे जोगी बाबू, कैसे कैसे इधर आना हुआ?
1: इधर ही आए थे कुछ काम से, तब सोचा आपसे भेंट कर ले। भाई जी बुरा मत मानिए, 10,000 रुपया का काम पड़ गया है, हो तो दे देते अच्छा होता।
0: क्या 10,000? अरे भैया मेरे हिसाब से तो 7,000 निकलता है। वो 1-2 महीने में चुका दूंगा भैया, और फसल का हाल तो आपसे छिपा नहीं है ना।
1: 7,000? खैर जो हो, 7 या 10,000 भाई जल्दी मिल जाता तो अच्छा था। अपना पैसा देकर आदमी को निहोरा करना पड़ता है। क्या सोच रहे हो भैया?
0: अब सोचना क्या है भैया, कर्ज है तो वापस करना ही है ना। अरे माँ, मनोज, लक्ष्मी, अरे अरे तुम लोग फिक्र मत करो, मैं समझ लूंगा।
3: भैया आप अपने बारे में भी सोचिए, हम लोगों के भाग में जो होगा वो पूरा हो जाएगा। हम लोगों को बनाने में अपना जीवन सूना कर लिया आपने, विवाह तक नहीं किया। भैया ये ठीक नहीं है।
0: अरे मनोज तू मेरा भाई ही नहीं है, और मेरे भाई मेरे लिए तुम लोगों के अलावा क्या है बोल? तू ऐसा मत सोच कि मेरा जीवन सूना है। माँ बहन भाई, अरे क्या नहीं है मेरे पास?
4: जगलाल, जगलाल,
5: दोनों भाइयों में क्या बात चल रही है बेटा? जोगी की आवाज सुनाई पड़ी थी, चाय ले आई हूँ, चला गया क्या?
0: हाँ माँ, वो अपने बाकी रुपए के तगादा में आया था, और जानती हूँ अम्मा उसके हिसाब से 10,000 और देना बाकी है।
5: ठीक है, चिंता क्या करना है बेटा, जो है वो तो देना ही पड़ेगा ना।
0: हाँ माँ।
5: एक काम कर।
0: क्या?
5: थोड़ी जमीन हटा दे और कर्ज खत्म कर।
0: ये क्या कह रही हो अम्मा? देखो जमीन की बात मत करो अम्मा।
6: हाँ भैया। माँ तुम दोबारा जमीन बेचने की बात मत करना।
0: हाँ अम्मा। अरे अम्मा जमीन बिक गई तो हम किसान से मजदूर हो जाएंगे। लक्ष्मी ठीक ही तो कह रही है, जमीन नहीं बिकेगी अम्मा।
6: भैया मेरी बात सुनिए, मेरी शादी के लिए जो जेवर बनाकर रखा है उसमें से कुछ बेचकर कर्ज लौटा दे, और 3-4 वर्ष के लिए मेरे विवाह की बात टाल दे। भगवान चाहेंगे तो बैंक वाली परीक्षा में तब तक सफलता मिल ही जाएगी भैया।
3: दीदी सही कह रही है भैया, अच्छा सोचने से अच्छा ही होता है, कहा गया है ना ऑलवेज थिंक पॉजिटिव।
5: ठीक है, तुम लोगों की राय से मैं भी सहमत हूँ।
0: ये हुई ना बात।
5: हे भोलेनाथ, आपकी दया से सब कुछ चल रहा है, कृपा बनाए रखें प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
6: भोले बाबा मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए।
5: लक्ष्मी।
6: हाँ माँ।
5: ले बेटा ये प्रसाद मुंह में डाल ले।
6: माँ आज मेरी बाई आंख बहुत फड़क रही है।
5: अच्छा,
6: सुनती हूँ कि इसका कोई प्रभाव होता है?
5: ओ, चिंता मत कर बेटी, ये सब मन की भावना है, मैं नहीं मानती। मनोज ठीक ही कहता है, अच्छा सोचने से अच्छा ही होता है।
6: हाँ माँ एकदम सही है, गांधी जी की जीवनी पढ़ रही थी तो गांधी जी के दृढ़ संकल्प की बात समझ में आई, कोई बात अगर आदमी दिल से ठान लेता है तो वो पूरी होती ही है।
5: मैं तो तुम लोगों की तरह आईए बीए पास हूँ नहीं, पर महसूस होता है बेटा तुम लोगों के विचारों में कितनी बड़ी बड़ी बातें आ गई हैं।
0: अरे माँ, माँ तुम यहाँ हो? अरे उधर देखो छोटका नाना जी आए हैं।
5: क्या कहा? छोटका बाबूजी आए हैं। मनोज जा जा बेटा पानी ले आ।
0: अभी जाता
5: हूँ। लक्ष्मी तुम क्या ताक रही है बेटा, जा जा के जल्दी से प्याज काट के और बेसन लगा के प्याज को बना दे। जा जा।
6: ओफो,
5: छोटका बाबूजी को बहुत पसंद है।

0: जा रहे हम लोग।
1: जाती हूँ।
2: प्रणाम बाबूजी।
3: खुश रहो बेटी, बहुत खुश रहो। अरे तुमसे ही मिलने चला आया। लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी?
1: हाँ नाना जी। अरे नाना जी, चरण छूती हूँ।
3: हाँ खुश रहो बेटा। लक्ष्मी, पूरे गांव जयवार में समाचार फैल गया है कि रमा भैया की नातिन बैंक के ऑफिसर की परीक्षा में बैठी है। अरे लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि गांव की बेटी बैंक के ऑफिसर।
1: अब चकाने की कोई बात नहीं है नाना जी। नाना आपका आशीर्वाद चाहिए, रिजल्ट आज ही कल में निकलने वाला है।
2: छुटका चाचा, आपकी नातिन ने संकल्प लिया है।
3: अच्छा?
2: कि जब तक वह अपना कोई स्थान नहीं बना लेती ना, तब तक इस शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ेगी।
0: अरे माँ, मुझे लक्ष्मी की बात उचित लगी, और वैसे भी अभी इसकी उम्र ही क्या है।
3: ठीक ही कहते हो जगलाल, नया जमाना के हिसाब से तो उम्र अभी नहीं हुई है रे, पर मेरे जमाने को देखो तो इस उम्र में हम लोगों के हाड़ में हरदी लगवा दी जाती थी।
2: चाचा जी, लीजिए, आपकी नातिन ने बड़े शौक से पिहजुआ आपके लिए बनाई है।
1: हाँ नाना, आपके आने की बात सुन माँ एकदम हड़बड़ा गई, बोलने लगी ई बनाओ ऊ बनाओ, और हाँ पिहजुआ जरूर बनाना, छोटका चाचा को बहुत पसंद है।
3: सुनो सुनो सुनो बेटी
2: जी,
3: लक्ष्मी के लिए एक अच्छे लड़के की जानकारी मिली है।
2: अच्छा?
3: हाँ, कॉलेज में लेक्चरर है, सुखी संपन्न परिवार है, अगर तुम कहो तो बात चलाएं।
0: अरे नाना जी, जल्दी जल्दी नाश्ता कर लीजिए, उका है ना कि आपसे मुलाकात करने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं।
1: ए भैया, उन लोगों को बैठने के लिए कह दीजिए, अभी बाप बेटी में बहुत जरूरी बात चल रही है।
2: चली बोलने।
0: आप लोग आराम से बैठ जाइए, नाना जी आ रहे हैं। अरे बैठ जाइए भाई। अरे मनोज, पर देखो जरा किसका जयकारा लग रहा है।
4: मठिया की बेटी, मठिया की बेटी, लक्ष्मी दीदी
5: जिंदाबाद,
4: लक्ष्मी दीदी
5: जिंदाबाद।
6: मनोज भाई, बैंक की परीक्षा के रिजल्ट आउट हो गया। सरैया बाजार के बैंक मैनेजर साहब बोल रहे थे कि फाइनल रिजल्ट निकल गया, नेट पर रिजल्ट आ गया, लक्ष्मी दीदी के फाइनल रिजल्ट निकल गई है।
0: क्या, लक्ष्मी का रिजल्ट निकल गया? धन्यवाद प्रभु।
3: जगलाल जगलाल, अरे क्या समाचार है भाई?
0: अरे बहुत निमन समाचार है नाना जी। बैंक के ऑफिसर हो गई है आपकी बिटिया।
3: अच्छा?
0: उसका रिजल्ट निकल गया नाना।
3: हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र।
0: लक्ष्मी लक्ष्मी, अरे अरे जरा बाहर निकल, अरे जल्दी आ रे लक्ष्मी, इधर आ इधर आ इधर आ, ये देख देख, गांव के युवा लोग तुमको बधाई देने आए हैं।
1: और मुझे आपसे कुछ कहना है, एक बहुत जरूरी बात। आप लोग एक बात सुन लीजिए, गांव के सब बेटी को पढ़ाना अनिवार्य कीजिए, विवाह के लिए उतावले मत होइए, तिलक दहेज को नकारिए। मैं यही आग्रह करूंगी आप सबसे।
0: आशीर्वाद बहना।
1: हाँ भैया।
0: तुमने अपने बाबूजी का सपना, अपने दादा का मान पूरा किया बहना, उसे आगे बढ़ाया। जा, नाना जी और माँ का आशीर्वाद ले लो।
1: हाँ भैया।
4: दीदी पार्टी।
0: अरे आप लोग जरा शांत हो जाइए, होगी पार्टी, रसदार बूंदिया और बड़की पूड़ी चलेगी।
7: वो गांव की बेटी, अभी आप सुन रहे थे ये रेडियो नाटक। भाग लेने वाली कलाकार थे शैलेश जमियार, संगीता साही, रत्नेश कुमार, शिवशंकर रत्नाकर, संजय किशोर, सरोज कुमार मिश्र, अर्चना सोनी, उदय शंकर, आशीष कुमार सिंह और संजय सिंह।

0: बाल कलाकार थे विराट वैभव, अमृत राज, अम्बरीन हसन और सृष्टि सिन्हा। लेखक अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा, प्रस्तुति सहयोग उपेंद्र कुमार पासवान, संयोजक डॉक्टर राजीव रंजन श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता छत्रानंद सिंह झा। ये प्रस्तुति विविध भारती पटना की थी।
1: अभी आप सुन रहे थे नाटक वो गांव की बेटी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार थोड़ी ही देर में।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: इधर आइए, इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना,
3: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी।

हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार।

श्रोताओं को कुमुद का नमस्कार। मिथिला नगरिया में चर्चा का एक ही विषय है, कौन है ये दोनों, कहाँ से आए हैं, है कैसे मनमोहक है, ये चाहता है देखते ही रहें।

गौरी पूजन को आई जनक नंदनी ने भी सुना, दो सुघर सलोने कुमार बगिया में घूम रहे हैं। देख आने वाली सखी चकित है, भ्रमित है, चंचल हो उठी है। कहती है, कैसे बताऊं, वाणी बोल सकती है देख नहीं सकती, आंखें देख सकती हैं बोल नहीं सकती। श्याम गौर किमि कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। सीता भी देखने को व्याकुल हो गई, तासु बचन अतिशय ही सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। और इधर जब श्री राम के नेत्र उठते हैं तो सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। प्रीति पुरातन है, आकर्षण परस्पर है, शिव के धनुष को टूटना ही था। सुंदर सजी बारात लेकर राजा दशरथ पधारते हैं, सिया प्यारी का दूल्हा पालकी में सुशोभित है, मणि माणिक जड़ा मोर, चांदनी बिखेरते कुंडल, गज मोती के किनारों वाला पटुका।

जनकपुर में घर घर आनंद मंगल है। विधाता ने कैसी सुंदर जोड़ी बनाई है, जैसी चारों सुकुमारियां वैसे ही चारों सुकुमार।

लोक भजन और विवाह गीत के बाद पूर्वी पिया को पंथ निहारत सगरी रैन बिहानी होए, रोते रोते नैन टेसु के फूल बन गए। ये उम्र और सुनी सेज, ननद जी की बातों ने कलेजा चलनी कर दिया। आखिर क्या हुआ उन्हें, किस मोहिनी ने भरमा लिया।

विरह विदग्ध नायिका एक बार अपने प्रियतम को देख लेना चाहती है। उस पत्थर दिल के आते आते शायद प्राण ही निकल जाए। निर्जीव देह को कागा चुन चुन खाएगा। नहीं नहीं ए कागा, तू सब खा लेना, लेकिन मेरी आंखें छोड़ देना। ये आंखें दरस दीवानी है।

अब एक झूमर, ननद गई पानी भरने, अभी तक वापस नहीं आई। लगता है गहने

गूंजे बिहार। अभी आप ये लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं हिम्मत वाला फिल्म का ये गीत, अमित कुमार और श्रेया घोषाल की आवाज में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है साजिद वाजिद ने।

अगला गाना हमने लिया है सख्ती फिल्म से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की

0: भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के पटना केंद्र से मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और मनहार के स्वर में हीरो फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: खुद गर्ज फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। थोड़ी देर में अब समाचार प्रसारित होंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलू पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including Trade and Economic Partnership and India-EU Free Trade Deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent